0: हूँ अभी आपके साथ में, जबकि आज है 10 तारीख मई, 10th of May, रविवार। ऐसे में अभी से लेकर 6 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, बिल्कुल जुड़े रहेंगे आपके साथ में और इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे बाय ब्रिंगिंग यू मोर एंटरटेनिंग न्यूज। साथ में कुछ गपशप भी रहेंगी हमारे साथ में, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी भी सुनेंगे। इन सब के अलावा, जबकि आज 10th of May है तो मदर्स डे है, जितने भी हमारी प्यारी प्यारी माँ, ब्यूटिफुल मम्स आउट देयर है, आप शायद ब्रंच पर निकले होंगे या फिर आपको कुछ ट्रीट अलग से मिला होगा, शायद आज आपके लिए पेडिक्योर या मेनिक्योर का भी अपॉइंटमेंट लिया गया है। तो ऐसे में आपको याद करते हैं, आपको अपनी तरफ से अ हैप्पी मदर्स डे आपको विश करते हैं। आज का दिन आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन रहे और आप बिल्कुल इंजॉय करें। यू गेट पेम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड, क्योंकि बनता है भाई, माएँ जो होती है, माँ जो होती है, ये हर दिन हमारे लिए जागी रहती है, काम करते रहती है, बिजी बिजी रहती है। ऐसे में आज के दिन आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि दिल की गहराइयों से जितनी भी हमारी ब्यूटीफुल मम्स है, आप सुन रही हैं अभी, आपके लिए कुछ लिख कर लेकर आए हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है और जितने भी वंडरफुल किड्स है आपके, आपकी ओर से आपके मम को आज एक्नॉलेज करेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दे, जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दे, खुद जाग कर आपको थपकिया दे सुला दे, भूखी रहकर आपको खिला दे, उस माँ की मोहब्बत को कैसे दिल से भुला दे, कैसे दिल से भुला दे, कैसे दिल से भुला दे।
1: Mother's Day song brought to you by
2: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar.

जी हाँ, 104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं हम और प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं हूँ अभी, लेकर आए हूँ जज चिल आपके लिए, और कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं हमारे पास में। जबकि पॉइंट शेफ से रोनल ने मैसेज किया है और उन्होंने विश किया है हैप्पी मदर्स डे टू मदर मधु ऑफ मनीरेवा ओकलैंड। ऐसे में ढेर सारा प्यार मिला है मधु को उनके तीन बॉयज यानी कि उनके बच्चों से, रोनल, विकी, एडविन, साथ में तीन ग्रैंडसन रायन, जस्टिन और इलम है, और लव फ्रॉम डॉटर इन लॉज रोशनी एंड अंबालिका टू। मदर्स डे का लंच आज मनीरेवा में चल रहा है, और मजाक मजाक में आपने लिखा है ब्रिंग योर ओन लंच प्लेट। तो चलो रोनल, आप बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा अपना जो मदर्स डे लंच है, इसको अपने फैमिली के साथ में कीप इंजॉइंग, और जो प्यारे प्यारे पल होते हैं हमारे जीवन में इसको आप बिल्कुल समेटते रहें। एक और एक मैसेज आया है, जबकि डबल सेलिब्रेशन है आज। श्रिया प्रसाद ब्लॉक हाउस बाय का अपना 22nd बर्थडे मना रही हैं, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिला है पापा संजय से, साथ में मम प्रनीता है, इसके साथ में ग्रैंड पेरेंट्स की ओर से ढेर सारी बधाइयां मिली हैं, आशीर्वाद भी मिला है, और जितने भी सिबलिंग्स हैं आपके फैमिलीज है, आपको ढेर सारा प्यार उपहार दिया है आज के दिन। श्रिया, बाय दिस डे बी अ स्पेशल वन फॉर यू, जबकि डबल सेलिब्रेशन में है, ऐसे में हमारी ओर से, पूरी हम की टीम की ओर से आपको वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे का जो फंक्शन है, आप लंच कर रहे हैं, अपने संदेश को आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, अपने मैसेज अपने मम के लिए आप हमारे पास में भेजना चाहते हैं, तो 5599 पर ज़रूर भेजिए। यहाँ से हम आपके मैसेजेस को पढ़ते रहेंगे, आपको शामिल करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में, या फिर कुछ और भी सेलिब्रेशन है, या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो पीछे मत हटिएगा, मैं हूँ आपके साथ में यहाँ आपके लिए, और आपके जो प्यारे से मैसेजेस है इनको उन्हें आपके लिए पढ़ता रहूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए इज जस्ट वाओ।

ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम, मैं हूं आपका साथी अवि। और आज के दिन के लिए चलो एक नज़र मौसम पर भी देख लेते हैं। और आज के लिए बताया जाता है कि फाइन स्पेल्स विद आइसोलेटेड शावर्स रहेंगी और साथ में सनसेट आज रहेगा 5:28 PM तक। और इसके अलावा जो ओवरनाइट टेम्परेचर्स है 13 डिग्रीज तक हो सकते हैं, एज लो एज 13। अगर जो नॉर्थ आइलैंड के लिए देखें तो जनरली सभी जगहों पर, सभी शहरों के लिए बताया गया है मिक्स्ड वेदर कंडीशन रहेगा, यानी कि धूप और बारिश साथ साथ में आपको दिन भर दिखती ही रहेंगी। इसके अलावा साउथ आइलैंड में भी इसी तरह का मौसम है। तो अगर जो आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रखकर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन नथिंग शुड डैम्पन योर स्पिरिट, क्योंकि आज है मदर्स डे। आपको हमारी ओर से हैप्पी मदर्स डे।

0: वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe. Where dreams begin.
3: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
4: Bunnings Warehouse.
3: Lowest prices are just the beginning.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
10: कभी भी कहीं भी।
11: जी हाँ, हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और ज़रूरी बातें भी आपके साथ में करते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहे। क्या आपने कभी एक ऐसी आदत बनाई है कि अपनी गाड़ी को ड्राइववे से रिवर्स करने से पहले, गाड़ी बाहर निकालने से पहले क्या आप सराउंड चेक करते हैं या नहीं करते? मैं खुद नहीं करता हूँ, अभी तक नहीं करता था, लेकिन आज से, अभी से मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि सराउंड चेक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब आप अपने गाड़ी को रिवर्स करने से पहले एक बार अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द आप चक्कर लगा लेते हैं ताकि कोई पेट या फिर कोई बच्चे या फिर किसी तरह का कोई ब्लाइंड स्पॉट ना हो, या फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, जैसे आपने रात को छोड़ा था ये उसी तरह से पार्क्ड है, तो ये सभी कुछ करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जबकि मैं समाचार अभी पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट सामने आई है कि लेक एल्समिया, ये क्राइस्टचर्च के पास है, और यहाँ पर एक दुर्घटना घट गई है और यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक गाड़ी को ड्राइववे में रिवर्स किया जा रहा था कैंटरबरी में, और इसके कारण से जब बच्चे को पीछे खेलते हुए नहीं देखा पाया गया तो बच्चे को चोट पहुंची, और उसके बाद में इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया है कल दिन में, और ये होते हुए आज अनफॉर्चुनेटली वो जो बच्चा है अब हमारे बीच में नहीं रहा है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि जितने भी हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि नेबर्स के जो बच्चे होते हैं ये खेलने आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों से हमें थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए और इसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। तो प्लीज़, अगर जो आप कहीं से गाड़ी हटा रहे हैं तो एक बार उसके आसपास चक्कर लगा लीजिए ताकि आपका जो पाथ है, आपका वे जो है, ये बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो आप खुद ही काफ़ी समझदार हैं।

0: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: आ गया, आ गया, आ गया।
1: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपके पास में भी प्यारे प्यारे हैप्पी मदर्स डे के उपदेश है, संदेश है, मैसेजेस है। आप किसी को विश करना चाहते हैं तो 5599 इज़ योर नंबर, जहाँ पर आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में आपको हम की मम से भी बात करवाए। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन अभी के लिए प्रोग्राम में आ रहे हैं अरिजीत सिंह।

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे promotion दे देगा. और ये coffee? Lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए. तू beach के लिए बनाए. तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
3: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी good dance भी है.
6: Just chill.
7: जी हाँ, जस्ट चिल के साथ में मैं हूँ अवि, और आपके लिए 6 तक आपका साथ देता रहूँगा. जबकि काफ़ी जगहों पर मदर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. बच्चे समय निकालकर अपने मम से आज स्पेशल मिलेंगे. कुछ गिफ्ट्स भी आपने लिए होंगे जो आज अपने मम को बड़े प्यार से आप देने वाले हों. तो ऐसे में आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर बबक्यू हो रही है, या फिर किसी तरह का भी कोई फंक्शन है, तो इस पर आप 5599 पर इस पर अपना जो मैसेज है अपने मम के नाम के साथ में ज़रूर भेजिएगा. ताकि और अगर जो आपके मम को कुछ सुनना पसंद है तो उनकी जो चॉइस है, उनकी जो फरमाइश है, ये भी आप भेज सकते हैं हमारे पास में, और यहां से आपको याद करेंगे और ये सभी कुछ आपके लिए प्ले करेंगे. और हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के बारे में आपको बता दें, एक ऐसा प्रमोशन जो रोवर ऐप पर आप इस गेम को खेल सकते हैं, जहां पर आपको वीक डेज पर हर दिन आपको कोड वर्ड्स दिए जाते हैं, सुबह 8 पर, दिन में 11 पर, और दोपहर 1 पर, साथ में शाम 5 बजे. और जैसे ही आपको ये स्पेशल कोड वर्ड्स दिए जाते हैं, विद इन 60 मिनट्स आपको ये एंटर करने होते हैं रोवर पर हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के प्रमोशन के अंतर्गत. और ऐसा करते हुए आप अपने नाम को ड्रो में शामिल कर लेते हैं टू विन रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. जी हाँ, फ्रेंडली स्माइल्स, सैंडी बीचेस और खूबसूरत लोग, क्या कहें इसके बारे में. और तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है, तो इसको मिस मत कीजिएगा. हम फ्लाई अवे फ्रेंजी इज ऑलवेज हियर फॉर यू ऑन द वीक डेज. जैसे कि हमने आपको टाइमिंग्स भी बता दिए हैं, सुबह 8, दिन में 11, 1 बजे दोपहर, साथ में शाम को 5 बजे. तो इसे ज़रूर खेलिएगा.

0: you get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
3: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
2: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
3: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
4: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
5: Make your budget stretch further with Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now $119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in-store or online at Mitre 10.
6: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और एक बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में और दो पर आपके लिए रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जिसे हर वीक आपके लिए लेकर आते हैं स्ट्रेट आफ्टर न्यूज एट 2। और लेकिन अभी के लिए इस आवा पर हम हर एक आवा पर आपके लिए इनफेक्ट यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए मदर्स डे सेलिब्रेशन पर एक कोई ना कोई गीत लेकर आए जो माँ के लिए हो, मम के लिए हो, अम्मी के लिए हो। तो ये इस आवा पर अब की बार शामिल करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना और आपको कुछ संदेश सुनाते हैं मदर्स डे के लिए। उसके बाद में ही ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए प्ले करेंगे। आपके पास में भी कोई मैसेज है 5599 पर जरूर टेक्स्ट कीजिएगा।
3: Mother's Day song brought to you by
4: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जब भी आप हम के साथ में होते हैं तो यू आर ऑलवेज अ विनर, क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग अमेजिंग प्रमोशंस आपके लिए रहता है। और अभी के लिए आपको बता दे कि आपके शहर ओकलैंड में आ रहे हैं नन अदर देन राहत फतेह अली खान। इनका जो शो है ये रहेगा एट द ट्रस्ट अरीना ऑन द 25th of July, और इनको प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं जय के स्टार प्रोडक्शंस, साथ में गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस। इनके लिए जो टिकट्स है आप खरीद सकते हैं drytickets.com पर, और जो डबल पास है आप जीत सकते हैं अगर जो आप हमारे किए गए प्रमोशन में भाग लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ यह पहचानना होगा कि जो अगला जो गाना है इसका जो ओपनिंग है ये आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, और उसी बेसिस पर जो ओपनिंग आपके लिए प्ले करेंगे और उसी बिना पर आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कौन सा गाना है, और उस गाने को अपने जवाब के साथ में सबसे पहला पहल आपको RFK लिखना होगा, क्योंकि जो फिल्टर प्रोसेस है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस का, ये RFK के ही द्वारा प्रमोशन को पिक करता है और उसी तरह से आपके ड्रॉ को एंट्री में शामिल करता है। तो अगर जो आपने सही जवाब भेजा है और RFK नहीं लिखा है तो आपकी जो एंट्रीज है टेक्स्ट मैसेजेस है ये खारिज हो जाएंगी। तो RFK ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद में जो गाना आप सोचते हैं कि कौन सा गाना है वो जवाब लिख कर 5599 पर आपको टेक्स्ट करना होगा। जितने भी सही एंट्रीज होंगे ये ड्रॉ में जाएंगे ताकि आप डबल पासेस जीत सकेंगे, जो कि रहेगा राहत फतेह अली खान शो, एक ऐसा इवेंट जहां पर कव्वाली अपने अंदाज में ये पेश करेंगे, इसके साथ में जितने भी सूफियाना सॉन्ग्स हैं आपके लिए ये प्रेजेंट करेंगे, एक ऐसे आवाज़ के मालिक जो आपको कहीं ना कहीं से दूसरे दुनिया में लेकर चले जाते हैं। तो चलो अभी के लिए आपके लिए ये बजाते हैं, ये सुनिए, और इसके बाद भी इसका जो जवाब है आप 5599 पर हमारे पास में ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा। हियर इट गोज़।

जी हाँ, बस इतना ही आपके लिए था। आपको सुनकर ये बताना होगा कि किस गाने के बारे में अब बात हो रही थी, और उसका जो जवाब है आप आरएफ के लिखकर अपने गाने, जो गाने आप सोचते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया है, 5599 पर भेजिए। बस यही इतना ही करना है आपको। जी हाँ, देट वॉज द सॉन्ग। और अगर जो आपको पता चला है तो ज़रूर हमारे पास में अपना जो जवाब है 5599 पर भेजिए, और ऐसा करके आपको ज़रूर ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। तो हमने प्ले कर दिया भाई, आप सुनिए, आप सोचिए और 5599 पर टेक्स्ट कीजिएगा।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Just Chill.
1: जस्ट चिल के कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं हूँ अभी आपके साथ में, और टेक्स्ट मैसेज में देखते हैं तो रोनल आपका खूबसूरत सा प्यारा सा मैसेज आया है। आपने लिखा, हैप्पी मदर्स डे टू माई मदर इन लॉ, और अपने सन रायन की नानी को आप विश करना चाहते हैं। ऐसे में वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल, क्योंकि माँ तो माँ होती है, आपकी हो या पत्नी की हो, और ऐसे में आज के दिन मदर्स डे पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं, तो चलो आपको कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आप भी किसी फंक्शन पर है, या फिर लंच, लेट लंच हो रहा है, या फिर डिनर की तैयारी हो रही है, आपको भी याद करते हैं हम पर। मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, ढेरों सारा प्यार लेकर आया हूँ मदर्स डे दिवस पर, और ऐसे में आपको भी वेरी हैप्पी मदर्स डे।

हम पर मैं हूं आपका साथी अभी और जबकि कुछ मैच हुए सुपर रग्बी पैसिफिक कंपटीशन के तहत जहां पर कल हाइलैंडर्स की जीत वॉरटास के खिलाफ 31-26 से हुई। इसके साथ में मोना पैसिफिका की हार हरिकन से 50-17 से हुई। मेरे ख्याल से जबकि मोना पैसिफिका का जो अगला सीजन है ये किसी न किसी तरह से लिम्बो है में है, जबकि इनको स्पॉन्सर्स की कमी साथ में फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर इनका पार्टिसिपेशन कन्फर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद ये इन पर हावी पड़ रहा है। इसके अलावा एक और एक खेल हुआ जहां पर ब्रम्बीज ने फोर्स को हराया 32-15 से। तो अगर जो टेबल की ओर देखें तो पहले स्थान पर हरिकन्स है, साथ में दूसरे पर चीफ्स, तीसरे पर ब्लूज और चौथे पर क्रुसेडर्स है, जबकि फ्यूजन ड्रुआ इस वीक बाय रही तो ये स्लिप हो चुकी है 9th पोजीशन पर, लेकिन अगले वीक शायद ये अपना 8th प्लेस एक बार फिर रिकवर कर ले, रिकूप कर ले। तो ये सभी कुछ सुपर रग्बी के तहत आप तक लेकर आ रहे थे ताकि आप भी बिल्कुल अपडेटेड रहे। हमें मालूम है ढेर सारे हमारे जो लिसनर्स हैं ये स्पोर्ट्स की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए आपके लिए जो भी कुछ फिक्चर्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, ये आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारा काम यही है।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और जबकि समय की ओर देखते हैं तो 2:02 हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं वीकली द एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर कुछ गानों के बारे में हम आपसे बात करते हैं, कुछ क्लूज देते हैं और उन क्लूज और टिप्स के बिना पर आपको सिर्फ गेस करना होता है कि कौन से गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा लगाने के बाद में अपने नाम के साथ में गाने का टाइटल, यानी कि उस गाने को आप क्या कहते हो, वही भेजना है आपको। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फिल्म का टाइटल भेज देते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। आप गाने का जो शीर्षक है, टाइटल है, वही लिखकर भेजें ताकि हमें पता लगे कि आपकी एंट्री सही है। और इसके अलावा जो सबसे पहले अपना जवाब देता है आइडेंटिफाई करके, वही इस वीक का जो चैलेंज है जीत जाता है। जैसे कि लास्ट वीक फ्लैटबुश से श्रुति ने जवाब दिया था, उन्होंने पहचाना था डर से तू मेरे सामने इस गीत को, और ऐसा ही करते हुए उस वीक को उन्होंने जीत लिया था, विच वॉज लास्ट वीक। तो इस वीक एक नया गाना है आपके लिए और इसके बारे में हम बातें करेंगे। समय आपके पास में उतना ही रहता है जैसे ही हम क्लूज को बताने की शुरू करते हैं, और बिफोर वी प्ले द सॉन्ग उसके बीच का जो समय है उतने ही समय में आपको आइडेंटिफाई करना होता है, अपने नाम के साथ में अपने जवाब को 5599 पर भेजना होता है। तो हियर इट गोज, इस वीक का जो क्लूज है अब हम शुरू करते हैं। फिल्म की टाइटल के इनिशियल्स लेटर्स बी फॉर ब्रावो है, यानी कि बी और बी। 2005 की ये क्राइम कॉमेडी फिल्म है, एक कॉमेडी एडेप्टेशन एक हॉलीवुड की फिल्म थी बोनी एंड क्लाइड, उसको एडेप्ट करके एक हिंदी फिल्म को बनाया गया और उसको एक कॉमेडी टेक लिया गया। और इस फिल्म में स्टारिंग थे अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी। इसके अलावा कहानी दो करेक्टर्स की है, राकेश और विम्मी। ये एक जोड़ी बना लेते हैं और इनका काम होता है कि लोगों को टोपी पहनाना, और एक सक्सेसफुल कौन आर्टिस्ट की जोड़ी बन जाती है जहां पर ये लोगों को उल्लू बनाते हैं और उनके पैसे ऐंठ लेते हैं। इस फिल्म में फादर एंड सन की जोड़ी यानी कि अभिषेक और अमिताभ बच्चन को साथ में देखा गया स्क्रीन पर। अमिताभ ने स्टार किया, एक रोल को लिया था इस फिल्म में JCP दशरथ सिंह। और फिल्म में जहां फादर सन की जोड़ी को देखा गया साथ में अभिषेक और अमिताभ को, इनमें थी सरकार और सरकार राज। ये जो फिल्म है ये यशराज फिल्म्स की प्रेजेंटेशन है, डायरेक्टेड बाय शाद अली। ये बंटी और बबली की मिस्चिवियस जोड़ी है जो फिल्म में एक के बाद एक कांड करते रहते हैं। तो चलो, आपको शायद फिल्म का पता लग गया होगा। 5599 पर इस गाने का टाइटल आपको भेजना है। ईयर 2021 में इस फिल्म की सीक्वल भी आई थी जिसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने काम किया। अकॉर्डिंग टू IMDB, अभिषेक का जो रोल था शुरू में ऋतिक को ऑफर किया गया था और ऋतिक ने इनको बहुत ही पोलाइटली डिक्लाइन किया, फिर इस रोल को अभिषेक ने निभाया। इस फिल्म में काफ़ी जगह पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों को रेफरेंस दिया गया है। जिस गाने को आज हमने चूज़ किया है उसकी रेफरेंस थी दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान ले लीजिए। उमराव जान से इस गाने को रेफरेंस में दिया गया था कोरियोग्राफर को, ताकि इसी तरह से उसको कोरियोग्राफ किया जाए। इस गाने को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मेचेंट ने, और आइकॉनिक इसलिए भी है क्योंकि 2005 की फिल्म के इस गाने में आप अमिताभ, अभिषेक और साथ में ऐश्वर्या राय को देख सकते हैं। ऐश्वर्या राय ने खास इस आइटम नंबर में काम किया है। और फिर 2007 में बाद में उनकी शादी अभिषेक से हो गई। शंकर महादेवन ने इस गाने को अमिताभ के लिए गाया है और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनिशियली उस गाने को उन्होंने सिर्फ एक स्क्रैच के लिए गाया था, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने उनको कन्विंस किया कि शंकर महादेवन की ही आवाज़ अमिताभ के लिए ऑन स्क्रीन रहनी चाहिए। जावेद अली, जो अभी हाल ही में अपना कॉन्सर्ट करके गए हैं, उन्होंने अभिषेक बच्चन के लिए प्लेबैक दिया है, और साथ में नन अदर देन अलीशा चिन्नोय ने इस गाने को गाया है ऐश्वर्या राय के लिए। गाने के बोल कुछ नैनों की तारीफ करते हुए, जिनमें कजरा यानी कि काजल लगी हुई आंखों की तारीफ होती है, और फिर बाद में काले काले खूबसूरत आंखों की भी तारीफ होती है। लिरिक्स गुलजार के हैं, म्यूजिक शंकर एहसान लोई का है, और साथ में गाना काफ़ी फेमस है और मस्ती भरा है। इस गाने को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। तो चलो अब आपको गाना सुनवाते हैं 5599 पर। आपको अपना जवाब भेजना है अगर जो आपको पता लग गया कि किस गाने के बारे में हम बात कर रहे थे। एंड हियर इट गोज, दिस इज द सॉन्ग फॉर यू दिस वीक।

हाँ तो बस यही गाना था आज एपिक बॉलीवुड चैलेंज में, और काफी लोगों ने इसे सही पहचाना। इनमें सोम है, प्रिया है, साथ में रक्षा है, नितिन आपका भी जवाब आया इसके साथ में, 9510 आपका भी जवाब आया, साथ में पपल आपने भी मैसेज किया था सही जवाब, अक्षय शिंदे आपका भी जवाब हमको मिला इसके साथ में, 9186 आपने भी टेक्स्ट किया शुक्रिया इसके लिए, आशीष वेलिंगटन से थैंक यू सो मच दोस्त आपने भी ट्राई किया, हमेशा आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और इस खेल को भी खेलते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और मैसेजेस आए हैं, और अगर जो देखे तो 9510 साथ में 9510 साथ में 2266 आपका भी जवाब आया, लेकिन सबसे पहला पहल जो मैसेज हमारे पास में आया है ये कोई और नहीं, फाल्गुनी का मैसेज आया है, एंड शी हैज़ वन इट अ रिकॉर्ड 5 times। जी हाँ, 5 बार इस कंपटीशन को उन्होंने जीत लिया है, और सबसे पहले क्रूज़ को सुनते ही और आपने जवाब दिया इसके लिए शुक्रिया, आप जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आपको थैंक यू सो मच कि आप इतना एक्टिवली इसको खेलते हैं, और साथ में फाल्गुनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, जबकि 5 बार आपने इस गेम को जीत लिया है। अगले वीक आपके लिए एक और कोई नया गीत लेकर आएंगे और उस पर बातें होंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के नाम ये अगला गीत करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ये था आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज।

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में इन 22 मिनट्स आफ्टर 2।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
5: Flight Centre's Big Red Sale has landed. Get $50 off return flights to Aussie and the Islands, or $100 off Asia, Europe, Africa and the Americas. Book in store today. Feast T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: The Specsavers Specstraver Gainsa store-wide sale is on now.
7: Phew, bit of a tongue twister, hey?
6: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200, only for a limited time. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
8: Zabardast hits.
9: Shuru ho jaye to rukte nahi.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Hum.
11: That's right, ये है हम playing Bollywood's biggest hits. और ऐसे में आपको बता दें कि एक गेम जो रोवा पर अवेलेबल है जिसका नाम है चिडल, जहां पर आप जाकर इस गेम को खेलकर अपने नाम को ड्रॉ में शामिल करा सकते हैं, जहां पर आपको $100 इनाम मिल सकते हैं. और एक बड़ा ही प्यारा गेम है जहां पर कीवी वर्ड सेइंग और फ्रेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है और क्लूज भी दिए जाते हैं, और उन क्लूज के बिना आप आंसर कर सकते हैं. जितनी बार आप खेलेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है आपको $100 डेली इनाम जीतने के लिए, जो $7,000 ग्रैंड प्राइज में से $100 डेली दिया जाता है. तो चेडल पे आज रोबा पर आपको चेडल ही खेलना है, एंड दैट्स वे यू कैन फाइंड द गेम. और आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए इस आवर का जो मदर्स डे गीत है आपको सुनवाते हैं और आपको विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट हम.
8: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम Playing Bollywood's biggest hits.
13: Mother's Day song brought to you by
14: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indeliblehomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold.

0: You're listening to Avineet.
1: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM साथ में रोवा पर. मैं हूं अभी आपके साथ में और बातें करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जहां पर कुछ खेल हुए हैं और इस पर जो रिजल्ट्स एंड अपडेट्स. लिवरपूल और चेल्सी के बीच में जो कल खेल हुआ, इसमें दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर ठहरी. इसके साथ में फुलहम और बोर्नमाउथ के बीच में आज सुबह सुबह खेल हुआ. दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया गया और बोर्नमाउथ की जीत एंड में 1-0 से हुई. इसके साथ संडरलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो खेल आज सुबह दोपहर हुआ, इसमें दोनों टीमें निडोल से बराबर ठहरी. मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली निडोल गेम थी पूरे सीजन की और यहां पर संडरलैंड का दबाव ज़्यादा था, लेकिन यूनाइटेड वे लकी टू कम अवे विद अ पॉइंट. ब्राइटन की जीत वुल्व्स के खिलाफ 3-0 से हुई. इसके साथ में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से हराया. और कल सुबह कुछ और भी खेल रहेंगे, जहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट और न्यूकासल के बीच में खेल रहेगा. इसके साथ में क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन के बीच में कल सुबह 1 पर रहेगा. बर्नली और एस्टन विला के बीच में इसी समय पर 1 बजे खेल रहेगा. 3:30 बजे कल वेस्ट हैम और आर्सेनल खेलेंगी. यहाँ पर वेस्ट हैम को सर्वाइवल के लिए खेलना है, आर्सेनल को इंग्लिश प्रीमियर लीग के जीत के लिए खेलना है. इसके साथ में ट्यूसडे मॉर्निंग को टोटनहम और लीड्स के बीच में खेल रहेगा. तो चलो सुनवाते हैं आपको दिल से एक और एक गाना ए आर रहमान की म्यूज़िक पर. इसे भी इन्जॉय कीजिएगा. इसके बाद में और भी बातें आपके साथ में.

0: फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
2: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.

0: Toyota Kia turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
1: IKEA.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: जी हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि कुछ 13 मिनट बाकी है 3 बजने में. ऐसे में आपको बता दे कि आपके साथ में हंसी मजाक होती रहती है और एंटरटेनिंग न्यूज़ होती रहती है, बॉलीवुड से गपशप होती रहती है, लेकिन कुछ काम की बातें भी होती है. तो आज आपको बताने वाला हूँ आपको न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट 1990 के बारे में, जिसे एनजेड बोरा भी कहा जाता है. ये एक ऐसा राइट्स एक्ट है जहाँ पर आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, साथ में आपके फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. खासकर अगर जो आपको किसी कारण पुलिस ने रोका है रास्ते पर, या फिर किसी कारण से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बुलाया गया है, या फिर आप तक आए हैं, तो आपको पहले ये आपके राइट्स बताते हैं कि किस कारण से आपको अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है. अक्सर ये जब आपको राइट बताएंगे तो आपको राइट टू साइलेंस का भी बारे में इनको बताना पड़ेगा, यानी कि आप किसी भी सवाल का जवाब अगर जो नहीं देना चाहते, यू कैन मेंटेन और रिमेन साइलेंस थ्रू आउट. तो आप इनको यही बता दें कि आप अभी कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो उनको इस बात को रिस्पेक्ट किया जाएगा. इसके साथ में राइट टू अ लॉयर, अगर जो आपको किसी तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आप पुलिस से बता सकते हैं कि मुझे लॉयर से बात पहले करनी है, इससे पहले कि मैं आपके सवालों को जवाब दूं. और ये सब जो है अंडर न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट के नीचे दिए गए आपके पास में आपके हक है, ह्यूमन राइट्स की तरह इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद पुलिस. तो याद रहे, राइट टू साइलेंस एंड राइट टू अ लॉयर, ये आपके फंडामेंटल राइट्स है. अगर जो आप किसी तरह से आप कानून के घेरे में आए हैं, तो ये राइट्स रिमेन विद यू. तो ये आपके साथ में शेयर कर रहे थे, और हम पर आपका साथी हूँ अभी. इसी तरह से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: What kind of businesses run on business fiber? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fiber.
4: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में. एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन.
5: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: The award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes. Find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
10: Mum's the word and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend with a mumbelievable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
11: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
12: अच्छा,
11: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
12: Mrs. Singh.
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और समय की ओर देखते हैं तो 3:01 हो चुका है. वी आर हाफ वे थ्रू द शो जस्ट लाइक दैट. 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. 104.2 FM साथ में रोवाय पर आप हमें सुन रहे हैं. आज जबकि है 10th of May, मदर्स डे है. जितने भी प्यारी प्यारी माएँ हैं आउटसाइड है, आप शायद बाहर गए हैं, आपको ट्रीट दिया जा रहा है. तो हमने आपसे वादा किया था कि थोड़ी देर में आपकी बातें कराएंगे हम की मम से. जी हाँ, जो मम्स हमारे साथ हम पर होते हैं यहाँ से आपके लिए हर सुबह आ जाती है. और चलिए अपने टेलीफोन्स लाइन की ओर देखते हैं. हमारे साथ में हो गई है हमारी हम की खुद की पूजा. पूजा, आपका खास स्वागत है हम पर. हैप्पी मदर्स डे.
2: थैंक यू सो मच अभी. थैंक यू सो मच. थैंक गॉड आई डिडंट से सेम टू यू, बट थैंक यू फॉर द विशेस.
1: अच्छा, कैसा था आज आपका दिन आपके लिए?
2: अच्छा था. इनफैक्ट बहुत अच्छा था. आई डिडंट रियलाइज कि इतना कुछ होगा, बट सो फार सो गुड. अभी खत्म नहीं हुआ ना, सेलिब्रेशन इज स्टिल ऑन.
1: अच्छा, हमारा जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने सोचा शायद आपको ब्रेकफास्ट इन बेड मिला होगा विजय की ओर से, और कुछ पेम्परिंग वगैरह कुछ था ऐसा स्पेशल.
2: It was not breakfast in bed because we both don't support the idea of having breakfast in the bed. Okay. But it was a nice breakfast, definitely. जो उन्होंने खुद prepare किया था, जो हम सबने मिलकर साथ में enjoy किया था, it was really good.
1: Okay, thank you. और मेरे ख्याल से आप you're still having a beautiful moment outside अपने daughter के साथ में आप enjoy कर रही हैं.
2: Yes, actually ऐसा कुछ था नहीं plan में. I mean, as far as I knew, because I had strictly said कि let's just stay home, enjoy time at home. लेकिन all of a sudden पता चला कि हम कहीं जा रहे हैं, जिसके बारे में मेरी बेटी कल से बोल रही थी कि यहाँ चलते and then finally we are here, just having a look around, कुछ shopping वोपिंग कर रहे हैं अभी. I'm still in the mall by the way, when आपका call आया तो still shopping, so let's see. As I said, the celebration is not over yet.
1: Nice. और जाते जाते जितने हमारे mums अभी हमें सुन रहे हैं उनको क्या message देना चाहोगी आप?
2: I love to wish you all a very, very happy Mother's Day. आज बहुत ही special दिन है और all the moms in the world deserve all the love, all the respect, all the care. पूरी जिंदगी कभी कभी हमारी moms जो है ये निकाल देती हैं, you know, हमारे लिए for the kids, for the family. So they definitely deserve it. In fact, एक दिन नहीं होना चाहिए Mother's Day. I think Mother's Day, Father's Day जैसे जो दिन है ये हर दिन celebrate करना चाहिए, but it's specially marked on this day. So make the most of it and spend good quality time with your mom and make beautiful memories.
1: Wonderful thought. Thank you so much, Pooja. आपने समय निकाला हमारे listeners के लिए, हमारे लिए, हमारे show पर आकर आपने Mother's Day के लिए इतना प्यारा से message दिया है, और आपको हमारी ओर से once again a happy Mother's Day.
2: Thank you so much, Avi. Enjoy the show, everyone, with Avi. Just chill का मजा लेते रहें, और Avi मैं तो आपसे कल सुबह मिलूंगी.
1: अच्छा, फॉर द राइट रीजंस आई होप.
2: या ऑफ कोर्स.
1: अच्छा नहीं, चलो मैंने सोचा कि कहीं आप सुबह सुबह आप हमेशा एक्टिव रहती हो व्हाट्सएप में ना, प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजती हो हमारे पास में. मैं बोला कि शायद ऐसा तो नहीं कुछ है कि आप उस तरह के मैसेज भेजोगे कि आपने कल शो में क्या किया.
2: नहीं नहीं, वैसा वाला कोई मैसेजेस नहीं. आई मीन लाइक ऑन रेडियो फॉर द शो.
1: थैंक यू सो मच पूजा. यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन एयर.
2: थैंक यू अवि. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.
1: थैंक्स. बाय. तो ये थी पूजा हमारे साथ में, और आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज लेकर आई थी मदर्स डे के ओकेजन पर. और चलो थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि किसी और पर्सनैलिटी से बात हो, आपके लिए मदर्स डे पर क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बातें करेंगे. एंड वी विल ट्राई टेक समवन एल्स ऑन एयर, लेकिन अभी नाम नहीं बताएंगे, सीधा बात ही करवाएंगे.

जी हाँ, हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और ऐसे ही कारोबार चलता रहेगा और बातें होती रहेंगी, मदर्स डे के बारे में और भी चर्चा होती रहेंगी। बस थोड़ी देर में आपके लिए एक और एक पर्सनैलिटी को लेकर आएंगे, कोशिश जरूर करेंगे।

0: लवोपोइ इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली.
1: हम पर रवि का साथ है और 3:11 हो चुके हैं जबकि मदर्स डे है. ऐसे में आपको बता दे, माँ जो होती है, अम्मी आप कहते हैं या फिर मम कहते हैं या फिर अम्मा कहते हैं, ये अक्सर अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत होती है. यानी कि ममता की झलक इनके भीतर होती है और बाहर से जो इनके स्नेह और प्रेम होती है ये अक्सर अपने बच्चों के लिए होती है. और ऐसे में हमारे पास में एक और एक पर्सन ऑन द लाइन है, एक पर्सनालिटी ऑन द लाइन है जो ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड और ऑन द आउटसाइड ऐसी ही है. तो आपका स्वागत करते हैं हमारे लाइन्स पर है कशिका जी. हैप्पी मदर्स डे आपको.
2: थैंक यू सो मच अभी एंड थैंक्स फॉर एंजॉयिंग योर शो. Enjoying the lovely songs and the lovely weather.
1: Thank you so much for that. आज का दिन आपके लिए अभी तक कैसा रहा?
2: मेरा दिन अच्छा जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं सुबह कुछ कम्युनिटी वर्क कर रही थी एंड वी गैदर्ड अ लॉट ऑफ लेडीज टुगेदर और हम लोगों ने एक अच्छा जबरदस्त एक लंच ऑर्गेनाइज किया हुआ था एंड ऑल ऑफ अस सेलिब्रेटेड मदर्स डे टुगेदर. सो वी वर 70 लेडीज टुगेदर एंजॉयिंग.
1: हाँ, किसी को आपको मौका मिला बात करने के लिए?
2: सबसे बहुत लोगों से बात, 70 लेडीज थी.
1: हाँ ना, it's a big number. It's quite impressive.
2: Yes. I keep doing such things for the community.
1: हाँ, वो तो मुझे पता है. मैं देखता रहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ हमेशा लोगों के लिए करती रहती हैं. यू आर ऑलवेज आउट देयर. ऐसे में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप जितने भी मदर्स हमें आप सुन रही हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी ओर से?
2: मम्स को मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि उनसे बेहतर कोई नहीं और हर दिन एक मदर्स डे है. तो जब हम कहते हैं ना कि हर एक दिन मदर्स डे, आज एक दिन 10th में हम मदर्स डे मना रहे हैं, मतलब सेकंड संडे को हम मदर्स डे मना रहे हैं, बट रोज मदर्स डे होता है. माँ का ही तो एक बहुत बड़ा कहते हैं जो प्रेम होता है, ब्लेसिंग होती है, वो हम पर हमेशा रहती है और वो हमारा दिन शुरू भी ऐसे करती हैं और एंड भी करती हैं.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. मेरी माँ इस वक्त फिजी में है एंड माई वाइफ इज़ अ मदर टू, बिकॉज हमारे पास में 2 बच्चे हैं प्यारे से. माँ में वो बात होती है ना कि जो कुछ होने से पहले उनको आहट हो जाती है कि कुछ होने वाला है, या फिर वो हमेशा ऐसे समय पर अपने बच्चों को रीच आउट करेंगे. शी नोज दैट समथिंग इज गोइंग ऑन.
2: एब्सोल्युटली. और ऐसे में आई हैव गॉट बोथ माय डॉटर्स हु रोट अ ब्यूटीफुल पोएम फॉर मी. And I thought I can read that out to you.
1: Why not? Bilkul kijiye.
2: So they have written, since the day I was small till the day I became tall, since I began understanding things till the day I got my own wings, your love has never fallen short. You have been my rock solid support. I want to hold you tight and hug you. I just want to say a zillion times thank you. I struggle so deeply to understand how someone can pour their entire soul, blood and energy into someone without wanting anything in return. My mother kept a garden of the heart. She planted all the good things that gave my life its start. She turned me to the sunshines and encouraged me to dream. Fostering and nurturing the seeds of self-esteem. And when the winds and rain came, she protected me enough, but not too much, because she knew I'd need to be strong and tough. Her constant example always taught me right from wrong. Markers for my pathway that would last a lifetime long. I am my mother's garden. I am her legacy. And I hope today she feels the love reflected back from me. This was it.
1: So nice. पूरा का पूरा इमोशन उसमें डाल दिया है पोएम में और बिल्कुल अपने दिल की बातें कही हैं. हाँ, so nice to have you on air, कशिका जी. Thank you so much. आपने
2: Thank you so much. Thanks for taking me on air. And I'd like to wish all the mothers a very, very happy Mother's Day. God bless you. You guys are the rock stars. You guys are the superstars, the chief minister, the chairman of the house.
1: Lovely. Thank you so much for your kind words. आपसे फिर मुलाकात होगी कशिका जी. Thank you.
2: जी, definitely. Take care. Bye.
1: Bye. तो ये थी कशिका जी, हमारे साथ में लाइंस पर हो गई थी और ब्यूटीफुल मैसेज दिया है आपको मदर्स डे के लिए। और ऐसे में आप भी अपना जो संदेश है 5599 पर भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा। आपके मम के कोई फेवरेट गाने हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं वो भी हमारे पास में ज़रूर भेजिएगा और यहाँ से आपके लिए प्ले करते रहेंगे।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और चलो इस शो को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं आपके लिए। आपको सिर्फ ये बताना होगा, जबकि सवाल हमारा ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर ज़्यादा काम में आती है। आपको मालूम है ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर ज़्यादा काम में आती है? इसका जवाब अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करें, और अगर जो कोई गीत भी सुनना चाहते हैं तो इसी जवाब के साथ में भेजिए। ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो टूटने पर ज़्यादा काम में आती है? अक्सर आप इसे शायद घर के अंदर ही पाते हैं, या फिर क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो चलो थोड़ा ही समय देते हैं आपको, सवाल यही है ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर ज़्यादा काम में आती है। 5599 पर अपने नाम के साथ में अपना जवाब ज़रूर हमारे पास में भेजें।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
9: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
10: Showerdome.co.nz.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: Indelible Homes.
14: Non-stop Bollywood.
15: हम
14: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
16: हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और हमारा सवाल वही था कि ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर आपके ज्यादा काम आती है। 5599 पर अपने जवाब को भेजिए अपने नाम के साथ में, और अपने आंसर्स जरूर हमारे पास में भेजिएगा, और आपसे थोड़ी देर में और भी कुछ बातें होंगी।

0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: Mother's Day song brought to you by
0: Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
3: जी हाँ, अब समय हुआ कि आपके लिए प्ले करें मदर्स डे सॉन्ग। लेकिन इसको बजाने से पहले हमारे पास में शेल्विन ने ऑफ एयर कॉल किया था और आपने डेडिकेट करना चाहा है अपनी माँ सुनीता को ये गाना, जबकि आपने टियर टू ओकलैंड से कॉल किया और आपने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि अगला जो गाना बजाना माँ के लिए, तो इसमें मुझे भी शामिल कर लेना, मेरी मम को भी शामिल कर लेना। तो हियर इट गोज़, शेल्विन आपके लिए और अपनी आपकी मम सुनीता के लिए ये गाना।

एक बार फिर से हमारी ओर से, हम सभी की ओर से, हम पर आपको विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे। और आपका जो दिन है, जितनी भी माएँ हमें सुन रही हैं, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल रहे। और अभी जबकि दिन बाकी है, तो शाम होते होते आपको ढेर सारा और मैसेजेस मिले, साथ में फ़ोन कॉल्स मिले, और जगह जगह से, दुनिया के हर कोने से आपको खुशियाँ मिले।

तो आपको बता दें, जबकि मई का महीना है तो इस एनजेड म्यूजिक मंथ यानी कि हमारे जितने लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट है, कलाकार है, इनको हम इनकरेज कर रहे हैं विद बैक योर बैकयार्ड बीट्स, एक ऐसा मौका जहां पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा लोकल आर्टिस्ट को कि अपने अपने जो ओरिजिनल कंपोज्ड किए गए हुए गाने हैं ये इनको हमारे पास में सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद में जबकि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो शॉर्टलिस्ट होने पर आपको एक कॉन्टेस्ट में रखा जाएगा जहाँ पर हमारे जो से वोट करेगी अक्रॉस द रेडियो एंड साथ में सोशल मीडिया। और इसके बाद में चयन होने के बाद में आपको जो शॉर्टलिस्टेड सेलेक्टेड आर्टिस्ट टॉप थ्री में रहेंगे उनके गानों को रोवा पर भी पेश किया जाएगा। तो याद रहे, अगर जो इसमें आप भी शामिल होना चाहते हैं तो अपने जो ट्रैक है उसको अपने बायो के साथ में buzz@humfm.com पर ज़रूर ईमेल करें। अगर जो आपको ये ईमेल आईडी टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो 5599 पर MM लिख कर भेजिए। अभी तक जो आर्टिस्ट हमारे शॉर्टलिस्ट हुए इनमें शामिल हैं हमारे खुद के केतन कुमावत, साथ में AJ ऑल्सो नोन एज अर्जुन, और ये जो मुंबई में बड़े बोर्न हुए हैं, यहाँ न्यूजीलैंड में बड़े हुए हैं, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, साथ में प्रोड्यूसर भी है, ढेर सारे क्रिएटिव हेड्स इन्होंने पहना है। इसके साथ में एफाज लालानी, इनका भी सिलेक्शन हुआ, साथ में योगी है जो कि फगवाड़ा पंजाब से ओरिजिनली है लेकिन अब न्यूजीलैंड बेस्ड है। तो ये सभी कुछ कलाकार इनके साथ में DJ Chilli ये भी सेलेक्ट हुए हैं। तो इनका जो सबमिशन है ये हो चुका है, साथ में ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आप भी अभी भी पार्ट ले सकते हैं, आपको सिर्फ अपने जो ओरिजिनल कंपोज किए हुए गाने हैं इनको हमारे पास में अपने बायो के साथ में buzz@humfm.com पर भेजना होगा। और जब भी सब सेलेक्शंस हो जाएंगे, जो टॉप थ्री रहेंगे इनको हैम्पर भी दिया जाएगा। ये सभी कुछ आपके लिए एनकरेजमेंट की तरह है ताकि हमारे जो लोकल टैलेंटेड लोग हैं ये भी आगे बढ़कर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम करें।

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Whether mum's into movies, meals or mountain adventures, Gift Station has a gift card for that. Choose from event cinemas, Uber or MacPack and give her exactly what she loves this Mother's Day. Shop the range at giftstation.co.nz.
2: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
6: Give mum the gift of sport with epic deals from Rebel. Like 30% off Lorna Jane and 30% off running and fitness accessories. Or give mum the choice with a Rebel gift card. End Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
7: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good afternoon to you. I'm Jeff Bryan with the latest at 4. The US continues to wait for Iran to respond to a proposal on ending the war. Iran says it's not running to a US timetable and is vowing to retaliate with a heavy assault against US assets if ships face further attacks. Two people remain in hospital after being seriously injured in an alleged robbery in Hamilton overnight. A group entered a premises in Dinsdale shortly before 10. A 17-year-old has been arrested. The Ministry of Foreign Affairs says it is assisting a New Zealander on board the virus-stricken cruise ship MV Hondius. Three people have died of Hunter virus, and the ship, with the remaining 150 passengers, is due to anchor in Tenerife in Spain today. And Southland wants to avoid a winter blanketed in pollution. The region's air quality monitoring season has begun. Ash Rabel from Environment Southland says there's one main culprit.
9: It's the colder months, so it's when people are heating their homes, and typically fires are one of the biggest contributors to poor air quality in residential areas like Invercargill.
8: To sport and football updates brought to you by Hisense, the Phoenix Women levelling their A-League semi-final with the Roar. Heading into the second playoff 2-1 down on aggregate, Wellington scored near the end of the first half on Sky Sport.
10: Woods, up and over, and we reach parity. Michaela Woods sends the home fans into screams of delight.
8: And to Rugby League, Warriors playmaker Tana Boyd is set to sign a deal to stay in New Zealand.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Put your hectic gun in.
13: Yo.
7: You're listening to Avineet.
14: जी हाँ, हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि मदर्स डे हैं, ऐसे में आपको अनेकों बार बधाइयाँ विशेज़ देते आ रहे हैं दिन भर आपके लिए, और मदर्स डे का जो गाना है ये भी प्ले करते रहे हैं। तो इस आवर पर भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। 4:02 हो चुके हैं, जबकि 2 घंटे तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। आई एम हियर विद यू टिल 6। ऐसे में इस आवर की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड मम्स के साथ में। जी हाँ, आपको पता होगा, आपने काफ़ी फिल्मों को देखा है, आपको मालूम है कि फिल्मी माँ जो होती है इनका अलग अंदाज होता है। तो चलो आपको कुछ सुनवाते हैं। ये सुनने के बाद में आप ज़रूर बताइए हमें मैसेज करके कि हु डू यू थिंक इज़ दिस फिल्मी मम, यानी कि ये क्लिप सुनने के बाद में इसका अंदाज़ा लगाइएगा कि किस फिल्मी माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं इस बार।
13: मैं पूछती हूँ आखिर क्या बुराई है इस नाम में। ओम बोलकर हम भगवान को याद करते हैं, प्रकाश बोलकर हम अंधेरा दूर भगाते हैं, और
15: मखीजा मखीजा बोलकर हम मक्खी उड़ाते हैं। ना मक्खी, ओम और प्रकाश तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा माँ, बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मखीजा नाम के साथ मैं कभी हीरो नहीं बनूंगा, कभी हीरो नहीं बनूंगा।
13: तू बनेगा मेरे राजा, तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा।
14: तो ये माँ की दिल की बात है कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर हीरो बनेगा। किस माँ की आवाज़ आप सुन रहे थे, हु इज़ प्लेड दिस फिल्मी माँ, आपको 5599 पर हमारे पास में मैसेज भेजना है अपने नाम के साथ में। तो इसी के साथ में इस आवर की शुरुआत करते हैं। अभी आपको क्लिप सुनाया, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा 5599 पर। और अब की बार शामिल करते हैं अरिजीत सिंह को फ्रॉम भूत बंगला, जहाँ पर इस गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था।

0: हम पर रवि का साथ है, और जबकि सवाल हमने किया था आपसे कि किस फिल्मी माँ की आवाज़ ये थी, विच एक्ट्रेस हैज़ प्लेड दिस फिल्मी माँ, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन एंजल और राहुल आप फिसल गए हैं। तो चलो, खास आपके लिए, स्पेशली फॉर यू, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, और इसके बाद में दोबारा ट्राई कीजिएगा 5599 पर।
1: मैं पूछती हूँ, आखिर क्या बुराई है इस नाम में? ओम बोलकर हम भगवान को याद करते हैं, प्रकाश बोलकर हम अंधेरा दूर भगाते हैं, और
2: मखीजा मखीजा बोलकर हम मक्खी उड़ाते हैं। माँ मक्खी, ओम और प्रकाश तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, माँ बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मखीजा नाम के साथ मैं कभी हीरो नहीं बनूंगा, कभी हीरो नहीं बनूंगा।
1: तू बनेगा मेरे राजा, तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है।
0: जी हाँ, तो ये एक माँ का दिल कहता है, और माँ इज ऑलवेज राइट। तो अगर जो आपको पता चला कि किस एक्ट्रेस ने इस फिल्मी माँ का रोल किया है, तो 5599 पर जरूर भेजिएगा हमारे पास में, जबकि एक और गाना आपको प्ले करेंगे, आपके लिए प्ले करेंगे, इसके बाद में जवाब को जरूर आपके साथ में आपको बताएंगे। ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम, मैं हूँ अवि।
3: कहीं एक

हम पर 4:15 हो चुके हैं, ऐसे में आपको विश करेंगे हैप्पी मदर्स डे। और इस आवर पर हमने आपको सुनवाया फिल्मी मम को, जी हाँ। और आपसे पूछा था कि आपको क्या लगा, कौन सी एक्ट्रेस इस फिल्मी मम का रोल अदा कर रही हैं। तो फिल्म ओम शांति ओम से ये थी किरण खेर, और शैली आपने जवाब दिया है सही, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ में अमित नमस्कारम, आपने मैसेज भेजा है, सही जवाब आपने भेजा। इसके साथ में आपने हैप्पी मदर्स डे विश किया आपने मम मीना, साथ में पत्नी अनिशा को। तो हमारी ओर से मीना और अनिशा को हैप्पी मदर्स डे, और आपने अपनी डोटा, प्यारी सी डोटा अमायरा को भी याद किया है। इसके साथ में आपने रितु, आपने भी मैसेज किया है किरण खेर फ्रॉम ओम शांति ओम, थैंक यू सो मच। और इसके साथ में ये फिल्मी माँ शेम कुमार का कहना है कि ये किरण खेर ही है। और इसके साथ में अनोनिमस, आपने भी अपना जवाब भेजा इसके लिए, थैंक यू सो मच। आहाना, आपका भी जवाब मिला। देवीना, आपने भी पार्टिसिपेट किया, थैंक्स अ लॉट। तो ये था आपके लिए फिल्मी मम, और साथ ही साथ में हेमंत, आपका भी जवाब सही हमको मिला। और इसी के साथ साथ अगले इस गीत में आप सभी को शामिल करते हैं।

हम पर अभी के साथ है और हिंदी में एक कहावत है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो ये आपसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो फिल्मी माँ के बारे में कॉन्टेस्ट पूछा था इसमें तीन नाम छूट गए थे, इनको शामिल कर लेते हैं। भावना भी थी, इन्होंने भी सही जवाब दिया था, इसके साथ में भाविक थे और इसके साथ में शगुफ्ता थी जो जिन्होंने सबसे पहल अपना जवाब हमारे पास में भेजा था। तो आप तीन लोगों को स्पेशल अगले इस गीत में शामिल करते हैं। अभी के साथ है छः, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा।

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: Jen didn't think she needed a DVS system.
4: Oh, I've got insulation in that.
3: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
4: Ah, yeah.
3: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: The heart of a healthy home, DVS.
6: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboat from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Kethan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jess Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
9: Don't miss out.
10: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
10: हम playing Bollywood's biggest hits.
12: This is Just Chill on Hum और मैं हूं अभी आपके साथ में. आपको बता दें हम म्यूजिक स्टेशंस के बारे में, जहां पर हम रिवाइंड रोवर पर नंबर वन म्यूजिक स्टेशन पर आपको बॉलीवुड के गोल्डन ईरा 60s और 70s के गाने मिलेंगे. इसके साथ में रोवर के नंबर टू स्टेशन पर म्यूजिक स्टेशन पर आपको 80s के गाने मिलेंगे. इसके साथ में फिजी भजन्स भी वहां पर प्लेटफॉर्म पर रखा गया है आपके लिए, अगर जो आप भजन सुनना पसंद करते हैं. इसके साथ में पंजाबी हिट्स यहां पर चढ़दी कला का एक प्लेटफॉर्म अलग से दिया गया है ताकि आप पंजाबी हिट्स को भी इंजॉय कर सके. इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह भी बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, और राहत फतेह अली खान के लिए अलग से आप फैंस के लिए रखा गया है सूफी गाने को, साथ में कवालियों को, जिसे आप रोवा पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. अब की बार शामिल करते हैं कार्यक्रम में शुभा मुद्गल को, और इनकी आवाज में ये गाना मुझे आजकल बहुत पसंद है.

यह जश्चिल हम पर और अभी के साथ है और एक ही महीना कुछ बचा है जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसको शुरू होने में जितने भी फुटबॉल क्रेजी फैंस है ऑल ओवर न्यूजीलैंड आप भी इसको फॉलो करेंगे और यहाँ पर एक आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो शायद इस टूर्नामेंट को अफेक्ट करेंगे जिनमें बताया गया है हीट थंडरस्टॉर्म और पुअर एयर क्वालिटी जो वाइल्ड फायर से आ सकते हैं ये सभी कुछ शायद कुछ गेम्स पर असर करेंगी जबकि ये जो टूर्नामेंट है यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको के बीच में इन तीनों कंट्री के बीच में शेयर किया जाएगा तो ऐसे कहते हुए फीफा ने इसको एक्नॉलेज किया है और उन्होंने कहा है कि आवर कमिटमेंट टू प्लेयर वेलफेयर रिमेन्स इंटैक्ट यानी कि प्लेयर वेलफेयर को देखते हुए उन्होंने एक 3 मिनट कूलिंग ब्रेक ईच हाफ में इंट्रोड्यूस करने को सोचा है जहां पर यूजुअली जो फुटबॉल मैच होता है यहां पर सिर्फ हाफ टाइम का ही ब्रेक मिलता है और शायद बीच में कोई वाटर ब्रेक मिले लेकिन एक मैंडेटरी 3 मिनट का जो कूलिंग ब्रेक है ईच हाफ में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो ह्यूमिडिटी है साथ में हीट और जो पुअर एयर क्वालिटी को लेकर अगर जो कोई इश्यूज कोज हुआ है तो इसमें प्लेयर्स का जो वेलफेयर है ये बिल्कुल लुक आफ्टर किया जाएगा तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये बिल्कुल जून के महीने में इसकी शुरुआत है और काफ़ी लोग इसे दुनिया भर से फॉलो करते हैं यहाँ न्यूजीलैंड में भी काफ़ी लोग अर्ली मॉर्निंग्स में उठकर इस गेम को इन मैचेस को ज़रूर लाइव देखेंगे।

104.2 FM साथ में रोवा पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं अभी आपके साथ में और आपको बता दूं कि आज का जो मौसम है यहां पर सनसेट फोरकास्ट किया गया है 5:28 PM और रात को ठंडी रहेगी क्योंकि टेम्परेचर्स विल बी एज लो एज 13 degrees, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
1: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Put your head to Gandhi.
4: Yo.
5: You're listening to Avineet.
6: जी हाँ, अभी का साथ है और 5 बज चुके हैं, तो दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो। ऐसे में इस आवर पर आपके लिए मदर्स डे सॉन्ग एक बार फिर शामिल करते हैं, और जितने भी माएँ हैं आउटसाइड आउट देयर लिसनिंग टू मी, आपको सभी को विश करना चाहते हैं हैप्पी मदर्स डे। इसी तरह से हमारे साथ देते रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा अपनी इवनिंग। शायद कई जगह पर डिनर का भी प्रबंध किया गया है, फैमिली गेट टुगेदर है, आपको शामिल करते हैं इस मदर्स डे सॉन्ग में।
2: Mother's Day song brought to you by
5: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold.

हम पर रवि का साथ है और आपको याद दिला दे, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपकी उड़ान से पहले आपके पर नहीं काटते, जो आपके पर काटते हैं वो आपसे प्यार नहीं करते। बस सिंपल है।

Ninja.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
4: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
5: Get it sorted with cheap ass deals. Save 40% on a 12 centimeter living foliage Monstera Deliciosa, now $9. And get over 50% off a Gutter Boss spouting protector, now $7. Limited stock, cheap ass deals. In Sunday at Mitre 10.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें. सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है. सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड.
7: हम पर मैं हूं आपका साथी अवि. और कम्युनिटी न्यूज में आपको बता दें कि फिजी गिरमट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एसेप प्रॉपर्टी फाइनेंस स्पेशलिस्ट के साथ में मिलकर आपके लिए लेकर आ रहा है 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. हमारे लिए फिजी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन. इसके सेलिब्रेशन में लोगों को रिकोगनाइज किया जाएगा ऑन द 16th of May. जी हाँ, आपको सिर्फ जाना होगा मलयोला कम्युनिटी सेंटर जो सिचुएटेड है 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में, जहाँ पर जो सेलिब्रेशंस है ये रिमेम्बरेंस डे का, ये 4:30 PM से इसकी शुरुआत होगी टिल 8:30 PM. यहाँ पर जो डोर्स है ये ओपन होंगे एट 4 PM. नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिलेगा, साथ में टी एंड स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड एट शार्प 4:30. और एंट्री बिल्कुल फ्री है. ढेर सारे ऐसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट रहेंगे जिनमें शामिल है लाइव सिंगिंग, रोल प्ले और साथ में स्पीचेस भी रहेंगी. ये सभी कुछ आप जाकर विटनेस कर सकते हैं. और जानकारी के लिए fijigirmitnz@gmail.com पर जरूर ईमेल करें.

हम्प और मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको बता दूँ कि आपके पास, आपके आसपास में द ग्रैंड मस्ती नाइट का हंगामा होने जा रहा है, जिसे आप तक लेकर आ रहे हैं वाइब मिक्स इवेंट्स। और यहाँ पर आप फीजी के आरजेस को देख सकते हैं, जिनमें शामिल है एसएन, जय और राउडी नमन, और इनके साथ में ढेर सारा और एंटरटेनमेंट रहेगा। और हमारे अपने केतन भी वहाँ पर लाइव परफॉर्म करेंगे आपके लिए स्टेज पर, और इस इवेंट के लिए जो कि रहेगा 23 मई को और एट दी नेटबॉल मनी रिवर कोर्ट्स, यहाँ पर जो डोर्स है 6 PM इन द इवनिंग से खुलेंगे। टिकट्स इस इवेंट के लिए VIP जो टेबल सीटिंग है इज फॉर $50, और साथ में स्टैंडर्ड टिकट प्राइस इज $30, जिसे आप हंटर्स फूड टाउन पपटोई, जेज फ्रेश मार्ट पपटोई, साथ में गेट फ्रेश सुपर मार्केट मेंगरी, कैसे एंड ब्यूटी सलून मनीरेवा, साथ में विकेट चिकन एट बोटनी डाउंस और जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलून कैवेंडिश ड्राइव से ले सकते हैं। याद रहे ये जो इवेंट है द ग्रैंड मस्ती नाइट, ये रहेगा 23 मई को।

0: ब्रांच में है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

मेला द फूड कार्निवल ये रहेगा संडे 17 मई को 11 बजे दिन से लेकर 4 बजे शाम तक. आपको सिर्फ जाना होगा 378 आरा रिमू रोड रामा रामा साउथ ओकलैंड, जहां पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल के लिए धन इकट्ठे किए जा रहे हैं और यहां पर आपको फ्री एंट्री रहेगी. साथ में फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सेव किया जाएगा. इसके साथ में फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट और इडली सांभर और साथ में ढेर सारे ऐसे स्टॉल जहाँ पर आप कपड़े या फिर ज्वेलरी की खरीदबीन कर सकते हैं. यहाँ पर हिना आर्टिस्ट भी रहेंगे. बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट में पेंटिंग और बाउंसी कासल भी रहेगा. और जानकारी के लिए आपको कॉल करना है शिवानी को 0218700012 या फिर शांति रवि को 0212946394 पर.

0: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है।
1: Yo, yo, honey sing.

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। आपके साथ जब भी रहते हैं समय को पंख लग जाते हैं, क्योंकि टाइम जस्ट फ्लाइज। ऐसे में यही वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीकेंड पर होगी। और आज के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, औरों को भी खुश रखिएगा, खुद भी खुश रहिएगा। और इसी बातों के साथ में आपको छोड़ जा रहे हैं कल के लिए, एक नए वीक के लिए आपको बेस्ट विशेज़। और आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? जी हाँ, डू टेक केयर, बाय।

आज है 10 तारीख में और एवरी सिंगल सोल इन द वर्ल्ड इनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज है मातृ दिवस, मदर्स डे। चाहे आप एक पुरुष हैं, चाहे नारी हैं, चाहे आप एक बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, माँ, आपकी माँ शायद थी, शायद आपके बीच अब नहीं है, या फिर अभी भी आपके आसपास है, आपसे दूर है। माँ की अहमियत आप जानते हैं और जानना ही होगा, क्योंकि अगर माँ नहीं होती आपकी तो आपका वजूद ही नहीं होता, आप हो ही नहीं सकते थे इस दुनिया में। तो आपकी माँ है तभी आप है, और उनका शुक्रगुजार होना आपको बहुत ज़रूरी है। A very happy Mother's Day to everyone, every lady out there, जो एक माँ है, जो एक नानी है, आजी है, या फिर you are someone who's expecting your first child. A very, very happy Mother's Day. माँ होना और माँ का होना दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माँ ही आपकी पहली गुरु है, माँ ही सबसे पहली शिक्षक हैं आपके। तो सभी माताओं को हम सल्यूट कर रहे हैं, बस आशा ही करते हैं जिनके पास माँ है आप उनको प्यार देते रहें, जिनके पास नहीं है हम जानते हैं कि उनके आदर्श पर आप चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके ज़िंदगी को सवार रहा है। आइए, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज़। आपके डेडिकेशंस को हम शामिल करते चलेंगे, एंड कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां हैं माँ के लिए। जितना भी कहा जाए माँ के लिए कम है, लेकिन कहना ज़रूरी है। तो आप अपनी मम को ज़रूर ये बताएं कि वो आपके लिए कितनी स्पेशल है और उनके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये कुछ पंक्तियां सुनते हैं, उसके बाद में एक मदर्स डे गीत हम आपके लिए शामिल करेंगे, एंड विल किक ऑफ संडे नाइट मेलोडीज़ Saluting all the mothers out there in the world. मेरी उंगली थाम कर चलना सिखाया है जिसने, मेरी हर छोटी जीत पर मुस्कुराया है जिसने, सारे जहां की खुशियां कम है उसके आगे, खुदा का दूसरा रूप बनकर मुझे पाला है जिसने, जब भी चोट लगती है लबों पर तेरा नाम आता है, तेरा एक बार सिर सहलाना हर दर्द को मिटाता है, कड़ी धूप में तू बरगद की ठंडी छांव सी है, मेरे उजड़े हुए रास्तों में तू बसे हुए गांव सी है, तेरे होने से ही मेरा वजूद मुकम्मल है, तू है तो मेरी जिंदगी का हर पल सफल है, दीवारों को घर बनाती है माँ, बिखरे रिश्तों को सजाती है माँ, खुद गीले में सो जाती है अक्सर, पर हमें सूखे में सुलाती है माँ, भले ही हम कितने ही दूर निकल जाए हर मोड़ पर लौट कर आने की वजह होती है माँ। A very happy Mother's Day to all the mothers in the world.

0: Mother's Day Song, brought to you by
1: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A must food. 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
2: हर घंटे पर मदर्स डे सॉन्ग आपके लिए हम शामिल करते चलेंगे. वैसे संडे नाइट मेलोडीज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. मैं हूं जिकाश एंड हम दिल से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम जल्द से देख लेते हैं कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है कम्युनिटी न्यूज़ में. अगर आप भी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड यू वांट द कम्युनिटी एट लार्ज टू नो अबाउट इट, तो हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं ईमेल buzz@humfm.com पर, और आपके सूचनाओं को हम तमाम लोगों तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाने वाले हैं. आज सबसे पहले हम देख लेते हैं एक फेस्टिवल की आयोजना की जा रही है और बहुत ही भव्य बहुत ही नेक कार्य के लिए ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. दिस इज़ हैपनिंग ऑन नेक्स्ट संडे एंड दिस इज़ माफ़ कीजिएगा, ये जो फूड फेस्टिवल है दिस इज़ ये भोजन मेला हो रहा है संडे 17 मई को. लोकेशन है 378 आरारीमू रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में. एंड दिस इज़ टू सपोर्ट द ऑसम प्रोजेक्ट ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर आपको जाना है क्योंकि यहाँ पर जाकर आप इस प्रोजेक्ट के लिए मदद पहुँचाने वाले हैं. फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री फूड बाय शिवानी, इडली सांभर का मज़ा आप ले सकते हैं, और बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, ज्वेलरी के, क्लोथिंग के, मेहंदी वाले. शॉपिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका दिया जाएगा. फेस पेंटिंग रहेगा फॉर किड्स एंड बाउंसी कंसल भी आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इंजॉय करवा सकते हैं. वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स के लिए आप आइएगा मई 17 को 378 आरारीमू रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में. अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का योगदान देना चाहते हैं या फिर आप स्टॉल्स रखना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट शिवानी अरोड़ा ऑन 0218-700-12 पर, देर इज़ 0218-700-12, या फिर रवि को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0212-946-394 पर. इसके अलावा 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे इज़ हैपनिंग कमिंग सैटरडे, मलयोला कम्युनिटी सेंटर, 16 वाउकौरी प्लेस, मांगरे, ऑकलैंड में. शाम 4:30 से 8:30 के बीच में ये प्रोग्राम होगा. डोर्स विल बी ओपनिंग एट 4 PM, जहां पर आपको नेटवर्किंग करने का मौका और मुफ्त में टी एंड स्नैक्स आपको प्रदान किया जाएगा. फ्री एंट्री है एंड हियर यू विल गेट टू विटनेस व्हाट गिरमिट वॉज अबाउट एंड टू सेलिब्रेट द गिरमिट ईयर्स. काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते आए हैं. अगर आप नहीं जानते हैं गिरमिट क्या था, दिस विल बी एन ऑसम अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट फिजी इंडियंस, हम कहाँ से आए हैं. कैंडल कम्यूमरेशन रहेगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले, सीनियर्स रिकग्निशन अवार्ड, कल्चरल परफॉर्मेंस होने वाले हैं. एंड अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, दिस ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. यू कैन ईमेल fijigirmit@gmail.com पर.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go to the boat
2: show. Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
3: Now's the time to send Mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
4: Zabardast hits. Shuru ho jaye to ruk din hai. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Dil se. Dil se.
5: संडे नाइट मेलोडीज में दोबारा आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं हूं जिकाश एंड इफ यू जस्ट ज्वाइन, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। नाउ, पैसा कौन नहीं चाहता। $100 अगर अभी आपको हम दे तो आप मना नहीं करोगे। तो भाई, देना हम चाहते हैं या आप $100 लेना चाहते हैं। चेडल रोवा पर खेले एंड हर रोज आप $100 जीत सकते हैं। एंड दिस $100 कैन एक्चुअली फिल अप फ्यूल फॉर योर वीकली ट्रेवल। That goes a long way, क्योंकि ये महंगाई के दौर में पेट्रोल prices thanks to Trump और भी महंगा हो चुका है। And आपको राहत पहुंचाने के लिए आपको $100 हम देना चाहते हैं। बस आपको रोवा पर चेडल खेलना है, टेस्ट आउट कि आप कीवी slangs, कीवी words को कितना जानते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट आंसर देम विदाउट यूजिंग एनी hints, तो आपको डबल एंट्रीज मिलेंगी टू विन $100 एवरी डे। हर रोज एक नया अवार्ड रहता है और $7,000 हम देना चाहते हैं। तो भाई, गेट ऑन टू रोवा, प्ले चेडल नाउ एंड लेट मी नो कि आप डिड यू गेस द अवार्ड दैट देयर वाज टुडे। डू लेट मी नो।
6: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़?

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम पर आपके साथ हैं जिकाश

आपका आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसा है? आर यू अ गुड नेबर? ओ इज आर योर नेबर्स गुड नेबर्स? यस नो? वेल, कई जगहों पर होता है ऐसा कि आपके पड़ोसी बहुत ही अच्छे होते हैं, और कई जगहों पर वेल दे कैन बी कॉल्ड नेबर्स फ्रॉम हेल। तो ऐसे में आई वुड लाइक टू नो कि आपके पड़ोसी क्या अच्छे लोग हैं? आर यू अ गुड नेबर टू योर नेबर्स? क्योंकि पार्टीज़ हम सभी करना पसंद करते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी की पार्टी हो, चाहे आपके फेवरेट टीम की जीत की पार्टी हो। और जब पार्टी होती है तो शोर शराबा होता है। क्या आपको अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है बिफोर यू हैव अ लाउड पार्टी? क्या आप सोचते हैं कि आपके नेबर्स को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए बिफोर दे हैव अ लाउड पार्टी? इज इट कॉमन कर्टसी? इसके बारे में हम बातें करेंगे बस थोड़ी देर में। जुड़े रहे हमारे साथ।

0: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
3: The beat of Bollywood.
4: वेलकम बैक टू हम, जहां पर हमने कहा था हम बातें करेंगे अबाउट बीइंग गुड नेबर्स या फिर द कर्टेसी ऑफ टेलिंग योर नेबर्स बिफोर यू होस्ट अ पार्टी. क्योंकि अभी हम देखें तो जो घर बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो लाइफस्टाइल ब्लॉक में रह रहा है, जहां पर दूर दूर तक अगर आप शोर मचाते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी. अगर सिटीज़ में रहते हैं तो अगर हाँ आपने ज़ोर से खास भी दिया तो पड़ोसी सुन लेते हैं. ऐसे में अगर शोर शराबा वाला पार्टी अगर आप होस्ट करते हैं तो क्या इज़ इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर योर नेबर्स आर इन्फॉर्म्ड, और कितनी देर तक कितना ज़्यादा नॉइज़ आप करते हैं? क्या आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपके पास पड़ोसी है? तो वेल, मोस्ट पीपल डोंट माइंड द ओकेजनल बर्थडे, बारबेक्यू और सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर. लेकिन अगर ये रोज़ की बात हो जाए, ओपिनियंस गेट डिवाइडेड ओवर वेदर नेबर्स शुड गिव यू अ हेड्स अप फर्स्ट. फॉर सम इट्स बेसिक कर्टेसी, एस्पेशली इफ देयर इज गोइंग टू बी लाउड म्यूजिक, लॉट्स ऑफ कार्स और पीपल हैंगिंग अराउंड लेट इन टू द नाइट. कुछ और लोगों का कहना है कि दे शुड बी एबल टू एंजॉय इन देयर ओन होम्स विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम द होल स्ट्रीट. आपका क्या मानना है? शुड नेबर्स गिव एडवांस वार्निंग बिफोर हैविंग अ पार्टी? ये एक पोल है ऑन स्टफ, यू कैन गो देयर एंड एक्चुअली हैव योर से. मोस्ट पीपल डोंट माइंड, एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि मी पर्सनली आई डोंट माइंड इफ माई नेबर्स यू नो हैव अ पार्टी, अ बर्थडे पार्टी twice in a year or three times in a year, जहाँ पर शोर शराबा होता है. आई एम दैट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ. लेकिन अगर ये एवरी वीक की बात हो जाए कि वीकडे में 9-10 बजे एकदम से शोर हो रहा है एंड दिस इज़ यू नो अ कॉमन अकरेंस, तो आपके स्लीप पैटर्न, आपकी नींद पर, आपके बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनकी नींद पर असर पड़ता है एंड यू एंड अप सफरिंग. तो ऐसे में यस, यू कैन ऑलवेज यू नो टॉक टू योर नेबर्स फर्स्ट कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद मान जाए और म्यूज़िक कम कर दे बिफोर यू कॉल इन द अथॉरिटीज़. कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा ही शोर हुआ एंड बूम दे विल कॉल नॉइज़ कंट्रोल. तो डोंट बी दोज पीपल हु यू नो मज़ा जो खिड़खिड़ा कर देते हैं. हैव अ वर्ड विद योर नेबर, उनको बताएं आप कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ और आपकी म्यूज़िक बहुत लाउड है, थोड़ा सा अगर आप वो कम कर ले तो वो भी इंजॉय करेंगे. उनकी पार्टी को आप उसमें दखल अंदाजी ना करेंगे विद बाय कॉलिंग नॉइस कंट्रोल. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. तो क्या आप सोचते हैं, शुड नेबर्स गिव एडवांस वार्निंग बिफोर हैविंग अ पार्टी? इज़ इट कॉमन कर्टेसी? इज़ इट ओनली अप्लीकेबल फॉर लार्ज और लेट नाइट पार्टीज? Or do you think no, people can do whatever they want in their home? Or does it depend on the neighborhood or the situation? क्या लगता है आपको?

0: the drive show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers, make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
5: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000-watt upright desktop fan heater, just $15.
4: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
0: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.

वेलकम बैक टू हम, जहां पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और एक मदर्स डे सॉन्ग हम आपके लिए थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो अपने डेडिकेशन हमारे पास आप भेजते रहें एंड आपके मॉम्स को हम सल्यूट करते चलेंगे, चाहे वो आपके मॉम हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे नानी हो, चाहे आजी हो, या आपकी प्यारी सी बीवी हो जिन्होंने आपके फैमिली को आगे बढ़ाया है। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करती हैं मॉम्स, द लेडीज़ ऑफ द हाउस। तो इन सभी को, सभी लेडीज़ को आज हम सैल्यूट कर रहे हैं, और हम बस यही दर्शाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि यू ऑल होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइफ्स। चाहे हम बताने में कमी कर देते हैं, चाहे हम जताने में कमी कर देते हैं, लेकिन आपसे ही हमारा संसार है। वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज़ आउट देयर जिनके पास बच्चे हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स, नानीज, दादीज, आजीज, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे हम विश कर रहे हैं। परिवार से आप सभी को हम कार्यक्रम में शामिल करते चलेंगे राइट हियर ऑन हम 104.2 एफएम और रोवा पर। मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ इन संडे नाइट मेलोडीज़।

फ्लाई अवे फ्रेंजी में अगर अभी तक आपने हिस्सा नहीं लिया है, कमिंग वीक इज अनदर वीक जहां पर आप इस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, जहां पर एक रिटर्न या टिकट टू फिजी आप जीतने वाले हैं। एंड हु डजंट वांट दैट? अगर आप चार लोग हैं जो फिजी जाना चाहते हैं, इनमें से एक का रिटर्न या टिकट अगर पे हो जाता है तो बहुत सारा पैसा आपका बचने वाला है। तो ये पैसे बचाने का मौका हम आपको दे रहे हैं, जो आपको मौका देगा टू विन द अल्टीमेट ट्रॉपिकल गेटवे। रोवा पर आपको रहना है और हमें सुनते रहना है 24/7 क्योंकि एवरी वीकडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे और शाम 5 बजे हम आपको स्पेशल कोड वर्ड देने वाले हैं। उस वर्ड को पहचान कर आपको रोवा पर जाना है। रोवा पर हम फ्लाईवे फ्रेंजी में उस कोड वर्ड को डालना है एंड यू विल गेट इनटू द ड्रॉ टू विन अ रिटर्न या टिकट टू फिजी। तो इतना ही आपको करना है बस। कल सुबह दोबारा सुबह 8 बजे, फिर दिन में 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे लिसन आउट फॉर द कोड वर्ड फॉर हम फ्लाईवे फ्रेंजी।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja, brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
4: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.

Hey, welcome back to Sunday Night Melodies. Argan Oil, इसको आपने सुपरमार्केट के शेल्फ्स पे देखा होगा और बालों में लगाने के लिए नूरिश करने के लिए आर्गन ऑयल भी वन ऑफ दोज ऑयल्स जो आपके बालों को हेल्थी रखता है. तो क्या आप जानते हैं कि आर्गन ट्री आर्गेनिया ये कितना इम्पोर्टेंट है? वेल, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग दिन निर्धारित किया है, सेट असाइड किया है फॉर द कंजर्वेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया. ये आज ऑब्जर्व किया जा रहा है. 10th मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया ऑब्जर्व किया जाता है. आर्गन ट्री आर्गेनिया स्पिनोसा ये एक नेटिव स्पीशीज़ है जो सब सहारन रीजन में मिलता है ऑफ मोरक्को इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री, विच ग्रोज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज. इट्स द डिफाइनिंग स्पीसीज ऑफ वुडलैंड इकोसिस्टम ऑल्सो नोन एज Agenerae, which is rich in endemic flora. It is resilient to harsh environment, underwater scarcity, risk of erosion and poor soils. तो बहुत ही बढ़िया ये पेड़ है जो कम पानी मिलते हुए, erosion होते हुए, poor soil conditions होते हुए भी thrive करता है. This ecosystem of extraordinary beauty is not only important in terms of conservation but also for research and socio-economic development due to its forestry, agricultural and livestock use. The argan tree woodlands provide forest products, fruits and fodder. The leaves and the fruits are edible and highly appreciated as is the undergrowth and constitute a vital fodder reserve for all herbs even in periods of drought. The trees are also used as fuel wood for cooking and heating. Wow, kitne sare uses hai for this argan tree. The world renowned argan oil is extracted from the seeds and has multiple applications, especially in traditional and complementary medicine and in culinary and cosmetic industries. Argan oil is one of the rarest oils in the world and is hailed as the liquid gold of Morocco. It has multiple uses in cooking, medicine and cosmetics. Its ability to prevent cardiovascular diseases and its benefits for the skin are scientifically recognized. Wow, I didn't know this. Now I know. Rural women lead the entire extraction process through knowledge transmitted from one generation to the next. तो इसके बारे में बहुत बढ़िया आर्टिकल है जो un.org के नीचे आपको मिलेगी. हाउ आर्गन ऑयल इज मेड, इस पर एक वीडियो भी है. सी इट, वॉच इट एंड बिकम नॉलेजबल. यूं ही नहीं, बस शेल्फ पे रखा है आर्गन ऑयल, इसमें लिखा है कि बालों के लिए अच्छा है, आप बस ले ले. इसकी हिस्ट्री एंड यू नो आर्गन ट्री के लिए एक पूरा दिन सेट असाइड किया गया है, इंटरनेशनल Day of Argania, 10th May, which is today.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Roses, Milk Tray or Favourites 312 to 470 gram for $9.90 each. And Dove Body Wash 1 litre for $10.99 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: Here at Bunnings, you can warm up any outdoor space this winter. Gas heaters are great for the backyard. It's a portable thing, so you can move it around, and we've got the fire pits, make it feel cosy and warm.
4: Secure your home with an Arlec 7-watt solar sensor LED floodlight, only $49.90. Get around a Glow Tambo steel fire pit, $98. And solid energy roundwood firewood is just $15.95.
3: Get your outdoor space winter ready for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
6: आपके पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं? डू यू इंडल्ज इनटू पॉलिटिक्स? यस नो? वेल, करना चाहिए, क्योंकि थ्रू पॉलिटिक्स आपके जीवन पर असर पड़ता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं. इस हफ्ते लेबर हैज कन्फर्म्ड इट्स कैंडिडेट्स फॉर 7 मौरी इलेक्ट्रेट्स, लेकिन वहीं पर ते पाती मारी के एमपी जो है, दे आर कंसिडरिंग वेदर टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पार्टी. मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ते पाती मौरी के पार्टी में, जहां पर दे आर स्टिल वर्किंग आउट हु विल रन फॉर द पार्टी. दैट सर्च फॉर कैंडिडेट्स विल बिकम इवन ट्रिकियर इफ इट लूजेस इट्स सिटिंग एमपीज. हाना रफीती माई पी क्लार्क, ये एक यंग स्टार है ऑफ द ते पाती मौरी, who holds the Hauraki Waikato seat and is said to be considering her future with the party. She has been speaking to her electorate, her supporters and EV about what her next steps as their representative should be. At 21 years old, Maipi Clark ousted a veteran of Labour Party, Nanaya Mahuta, to win the seat in 2023. Well, Mahuta, she was in controversies and I'm not sure I should say this, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो शायद अब बारी है कि हाना रफीती माईपी क्लार्क, जिन्होंने बहुत सारा शोर मचाया था पार्लियामेंट में, ये भी रिकन्सिडर करे. एंड थ्रू रिकन्सिडरेशन मे बी शी वॉन्ट बी एबल टू मेक इट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस. वैसे जनरल इलेक्शंस इस साल है न्यूजीलैंड में, कब है, हैव यू एनरोल्ड, कहाँ पर एनरोल करना है, ये जानकारी थोड़ी ही देर में.

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल तू कौन संभालेगा तुझको जब

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. Hamari good brands bhi hai. Hum.
4: Dil se.
2: Dil se.
5: Hey, बुला, वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज। मैं हूं जिकाश। पिछले घंटे पर हमने बातें की थी अबाउट तेपाती माउरी की, किस तरह से इनमें कुछ खटपट हो रहा है और वहीं पर लेबा दे आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन माउरी इलेक्ट्रेट्स, जहां पर बहुत ही जल्द इन्होंने 7 माउरी इलेक्ट्रेट्स घोषित कर दिए हैं। दे हैव कन्फर्म्ड देयर कैंडिडेट्स, तो हाथ पैर मार रही है ताकि इनको कुछ भला हो जाए आने वाले इलेक्शन में। आपको पता है इलेक्शन कब है? वेल जस्ट स्टे ट्यून्ड, हम डेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे विद इन दिस आवर। मैं हूं जिकाश, संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन, हियर आर

0: एनजेड जनरल इलेक्शंस, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में आपको सिटीजन बनाया गया है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप वोट करें। वोट करने के लिए आपको एनरोल होना होगा फॉर द 2026 इलेक्शन। यू नीड टू बी एनरोल्ड बाय मिडनाइट ऑन संडे 25th अक्टूबर। अभी से लेकर 25th अक्टूबर तक आपके पास समय है कि आप अपने आप को एनरोल कराएं इन द राइट इलेक्ट्रेट, इन द राइट एरिया, इन द राइट सिटी जहां पर आप रह रहे हैं। अगर आप एनरोल नहीं होते हैं यू वॉन्ट बी एबल टू वोट, और जब वोटिंग शुरू हो जाएगा तो आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। एनरोलिंग इज एन समथिंग यू डू वंस, यू नीड टू कीप योर एनरोलमेंट अप टू डेट सो यू आर रेडी टू वोट। अगर आपने घर मूव किया है, एक सिटी से दूसरे सिटी में गए हैं, यू नीड टू अपडेट द इलेक्ट्रल कमीशन सो दैट यू कैन वोट इन द राइट एरियाज। अगर क्या आप एलिजिबल है टू वोट, यस नो, तो आप इसका पता लगा सकते हैं ऑन vote.nz। ये वेबसाइट आपको अपडेटेड रखेगी अबाउट योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज फॉर वोटिंग। यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं या फिर अपने आप के बारे में अपडेट कर सकते हैं कि अगर आपने सिटीज मूव किए हैं तो किस तरह से आप वोट कर सकते हैं इन जनरल इलेक्शन। मोस्ट पीपल वोट एट वोटिंग प्लेसेस यूजिंग पेन एंड पेपर। यू कैन वोट एट एनी वोटिंग प्लेस इन न्यूजीलैंड बट इट्स बेस्ट टू वोट क्लोज टू होम इफ़ यू कैन। वोटिंग इन न्यूजीलैंड विल स्टार्ट ऑन 26th अक्टूबर। 12 दिनों तक वोटिंग चलेगी बिफोर इलेक्शन डे ऑन सैटरडे 7th नवंबर। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके अलावा और भी कई डेट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अंडर elections.nz की इंफॉर्मेशन और डेट्स आपके लिए दिए गए हैं। 21st जनवरी को प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड फॉर 2026 जनरल इलेक्शंस। 7th अगस्त को रेगुलेटेड पीरियड फॉर इलेक्शन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस शुरू हो जाएंगे। 5th सितंबर को इलेक्ट्रल होर्डिंग्स अप टू 3 square meters कैन गो अप। तो 5 सितंबर से आप वोटिंग जो बोर्ड्स है ये आप देखने लगेंगे। 7th सितंबर को कैंडिडेट नॉमिनेशंस ओपन होंगे। 1st अक्टूबर को पार्लियामेंट डिसॉल्व होगा, द ऑफिशियल एंड ऑफ द पार्लियामेंट्री टर्म। 4 अक्टूबर को रिट डे है। द गवर्नर जनरल विल इश्यू फॉर्मल डायरेक्शन टू द इलेक्टोरल कमीशन टू होल्ड इलेक्शंस। 8 अक्टूबर की शाम को नॉमिनेशन डे डेडलाइन और पार्टी सेक्रेटरीज टू गेट देयर बल्क नॉमिनेशन स्केड्यूल्स एंड पार्टी लिस्ट टू इलेक्ट्रल कमीशन एंड द डेडलाइन फॉर कैंडिडेट्स यूजिंग द इंडिविजुअल नॉमिनेशन प्रोसेस टू गेट देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रल कमीशन। ये होगा 8 अक्टूबर को। 21st अक्टूबर को ओवरसीज वोटिंग शुरू होंगे। 25th अक्टूबर को लास्ट डे टू एनरोल टू वोट इन द इलेक्शन। 26th अक्टूबर को एडवांस वोटिंग शुरू होगा। 6 नवंबर को एडवांस वोटिंग एंड होगा। 7th नवंबर इज द इलेक्शन डे। वोटिंग प्लेसेस विल बी ओपन फ्रॉम 9 till 7 PM और फिर रात को वोटिंग बंद हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं elections.nz के वेबसाइट पर।
1: हम पर आपके साथ हैं।

0: get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
3: Showerdome.co.nz.
4: The Vibe Mix Events presents
5: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manureva Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chaffer alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manureva and Wicked Chicken Botany.
4: Don't miss out.
6: कई लोग मानते हैं कि संडे इज द एंड ऑफ द वीक, कई लोग मानते हैं कि संडे इज द स्टार्ट ऑफ द वीक. आप क्या सोचते हैं? वेल, इन स्पोर्टिंग सेंस संडे इज थॉट ऑफ एज द एंड ऑफ द वीक. और इस सप्ताह कई सारे खेल हुए सुपर रग्बी में, नेशनल रग्बी लीग में, ओएफसी के अंतर्गत भी जो लीडर्स मैचेस है ये हुए हैं. एंड आई लीग के फर्स्ट राउंड ऑफ सेमीफाइनल्स ये भी हुए हैं इसी सप्ताह. द फर्स्ट सेमीफाइनल वाज प्लेड बिटवीन ऑकलैंड एफसी एंड एडिलेड यूनाइटेड शनिवार को, एंड देन कल रात को सिडनी फुटबॉल क्लब और न्यूकासल जेट्स ने आमना सामना किया. दे आर अगेन गोना प्ले ऑन 15th of May. एडिलेड यूनाइटेड होस्ट कर रही है ऑकलैंड एफसी को, और सैटरडे 16th को न्यूकासल जेट्स दे आर होस्टिंग सिडनी फुटबॉल क्लब. एंड आफ्टर दिस वीक्स मैचेस इट हैज़ बिकम रियली इंटरेस्टिंग. ऑकलैंड फुटबॉल क्लब क्या दे कैन डू सम मैजिक एंड एंड इन टू वेल गेट इन टू द फाइनल्स. फिंगर्स क्रॉस्ड, यही हम चाहते हैं. इसके अलावा ओएफसी प्रो लीग, ओएफसी प्रोफेशनल लीग भी खेले गए हैं, और ऑकलैंड फुटबॉल क्लब का जो सेकंड टीम है दैट प्लेज इन ओएफसी प्रो लीग, दे डिफीटेड फिजी बुला बॉयज़ को. कल इन्होंने डिफीट किया है 2-0 से. और अब क्या कुछ होने वाला है ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इन दी लीडर्स प्ले ऑफ जो फर्दर खेले जाएंगे ऑन दी 12th of May को. साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब ये बुला एफसी से खेलने वाली है, एंड ऑकलैंड फुटबॉल क्लब दे आर गोना प्ले अगेंस्ट साउथ आइलैंड यूनाइटेड. एंड आफ्टर दैट दोज टू मैचेस द सेमीफाइनल प्ले ऑफ्स विल बी डिसाइडेड. तो कौन सी टीम सेमीफाइनल तक पहुँचने वाली है ये हम जानेंगे आफ्टर द 12th of May. तो ये सभी जानकारियाँ बारी बारी से आपके साथ में हम आज शेयर करेंगे. आने वाले वीक में हमारे अन्य साथी शेयर करेंगे, तो डू कीप अ टैब. आपको हम अपडेटेड रखने वाले हैं विथ ऑल दैट्स इम्पोर्टेंट टू यू.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: शायद आप सोच रहे थे कि धुरंधर 2 ये आपको कब देखने को मिलेगा, क्योंकि यू हैव मिस्ड इट ऑन दी बिग स्क्रीन, या फिर आपने पैसे बचाए हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन को आप भरते हैं, तो क्यों फोकट में जाकर $30-40 भरकर आप थिएटर्स में देखेंगे। वेल दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि अच्छा खासा टीवी मेरे घर पर है और साउंड सिस्टम भी मैंने बढ़िया डाल रखा है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, फ्रिज में एकदम से ठंडे ठंडे बेवरेजेस हैं और एट माय फिंगर टिप्स आई कैन गो एंड गेट फ्रेश पॉपकॉर्न फ्रॉम द ओवन। तो ये सभी कुछ मैं इंजॉय करने वाला हूँ कम दी 16th or 17th of May, क्योंकि 14th or 15th को इंडिया में जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है धुरंधर 2, और उसके ठीक बाद इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पर धुरंधर 2 रिलीज़ होगी। तो आपका इंतज़ार बस ख़त्म होने को आया है, क्योंकि धुरंधर 2 एक्सटेंडेड वर्जन एक्चुअली ये रिलीज़ होगा ऑन OTT ऑन नेटफ्लिक्स। तो देखेंगे कि जो हलचल मची थी ऑन बिग स्क्रीन्स, ये बाकी लोगों ने नहीं देखा है, we'll get to enjoy it in an extended version. तो भाई I think it's a win-win situation for everyone. थोड़ी देर में हिंदी मूवी रिव्यूज़ को भी हम देखेंगे, कुछ मूवीज़ रिलीज हुई हैं, प्लस इस अगले स्पॉट ब्रेक या फिर ब्रेक के बाद में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस घंटे के लिए मदर्स डे सॉन्ग। तो अपने डेडिकेशन हमारे पास आप भेजते रहिए।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Mother's Day Song, brought to you by
1: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. A must food. 100% authentic and pure as mother's love. And Malava Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
2: मदर्स डे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद आप गए हुए हैं फॉर ए लवली मदर्स डे डिनर, या फिर आप होस्ट कर रहे हैं डिनर एट योर प्लेस, जहां पर आपने अपनी मम को, अपनी मदर इन लॉ को बुलाया है, शायद भाभी को आपने बुलाया है, या फिर बस अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आप ये जता रहे हैं कि आपकी घर की जो लेडी है ये आपके लिए कितनी कितना महत्व रखती है, कितने इम्पोर्टेंट है ऑल द मदर्स इन आवर लाइफ. तो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर. दिस नेक्स्ट ट्रैक गोज टू सानवी. यू आर सेइंग अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू योर मम आर्तिका. इनको हम शामिल कर रहे हैं, प्लस रिक्शे हैं. आपने अपनी मम को हैप्पी मदर्स डे विश किया है. आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.

0: You're listening to Chikash.
1: इस घंटे पर हम एल्बम्स के गाने आपके लिए पेश कर रहे थे बिटवीन 8 and 9, एंड अगले घंटे पर हम गज़लों की बारिश करने वाले हैं. तो अगर आप गज़ल पसंद करते हैं, वेल द नेक्स्ट आवर इज़ गोना बी समथिंग दैट यू रियली रियली लव. कुछ गिने चुने बहुत ही ऑसम और बहुत ही मशहूर गज़ल गायक को हम पेश करने वाले हैं, एंड आपके दिल के करीब जो गज़ल है ये हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बिटवीन 9 and 10. मैं हूँ जिकाश, सनडे नाइट मेलोडीज़ में मैं आपका साथ यूँ ही देता चलूँगा राइट टिल मिडनाइट. अभी आपने ट्यून इन किया है, वेल यू आर इन स्टोर फॉर ए लवली नाइट अहेड टिल मिडनाइट. स्वागत कर रहे हैं आपका, मिलते हैं थोड़ी देर बाद.

एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज। 9 बजने को आए हैं और 9 से 10 बजे के बीच में एक घंटे के लिए आपको हम आज कुछ खुशनुमा गज़ल सुनाने वाले हैं। गज़लों के साथ में शायरी भी करेंगे, ये आपको अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ पोएट्री है ये हम ढूंढ कर लाए हैं जिसके आपके साथ में शेयर करते चलेंगे। अगर आपके पास भी कोई अच्छी खासी पोएट्री हो तो ज़रूर हमें भेजिए, इसे हम ऑनलाइन शेयर करेंगे जब हमें मौका मिलेगा। स्वागत करते हुए आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं ग़ुलाम अली की गज़ल के साथ में। और इससे पहले जो पहली कविता हमारे हाथ में है ये है, वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता। वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी ज़रा सी परेशानी से कर लेता है मायूस वो खुद को, फिर भी अपने अजीज़ों में मेरा नाम नहीं लेता। यूँ तो रहती है बड़ी दिलचस्पी उसको मेरी दास्तान में, बस खुद को मेरे किस्सों में शुमार नहीं करता। वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता, मैं पास जाऊं उसके ये उससे मुनासिब नहीं लगता, और मेरे दूर जाने से भी इनकार है करता। लड़ता तो बहुत है मुझसे छोटी छोटी बातों पर, और मैं हो जाऊं नाराज़ ये भी वो बर्दाश्त नहीं करता। वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता, किसी सफ़र में वो मुझे अकेले चलने नहीं देता, उसको हम सफ़र कहूँ इतना वो इख्तियार नहीं देता। उसके मिजाज का किस्सा भी अजीब है दोस्तों, खुद तो खंजर तक चला देता, कोई और खरोज भी दे ये वो बर्दाश्त नहीं करता। वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता, कहता तो है कि मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह तुझसे, ये और बात है कि बस दिल की वो ये बात नहीं समझता। वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं करता, वो ख्याल तो करता है मगर मुझसे प्यार नहीं।

0: लेस्बियन।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
3: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
4: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
5: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide. Trade

डोनाल्ड ट्रंप से तो शायद मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड दुखी है, क्योंकि इनके कारण एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट ही हैज रेज्ड अगेंस्ट ईरान, इसके कारण अब पूरी दुनिया बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है फॉर ऑयल। लेकिन एक बात, क्या आपने कभी सोची है कि व्हाई डू वी रिलाई फॉर ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट? वेल, दिस इज बिकॉज मिडल ईस्ट में दे होल्ड रफली 40-50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई क्यों सिर्फ वहीं पर इतना ज़्यादा ऑयल है? वेल, दिस इज बिकॉज 100-300 million ईयर्स अगो ये रीजन जो है मिडल ईस्ट का, इट वॉज ए वॉर्म शेलो सी और दिस वॉज स्टीमिंग विथ ऑर्गेनिक लाइफ विच हैड परफेक्ट कंडीशंस, स्पेसिफिकली हाई ऑर्गेनिक डिपॉजिट रेट्स, यूनिक एनोक्सिक यानी कि ऑक्सीजन फ्री वाटर एंड स्टेबल जियोलॉजी विच अलाउड दिस मैटर टू कुक इन टू मैसिव एक्सेसिबल ऑयल। तो भाई अच्छा नहीं होता कि अगर दुनिया भर में ऐसा माहौल होता कि सभी तरफ एक बराबर ऑयल रहे, ताकि यू नो एवरी कंट्री हैड इट्स ऑन ऑयल। लेकिन वेल, ऐसा नहीं हुआ, शायद जिन्होंने दुनिया डिज़ाइन की है कुछ उनके दिमाग में था। वेल, की फैक्टर्स फॉर मैसिव ऑयल डिपॉजिट्स, ये डिपेंड करता है ऑन एशियंट ओशन इकोसिस्टम्स। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो ये जो रीजन है मिडल ईस्ट, इट वॉजंट अ डेजर्ट बट अ वॉर्म ओशन दैट हैड लॉट्स ऑफ प्लैंकटन एंड एल्गी विच प्रोवाइडेड इमेंस अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टू क्रिएट ऑयल। यहाँ पर आइडियल प्रिजर्वेशन कंडीशंस थे, परफेक्ट जियोलॉजिकल सेटिंग था टू कुक दीज डिपॉजिट्स इंटू ऑयल एंड इट हैड स्टेबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द अरेबियन प्लेट रिमेन लार्जली स्टेबल, अवॉइडिंग टेक्टोनिक अपीवल्स दैट ऑफन ब्रेक अप ऑयल डिपॉजिट्स। दिस स्टेबिलिटी अलाउड फॉर मैसिव सेडिमेंट्री बेसिन्स टू फॉर्म। एंड यहाँ पर सुपीरियर सील्स एंड रिजर्वर्स भी थे, इम्पर्मेबल रॉक लेयर्स लाइक शेल एंड सॉल्ट डोम्स एक्टेड एज सील्स और कैप्स प्रिवेंटिंग द ऑयल फ्रॉम एस्केपिंग टू द सर्फस एंड ट्रैपिंग इट इन पोरस सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। तो कई सारे फैक्टर्स थे दैट वेयर प्रेजेंट इन मिडल ईस्ट और इसी के कारण से दुनिया भर के 40-50% ऑयल रिजर्व्स मिडल ईस्ट में हैं। वेल, आई सिंसियरली होप कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। आइए एंजॉय करते हैं ये अगला गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम पर आपके साथ हैं जिकाश
2: Mother's Day song brought to you by
3: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indeliblehomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center.
4: आज मदर्स डे है तो हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स की ओर से हम अपने लवली मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे विश करते चल रहे हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू रवीना मनी इन पापा टोयोटा आपके बच्चे हैं शरव और करण इनकी ओर से आपको ढेर सारा प्यार आज दिया गया है हैप्पी मदर्स डे आपको विश किया जा रहा है ऑल्सो विनायक अपनी मम प्रियाशनी को हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

104.2 FM 702 AM. Well, no, खुद को याद दिलाना पड़ता है 702 AM फ्रीक्वेंसी, ये इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल। इसके बदले आपको और भी बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं, रोवा डाउनलोड कर ले। रोवा डाउनलोड करते हैं तो हमें 24/7 आप कहीं पर भी होते हैं, जब तक आपके फ़ोन में डाटा है आप हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे म्यूज़िक प्लस स्टेशंस बहुत सारे हैं, इसके बारे में आपने सुना है, नहीं सुना है, वेल हम रिवाइंड, जहां पर बॉलीवुड के गोल्डन एरा 60s और 70s के गाने आपको मिलते हैं नॉन स्टॉप। ये हमारा नंबर वन म्यूज़िक स्टेशन भी बन चुका है ऑन रोवा। तो भाई इसको आप सुने, इसका मज़ा ले ऑन रोवा, देर इज़ हम रिवाइंड। या फिर आप 80s के गाने सुनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली यू लव द म्यूज़िक फ्रॉम 80s, तो हम 80s ज्यूक बॉक्स, इसका मज़ा आप ले सकते हैं। फिजी से है तो फिजी भजन्स, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सेटअप किया गया है ताकि आप भजन सुन सके जहाँ भी जब भी चाहे, आप मन खोल के, आप मन भर के आप भजन सुने फिजी भजन्स। इसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहाँ पर वी अपडेट द कीर्तन्स फ्रॉम आर्टिस्ट फ्रॉम फिजी, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम कैनेडा। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फिजी कीर्तन गाने वाले आर्टिस्ट हैं, इन सभी के कीर्तन्स आपको हम सुनाते हैं ऑन फिजी कीर्तन संग्रह। राहत फ़तेह अली खान का भी एक स्टेशन चालू है और थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे कि राहत फ़तेह अली खान कब इस साल आने वाले हैं और किस तरह से आप डबल पास जीत सकते हैं, कहां से आप टिकट्स खरीद सकते हैं, ये सभी जानकारियां इसी आवा पर हम आपको देने वाले हैं। बिग शाउट आउट गोज टू ऑल द पीपल जो नाइट शिफ्ट के लिए काम शुरू कर चुके हैं, आप सभी का हम दिल इस्तकबाल कर रहे हैं। राइट, ऑन हम, मैं हूँ जिकाश, रात 12 तक आपका साथ हम देने वाले हैं।

ओके तो हमने आपको कहा था आपको बताएंगे अबाउट राहत फतेह अली खान। ये आ रहे हैं 25 जुलाई को एट द ट्रस्ट एरेना, जहां पर आप विटनेस करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस इन द वर्ल्ड एंड दिस इज लाइव। एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही रेयर म्यूजिकल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, जो अगर आपने मिस कर दिया तो बड़ा पछताओगे। इसके लिए आपको टिकट्स ले लेना है dryTickets.com पर, क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आप तक पहुंचाने जाने की कोशिश की जा रही है। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन साथ में होकर ये ऑसम कॉन्सर्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर राहत फतेह अली खान को आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे एट द ट्रस्ट एरेना ऑन 25th of July। वंस अगेन dryTickets.com पर आप जाकर टिकट्स ले लें। जितनी जल्द से आप टिकट ले लेंगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि बढ़िया सीटिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप देर करेंगे तो फिर शायद आपके प्रीफर्ड सीट्स आपको नहीं मिले। www.dryTickets.com is the place you get to go and get your tickets.

0: Vegas hits. Put your head to Gandhi.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland council.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ऑकलैंड।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट K33।

बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है वैसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रंगदा, इनका ही एक फिल्म आई है 8 मई को रिलीज हुई, मैं एक्टर नहीं हूँ। तो भाई फिल्म में क्या कर रहे हैं? वेल दैट इज़ द नेम ऑफ द मूवी। एवरेज यूजर रेटिंग इसका 2.5 out of 5 स्टार्स आया है। दादी की शादी, नीतू सिंह, कपिल शर्मा, रिद्धिमा कपूर साहनी और सादिया खातिब की ये मूवी अचानक से आ गई है और ये कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी है। नीतू सिंह इसमें बड़ी ही प्यारी लग रही हैं, कपिल शर्मा तो है ही नटखट, तो इसको लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। 3 out of 5 स्टार्स इस मूवी को मिला है। एक दिन साई पल्लवी, जुनैद खान और कुणाल कपूर की ये मूवी है जो आई हुई है, लेकिन ये सारी मूवीज़ पिट रही है बिकॉज ऑफ रितेश देशमुख। इनकी मूवी जो आई हुई है शिवाजी, राजा शिवाजी, तो इसके कारण से और सारी मूवीज़ को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बड़े भारी पैमाने पर रितेश देशमुख ने अपनी मूवी को रिलीज़ किया, लेकिन काफ़ी लोग और सभी मूवीज़ को भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। धुरंधर द रिवेंज अभी भी कुछ सिनेमाघरों में जारी है एंड अभी भी 3 out of 5 स्टार्स इसको मिला हुआ है। तो और भी बातें करेंगे बस थोड़ी देर में अबाउट सम अदर मूवीज़ जो सिनेमाघरों में लगी हुई है।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Budget Hector Gandhi.
2: फिल्मों के बारे में हम बातें कर रहे हैं एंड संजय दत्त ये सुर्खियों में छाए हुए हैं। बहुत सारी मूवीज ये कर रहे हैं, इनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और इनके साथ बॉबी देओल भी काफ़ी न्यूज़ में छाए हुए हैं। हैव यू वॉच द ट्रेलर फॉर बंदर? वेरी वेरी इंट्रीगिंग ट्रेलर है ये। इफ़ यू हैवन चेक इट आउट, यूट्यूब पर ये रिलीज़ हो चुका है इसका टीज़र। एंड सानिया मल्होत्रा के साथ में इंद्रजीत सुकुमारन है, सबा आज़ाद है एंड बॉबी देओल। दिस ट्रेलर विल कीप यू गेसिंग कि मूवी किस चीज़ के बारे में है। क्या बॉबी देओल एंटेगनिस्ट है या मेन लीड ये निभा रहे हैं? डू चेक इट आउट और मुझे बताएं कि व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस। इसके अलावा संजय दत्त, इनकी आने वाली मूवी है आखिरी सवाल, ये अगले सप्ताह रिलीज़ होगी। अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती और समीरा रेड्डी काफ़ी दिनों के बाद ये स्क्रीन पर दिखने वाली है। लक्ष्य और अनन्या पांडे, दे लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन। इनका आने वाली मूवी है चांद मेरा दिल 22 मई को एंड इसके कुछ गाने रिलीज़ हुए हैं। डू चेक इट आउट, वेरी लवली सॉन्ग्स ये हैं। 22 मई इज़ द रिलीज डेट फॉर चांद मेरा दिल। एंड इसके अलावा दिलजीत दोसांझ, शर्वरी बाग, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना, अ पावर पैक कास्ट। मैं वापस आऊँगा, दिस मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 12th of June। इसके भी ट्रैक्स रिलीज हो चुके हैं। वेरी कैची सॉन्ग्स प्लस द स्टोरी लाइन, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स रिलेटिंग टू वो और पार्टीशन, लेकिन अ वेरी कैप्टिवेटिंग कास्ट इस मूवी में देखने को मिलेगा। मैं वापस आऊँगा, रिलीजिंग ऑन 12th of June।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Mother's Day Song, brought to you by
5: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
6: आज बहुत ही स्पेशल दिन आप अपनी मम के लिए आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो वेल डन आपको हम कह रहे हैं। आई होप योर मम लव्ड ऑल द प्रेजेंट्स या फिर ऑल द सरप्राइजेस दैट यू गिवन टू हर। लेकिन ये सभी बातें अलग, योर मम इज़ ऑलवेज थैंकफुल फॉर हैविंग यू। तो अपनी मम को आप गर्व महसूस करवाएं बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय डूइंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। उनको गर्व होना चाहिए आप पर जो कि भी आप अचीव कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स अचीव करें। अगर आपकी इज्जत हो रही है समाज में, चार लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, आपके मम को गर्व ज़रूर महसूस हो रहा होगा। लेट योर मम नो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत आप उनको देते हैं। अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया, शायद कभी कभी मन मोटा हो जाता है फैमिलीज को लेकर, लेकिन कितना मन मोटाव आप रख सकते हैं अगेंस्ट योर मम, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है। तो पिक अप योर फोन्स, ड्रॉप अ कॉल एंड जस्ट से सॉरी अगर आपसे गलती हुई है, किसी से भी गलती हुई है। माँ अगर नहीं होती तो आप नहीं होते। तो पिक अप योर फोन, ड्रॉप अ टेक्स्ट। और कभी कभी ना ऐसा होता है, फिल्मों में हमने देखा है कि जो कुछ कहना था कह नहीं पाते और वक्त गुजर जाता है, लोग गुजर जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि बातें अनकहीं रह जाए। पिक अप योर फोन, एज आई हैव सेड, कॉल योर मम, टेल हर हाउ मच यू लव हर, टेल हर शी मीन्स द वर्ल्ड टू यू। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज आउट देयर जिन्होंने अपना घर संवारा है, अपने बच्चों का घर संवारा है। यू नो मम्स डोंट ओनली लुक आफ्टर यू। जब वो आजी बन जाती है, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, वो आपके बच्चों का घर भी संवारती हैं। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी लवली लेडीज़ आउट देयर।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
3: बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

The 10th of May 2026 ये दिन ख़त्म होने में बस अब एक घंटे से कम समय बाकी रह गया है। मैं हूँ जिकाश, रात भर तक मैं आपका साथ देने वाला हूँ। इस घंटे पर आपका सुकून हम आपको वापस कर रहे हैं। शायद दिस फाइनल आवर में यू आर स्टिल स्पेंडिंग टाइम विथ योर मम, विथ योर मदर इन लॉ, अपनी दादी है या फिर नानी है, इनसे आप बातें कर रहे हैं इंडिया में या फिर फिजी से हैं आप और यू मेड दोज कॉल्स, और अब बस नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, थिंकिंग अबाउट ऑल दी प्यारी प्यारी मेमोरीज जो आप, आपके मम, आपके नानी, आपके दादी के साथ आपने बिताए हैं। तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे, नॉट बर्थडे, अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू वन एंड ऑल आउट देयर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे टुडे। इस घंटे पर आपके लिए कुछ खुशनुमा गीत हैं, हमने लाइनअप किया है, इसका मज़ा आप लेते रहें। बीच बीच में हम आ जाएंगे आपको चीज़ें याद दिलाने के लिए, जैसे कि एनजेड म्यूज़िक मंथ है, इसमें क्या आप एक आर्टिस्ट है? हैव यू सेंट मी और हैव यू सेंट अस योर सॉन्ग्स? नो, वेल दिस इज़ योर चांस। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। एन्जॉय।

ऑलराइट, मैं ये न्यूजीलैंड में म्यूजिक मंथ होता है, मतलब कि हम हमारे ही लोकल आर्टिस्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं एंड वी आर टर्निंग अप द वॉल्यूम ऑन लोकल टैलेंट विद बैक योर बैकयार्ड बीट्स। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास अपने गाने भेजे हैं जिसको हम बजाते हैं एवरी वीकडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे दिन में, शाम को 5 बजे एंड रात को 10 बजे। और जब आप ये गाना सुनते हैं, अगर आपको गाना अच्छा लगता है, आवाज़ अच्छी लगती है, कंपोजिशन अच्छा लगता है, आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप वोट कर सकते हैं 5599 पर। MM लिखे गाने का नाम या फिर आर्टिस्ट का नाम लिखकर आप भेजे, और जितनी ज़्यादा वोटिंग आएगी उस वोटिंग के आधार पर एवरी इंटरेक्शन जो है ये आर्टिस्ट को एनेबल करेगा टू गेट इन टू द टॉप 3 पोजिशंस। दिस इज़ बेस्ड ऑन योर फीडबैक, ऑन योर वोटिंग। और ये वहीं पर नहीं ख़त्म होता है, आपके चुने गए आर्टिस्ट को हम फीचर करने वाले हैं ऑन आवर सोशल्स, एंड वहाँ पर भी आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं टू शो योर सपोर्ट। बाय द एंड ऑफ द मंथ विनर्स विल बी अनाउंस्ड बाय टोटल एंगेजमेंट, दैट इज़ योर वोट्स एंड सोशल मीडिया लव एज वेल। एंड जो आपके चहेते आर्टिस्ट होंगे उनको हम बढ़िया बढ़िया प्राइजेस देने वाले हैं। अगर आप खुद एक आर्टिस्ट हैं एंड अभी तक आपने अपना कंपोजिशन हमारे पास भेजा नहीं है, हिचकिचा रहे हैं, भाई भेज कर तो देखे, शायद इट माइट बी समथिंग दैट द पब्लिक लव्स। ये बात आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप अपने आप को आउट देयर इन द ओपन नहीं छोड़ोगे। तो MM लिखकर 5599 पर आप मैसेज भेजें, हम ईमेल आपको भेजेंगे। वैसे ईमेल हमारा है buzz@humfm.com। तो ट्राई इट आउट, अगर मैं अच्छा गाता तो आई वुड हैव डन दिस। हमारे अपने केतन कुमामत, ही इज़ इन द कंटेंशन, AJ साउंड देयर इन द कंटेंशन एज वेल। ही वॉज बोर्न इन मुंबई, ही ग्रू अप इन न्यूजीलैंड। इसके साथ एफाज लालवानी जी हैं, इनको हम पर्सनली जानते हैं। योगी जी हैं, ही वॉज बोर्न इन द वाइब्रेंट सिटी ऑफ फगवाड़ा, पंजाब, इंडिया में, ही इज़ ऑल्सो इन द कॉन्टेंशन। प्लस DJ चिली, इनके द्वारा कॉम्पोजिशंस बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया है। तो मे बी यू कैन जस्ट टॉप इट ऑफ विथ योर टच विथ योर म्यूजिक। buzz@humfm.com इज़ द प्लेस, इज़ द ईमेल जहाँ पर आपको अपनी कॉम्पोजिशन भेजनी है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.

वेलकम बैक टू हम। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था अबाउट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म ये है कि किसी और का काम अपने नाम के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, या फिर विदाउट टेलिंग कि भाई मैंने ये आर्टिकल, मैंने ये कंटेंट कहीं से उठाया है। यू नो प्लेजरिज्म, इसको आप लुकअप कर सकते हैं स्टडीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में, हाई स्कूल में। दिस इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। एंड ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पर एक स्टूडेंट ने डिग्री हासिल की और कुछ घंटों बाद उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया गया आफ्टर द पर्सन्स ग्रेजुएशन, क्योंकि इनके चैट जीपीटी यूसेज को ट्रैक किया गया और ये पता लगाया गया कि इन्होंने जो भी पेपर सबमिट किए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी से इन्होंने उठाई है। एंड दिस हिस्ट्री अपीयर्ड ऑन द ग्रेजुएशन स्क्रीन। The moment quickly went viral as university officials reviewed the case and took action under academic integrity rules. What was supposed to be a normal graduation moment instead raised concerns about possible AI use in academic work. ये जो incident हुआ है in China, it has started a debate about how students should use AI tools and how universities should create clear rules for ChatGPT and other AI platforms. तो एक और AI बहुत स्मार्ट हो रहा है। लोग सोचते हैं कि AI यूज़ करके यू कैन आउट स्मार्ट द सिस्टम। वेल, द सिस्टम इज़ ऑल्सो यूजिंग AI, तो बच कर कहाँ जाओगे।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा। प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Playing Bollywood's biggest hit.

वेल, अब तो हमारा जाने का वक्त हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा आपने हमारा साथ दिया आज शाम 6 बजे से। एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू वन एंड ऑल द लवली लेडीज़ आउट देयर। आपके शुक्रगुजार हैं हम, चाहे आप बेटे हैं चाहे बेटी है। यू नो योर मम हैज़ डन अ लॉट फॉर यू। अगर बायोलॉजी के बारे में बातें करें तो अपने जिस्म को तोड़कर आपको पैदा किया है, तो इसके लिए ही शुक्रगुजार उनका रहे। जो भी हो सके, जो भी बन सके, जब भी हो सके, उनको खुशी पहुंचाने की कोशिश करते रहे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं। और माँ का आशीर्वाद जब साथ होता है तो कठिन से कठिन समय भी बीत जाता है, आप कामयाबी के शिखर तक पहुँचते हो। तो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली लेडीज़ आउट देयर। मैं हूँ जिकाश, मैं आपसे अब दोबारा मिलूँगा नेक्स्ट वीक सैटरडे को विथ रेडियो पॉप। आई होप यू लव द प्रोग्राम, आई हैव एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए यू गाइज हैव अ लवली लवली वीक अहेड। जो भी करें, जो भी कुछ सोच रहे हैं करने की, मेक श्योर सेफ्टी पहले दिमाग में आना चाहिए, अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, आजू बाजू लोग हैं। मेक श्योर आप ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण से आपके आसपास के लोगों को अनसेफ फील हो। मिलते हैं शनिवार को, तब तक के लिए यू गाइज हैव अ ग्रेट, ऑसम एंड अ वेरी प्रोडक्टिव वीक अहेड। शुभरात्रि।

ताकि अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
1: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz। नाइट फ्लाइंग

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: Night Flight on Hum.
1: लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है। एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है।

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
4: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
1: वीकडेज 6 to 10 a.m. The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.

0: Flight on Hum.
1: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi banaye. Tu beach ke liye banaye. Tu life ko enjoy karne ke liye banaye.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
5: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है है है है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है।

फिलहाल चलिए आज की सुबह की शुरुआत आप सभी के साथ. हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज समय कुछ ज्यादा ही रफ्तार से चल रहा है. उम्मीद है कि आज की सुबह की शुरुआत आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया और कमाल की रही है. मेरे लिए तो काफी अच्छी रही है. आज सुबह की शुरुआत भी और आज का ये दिन जिसके लिए आई एम क्वाइट एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड उम्मीद है कि आज आप भी इस दिन की इंतज़ार में इसे यू नो एक्सप्लोर करने के लिए एकदम एक्साइटेड है. वादे अनुसार मैं पूजा आ गई हूँ आप सभी का साथ देने के लिए. अभी से लेकर ठीक आज दिन में 10 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. वैसे आज आपको एक और एक ज़रूरी बात हम बता दें, माइंडेंस विजय हम आपका साथ देने वाले हैं आज के सफर में, इसलिए क्योंकि आज वो छुट्टी पर है. तबीयत इज ऑल गुड बट ही टुक अ ब्रेक, अ बर्थडे लीव, क्योंकि आज उनका हैप्पी हैप्पी बर्थडे है एंड ही डिसाइडेड लाइक व्हाट बेटर डे टू गेट द बर्थडे लीव देन ऑन द बर्थडे. सो डेफिनेटली आज अगर आपका भी स्पेशल दिन है, आप भी अपना हैप्पी बर्थडे, अपनी शादी की सालगिरह जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि आज के इस दिन आपके साथ इस खास दिन को हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे. और जहाँ कहीं भी आप हैं, यू कैन सेंड अस योर मैसेज और आपके साथ हम आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं. 5599 इज द नंबर जिस पर आपको हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये सेंड करने हैं. नाउ डोंट फॉरगेट, ये है ब्रेकफास्ट कैचअप और ब्रेकफास्ट कैचअप में आपके साथ हम आज के सफर की शुरुआत जो है ये जरूर करेंगे. आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है. खबरों में क्या कुछ है, विल फाइंड आउट इन अ वाइल. जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप में थोड़ी देर बाद आज का सनी साइड अप स्टोरी भी रहेगा और ग्लोबल हेडलाइंस ये भी आपके लिए कमिंग अप वेरी शॉर्टली.

0: सनी साइड अप।
1: तो चलिए आज का जो सनी साइड अप यानी कि आज का हैप्पी स्टोरी जिससे करते हैं आज के सुबह की और इस सफर की शुरुआत आपके लिए हम लेकर आए हैं। एंड दिस इज अबाउट वेरी इंस्पायरिंग मैन जिनका नाम अशोक बहार बताया गया है। और अशोक जी ये लखनऊ इंडिया के रहने वाले हैं। इनकी उम्र है 70 years, 70 साल के हैं ये। वैसे इनकी आज की जो स्टोरी का कारण ये है कि इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से इनके बारे में भी पूरी दुनिया में बातें जो है ये हो रही है। बिफोर आई टेल यू अबाउट हिज स्टोरी, मैं आपको एक और एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, विच इज़ नीट UG यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ये इंडिया का मैंडेटरी सिंगल विंडो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स, जिसमें MBBS, BDS और भी सारे कोर्सेज जो है ये शामिल है। सो अब चलिए अशोक बहार जी के बारे में आपको बताते हैं। सो एट द एज ऑफ 70 ये इन्होंने फैसला किया कि ये अपना जो नीट का एग्ज़ाम है फॉर द ईयर 2026 ये देंगे to fulfill his late mother's dream of seeing him become a doctor. Despite decades away from studies, इन्होंने ये attempt choose किया, one of India's toughest entrance exam माना जाता है ये। और इन्होंने कहा कि इनको ये medical knowledge over the years मिली है and it comes from a family of doctors. लेकिन इन्होंने कभी भी एक formal degree जो है ये नहीं हासिल की। His determination has inspired many across the country. और इनके इस कहानी के सामने आने के बाद बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कोई इच्छा हो तो उस इच्छा को पूरी कीजिए, अगर कोई अधूरा सपना हो और समय है तो उस सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि उम्र का आपके सपने से कोई लेना देना नहीं, आपकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। एंड आई मस्ट से कि अशोक बहार जी इज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन एट द एज ऑफ 70। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स जो है ये इन्होंने दिया है इस साल। तो व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, अगर आपके मन में भी ऐसी कोई इच्छा है दैट यू वांट टू फील की इच्छा, आई मीन दैट यू फील की अच्छा इसे पूरा तो करना बनता है, इट वॉज अ ड्रीम बट ड्यू टू वट एवर सर्कमस्टांसिस आई कुडंट फुलफिल इट बैक देन, तो चलो क्यों ना अब इस सपने को पूरा किया जाए। एंड इफ दैट इज इन योर माइंड then go for it, get inspired from his story. So umeed hai ki aaj ka sunny side up aapko kisi na kisi roop se inspire zarur kare. Yaad rahe on the breakfast show with Vijay and Pooja, main Pooja aapka saath de rahi hoon, and coming up very shortly global headlines.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
4: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
6: The Spec Savers Spec Stravaganza store-wide sale is on now.
7: Phew, bit of a tongue twister, hey?
6: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200, only for a limited time. Should have gone to Spec Savers. Include single vision lenses, conditions apply.
8: Purani gaadi aur mehenga fuel, kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
9: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदो वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
0: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
10: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
4: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari good brands nahi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Global headlines.
1: चलिए ग्लोबल हेडलाइंस की बारी आई है. आज के ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले हम देखें जहां पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल ट्रिब्यूलेंस जो है इट कंटिन्यूज इन तमिलनाडु आफ्टर कांग्रेस रिपोर्टेडली एंडेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस विद द डीएमके एंड शिफ्टेड सपोर्ट टुवर्ड्स टीवीके, जो जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं एक्टर टेंट पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय तलपति. और इनके बारे में भी काफ़ी बातें जो है ये डेफिनेटली की जा रही है. दूसरी ओर इंडिया ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर AI एंड साइबर सिक्योरिटी featured prominently in the last edition of India Today, जहाँ पर इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही है, स्पेशली जो risks regarding banking and defense infrastructure जो है इसके बारे में भी काफ़ी in depth detail जो है ये इसमें publish की गई है, जिससे जुड़े कुछ जानकारियाँ इनफैक्ट आज प्रोग्राम में भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. इसके अलावा आपको बता दें कि जो tensions है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और ईरान के बीच में चल रहे वो को लेकर हो रहा है, इसका असर अभी भी पूरी दुनिया के लोग जो है इसका सामना कर रहे हैं. इट रिमेन्स अ मेजर इंटरनेशनल फोकस विद रिपोर्ट्स ऑफ ऑनगोइंग मिलिट्री एक्टिविटी, और कुछ नेगोशिएशंस भी आते रहते हैं इन रिगार्ड्स विद द स्ट्रेट ऑफ हमास क्राइसिस. लेट्स सी कब तक इसमें कुछ चेंजेस होता है या कोई एक फाइनल डिसीजन जो है ये लिया जाता है, जिससे जुड़े डिटेल्स हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. और इसके अलावा फीजी से खबर आ रही है कि अर्लियर लास्ट वीक जमजम रेस्टोरेंट, एक लोकल पॉपुलर रेस्टोरेंट इन समम्बुला सुवा, जहाँ पर गैस ब्लास्ट होने के बाद आग जो है ये लगी थी, जिसकी वजह से 9 लोगों को काफ़ी चोटें आई थी, जिनमें से 2 लोग ICU में एडमिटेड थे. उनमें से एक शख्स की मृत्यु लास्ट वीक सैटरडे को हो गई है, और इससे जुड़े कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस फिलहाल जारी है. जैसे कोई और डिटेल्स हाथ लगते हैं डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे.
4: Most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आऊं.
15: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 25 minutes after 6 for now और आपके लिए लेकर आ रहे हैं The Breakfast Show with Vijay and Pooja Monday 11th of May की ये सुबह. उम्मीद है कि आज की आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी जा रही है. If you've just started your morning, थोड़ी देर बाद आपके messages भी हम जरूर देखेंगे that you've sent across and thank you so much for that. Now इधर जल्दी से आपको बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरें जो है ये भी हम बता दें. संजना सांगी इनका इनके बारे में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो बट अगर आपने इनका नाम कभी नहीं सुना है बट यू फील लाइक कि अच्छा शायद हो सकता है इनको जानती हूँ थोड़ा गूगल वूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेट मी टेल यू कि संजना इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम जो है ये भी किया है. वन ऑफ दोज मूवीज जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा यू नो चर्चे में थी वॉज दिल बेचारा. She worked opposite Sushant Singh Rajput. और इसके अलावा इन्होंने by the way और भी कई फिल्मों में काम किया है जैसे Rockstar, बार बार देखो, हिंदी मीडियम और उसके साथ साथ आई थिंक What was that movie? फुकरे. इसमें भी ये दिखी थी ना. इनके लिए इनके बारे में ये आपको बता दें कि बॉलीवुड से अब हटकर ये अपना OTT डेब्यू जो है ये करने जा रही है. इन्होंने कहा है दैट शी हैज़ नेवर बीन सीन इन अ वेब सीरीज बिफोर. इन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम किया एज ऑफ नाउ बट ये इनका पहला जो OTT कॉन्टेंट रहेगा ऐसा फॉर्मेट रहेगा जिसमें नजर आने वाली है. शी सेड शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. फाइनली इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो entertainment, a different form of entertainment in fact, जिसको लेकर ये काफ़ी excited बता रही हैं अपने आप को. इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रागिनी 3 इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बातें हो रही है जिसमें तमन्ना भाटिया जो हैं ये नज़र आने वाली है. अब कहा गया है कि इनके साथ आयुष शर्मा यानी सलमान खान के जो ब्रदर इन लॉ हैं अर्पिता के हस्बैंड आयुष शर्मा ये भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं एंड ही विल बी सीन ऑपोजिट तमन्ना भाटिया.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: Mildale House and Land Packages.
5: Fine with a lot of cloud, high of 18. In on the Southern Motorway, 25 minutes, Manukau to town, 53 from Drury. Heavy at Papakura, slow to Manurewa, and slow patches at Papatoetoe and Mount Wellington. Northwestern, 26 minutes in from Massey, slow there to Te Aratu and Grey Lynn to the city. Northern, 22 from Constellation, slow at Silverdale, heavy at Constellation, slow to Waido Valley. Southwestern, fine.
4: Award-winning builders, wide range of homes, Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.

0: 30 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 6 बजकर, और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे अभी आप जहां कहीं भी हैं साथ हमारा दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये भी सेंड कर सकते हैं 5599 पर, इफ यू गॉट एनी डेडिकेशंस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको रिमाइंड कराया है कि आज ऑन द 11th ऑफ मई इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल डे, आपका बर्थडे है, आपकी शादी की सालगिरह है, और any sort of achievement that you would definitely like to share with us, तो वो आप जरूर हमारे पास भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए इधर हम आपके लिए कुछ और भी कमाल की खबरें जो है ये लेकर आए हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, कल 10th of May था और yesterday was Mother's Day. मदर्स डे सेलिब्रेशन जो है ये पूरी दुनिया में होता है ऑन द सेकेंड संडे ऑफ द मंथ ऑफ मे, एंड ऐसे में कल आपने भी मदर्स डे सेलिब्रेट किया, एंड होप कि आपका मदर्स डे सेलिब्रेशन जो है ये अच्छा बीता जो भी आपने किया, चाहे आप खुद एक मम्मी हैं, यू हैड अ गुड टाइम विद योर किड्स विद योर फैमिली, या फिर आपने अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, तो डू लेट अस नो हाउ इज़ योर मदर्स डे सेलिब्रेशन। ऐसा कुछ कमाल हुआ, ऐसा कुछ अलग हुआ, ऐसा कुछ स्पेशल हुआ, या ऐसा कुछ इमोशनल हुआ जो आपको लगता है कि यार ये बहुत खास था, एंड ये जो मदर्स डे है आई ऑलवेज रिमेंबर। इफ़ यू लाइक टू शेयर तो आप ज़रूर हमारे पास 5599 पर अपना मैसेज जो है ये सेंड कर सकते हैं, और कल जो सेलिब्रेशन है उससे जुड़े डिटेल्स हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। दैट व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट यस्टरडे सेलिब्रेशन, मदर्स डे सेलिब्रेशन, जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जो आपके जहन में हमेशा जुड़ा रहेगा। सो रिमेंबर 5599 इस पर आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आज 11th ऑफ मई और सुबह सुबह हमारे पास देखिए बहुत सारे मैसेजेस जो है ये भी आए हैं गुड मॉर्निंग के, सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। सबसे पहले मिस्टर माटामाटा, इन्होंने कहा है राम राम जय माता दी, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच मिस्टर माटामाटा आपकी मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग मैंडी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड कोमल, आपका भी मैसेज मिला है, गुड मॉर्निंग आपको भी, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, आपको भी हम कहना चाहेंगे। बॉबी मान जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग, शिवाज ब्लेसिंग्स, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, थैंक यू बॉबी जी, और आपको भी डेफिनेटली हम आज के इस सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे विजय आपने कहा है, she is an enjoy, thank you so much, we'll definitely convey your message to him, as I have said ki aaj ka ye safar hum aur aap ek saath minus Vijay bita rahe hain, kyunki aaj wo chutti par hai, birthday leave par hai, it's his birthday today, so if you're celebrating your birthday with him as well do let me know, kyunki agle ghante hum aapko zarur wish karenge। by the way ek sawal bhi hai aapke liye jo hum puchna chahenge zarur, aur iska jawab aap hamare paas bhej sakte hain on 5599 hamare saath subah subah program ka hissa jo hai ye banne ke। So if you're listening to me right now, चाहे 104.2 FM पर या Rover app पर, सबसे पहले तो आपके साथ और आपके समय के लिए thank you so much। और आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, चलो ब्रेन एक्सरसाइज जैसा ही ले लो कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आपके लिए सुबह सुबह, जो आप हमारे पास अपना जवाब भेज सकते हैं। BF लिखे सबसे पहले, फिर आपका आंसर, फिर आपका नाम, ठीक है? BF, your answer, your name, 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है टू द क्वेश्चन। A man has 9 sons. Each son has a sister. How many people are in the family? A man has 9 sons. Each son has a sister. How many people are in the family? ये आपको बताना है। मैंने तो सवाल दो बार आपसे पूछ लिया, अब देखते हैं आप में से कितने लोग आज के सवाल का सही जवाब हमें दे पाते हैं। इट्स 26 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 फॉर नाउ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, इफ यू जस्ट जॉइंड अस, ऑन हम अभी आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं, और उम्मीद है कि आज आप हमारे साथ इस सफर का मजा जरूर ले रहे हैं। टुडे इज मंडे 11th ऑफ मई।
1: लेट्स

0: बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपके लिए हम रिक्रिएटेड ये एक और एक पॉपुलर ट्रैक का वर्जन लेकर आ रहे थे. आशीष कौर एंड वरुण जैन की आवाजें रही इश्क विश्क रीबाउंड. 2024 में ये फिल्म आई थी और उसी का ये गाना आज आपके लिए रहा 20 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ. सवाल हमने पूछा तो ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर आया है. ओनली वन करेक्ट आंसर जो कि बॉबी मान जी ने हमारे पास भेजा है. थैंक यू सो मच बॉबी जी पार्ट लेने के लिए भी कॉम्पिटिशन्स में, और फिर मैसेजेस आप जो भेजते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. हमने सवाल आपसे किया वेरी सिंपल, लेकिन लगता है आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, तो इसीलिए आप अच्छे से सुने और फिर हमारे पास आप अपना जवाब जो है ये भेजिए. क्वेश्चन इज अ मैन हैज 9 सन्स. Each son has a sister. How many people are in the family? ठीक है, one correct answer seems a bit too much. अगर आप चाहें तो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं. वैसे संजू, thank you so much for your message as well. A man has 9 sons. Each son has a sister. How many people are in the family? If you think you know the answer, BF your answer, your name, 5599 पर आप भेज सकते हैं. आपको हम final 2 minutes का time दे रहे हैं, क्योंकि around throwback हम इस सवाल का सही जवाब जो है ये आपको देंगे.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
3: Bro, look at you. ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
4: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply. Hum. Accurate traffic.
5: Auckland Airport, park and ride.
6: Fine with lots of cloud, high of 18. And on the northwestern, 28 minutes, Massey to town. Slow Massey to Te Aratu at the Causeway and St. Luke's to the city. Northern 24 from Constellation, 55 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy gravel to Sunninook and slow to the bridge. Southern, half an hour in from Manukau. Slow Papakura to Papatoetoe at Otahuhu and Mount Wellington.
5: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
7: Discover the magic at Go Bananas Jaike. आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो. हम हमेशा आपके पास है.
8: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस.
7: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स. और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम. तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे.
8: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस. टीज एंड सीज अप्लाई.
9: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune.

थ्रोबैक की बारी आई है, बट बिफोर द थ्रोबैक हमने जो सवाल पूछा उसके आंसर्स आप हमने हमारे पास भेजे हैं। थैंक यू सो मच सईद, आपके भी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब जो है ये दिया। कुछ और लोगों ने कोशिश की है, अभी भी कुछ सही तो कुछ गलत आंसर्स आ रहे हैं। रोनील गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज। रोनल्ड है, राज है, मिस्टर माटा माटा आपके भी मैसेज के लिए शुक्रिया। विनय थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल। इधर थोड़ी देर बाद आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर। एक नई स्टडी की गई है जिसमें यह पता चला है दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन सोशल मीडिया एंड अडल्ट लोनलीनेस। तो क्या है इस स्टडी का राज और क्या पता चला है इसमें, ये आपके साथ हम अगले घंटे जरूर बांटेंगे। पर फिलहाल जो सवाल हमने किया था, क्वेश्चन था, अ मैन हैज 9 सन्स, ईच सन हैज अ सिस्टर, हाउ मेनी पीपल आर इन द फैमिली। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसके दो आंसर्स हैं। दो आंसर्स क्यों, लेट मी टेल यू। एक तो इस सवाल के हिसाब से अगर हम देखें, अ मैन हैज 9 सन्स, ईच सन हैज अ सिस्टर, हाउ मेनी पीपल आर इन द फैमिली। इफ यू जस्ट रिगार्ड द डैड कि सिर्फ डैड है फैमिली में, तो 11। 11 कैसे, 9 सन्स राइट, और हर भाई की एक बहन। अब एक ही बहन अगर है तो सभी भाइयों की हुई ना, ऐसा नहीं कि हर भाई के लिए एक दूसरी बहन है, नहीं। देयर इज 9 सन्स, उनकी एक बहन वुड बी 10 टोटल, plus 1 the dad would be 11. But if you regard both the parents, though the question has not mentioned the mom, but agar aap dono parents ko regard kar rahe hain as mom and dad both, to fir ho jayega 12, yani ki 12. To jitne logon ne mare paas 12 ya 11 likhkar bheja hai, your answer is absolutely correct. And thank you so much to Subha hamare sath ye chhota sa brain exercise jo hai ye khelne ke liye. Filhal agar samay ki aur dekhe to 14 minute baki hain is samay hamare studios mein subah 7 bajne mein. Good morning to you once again agar aap hamare sath abhi bhi jude hain. Remember agle ghante ek to aapki rashi vibes hum lekar aayenge, aaj ka din kaisa bitega according to your horoscopes if you follow them, janne ke liye hamare sath rahiyega. Plus aapko happy birthday, happy anniversary wish karenge. If you haven't sent in the messages as yet, get them rolling 5599 par agle ghante हम विश करने वाले हैं आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए हम लेकर आएंगे यस दैट स्टोरी अबाउट सोशल मीडिया एंड अडल्ट लोनलीनेस, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे।

0: accurate traffic.
1: Designer Rugs, annual stock sale.
2: Fine spells, lots of cloud, high of 18. At Southern Motorway, we've got a crash near Prince's Street, blocking lanes 3 and 4. Slow Papakura to Manukau, then heavy from there to Prince's. Then you're fine past there, but 47 minutes Manukau to the city. Northwestern, half an hour in from Massey. Slow patches from Massey, heavy around Te Aratu. Northern, 32 from Constellation, slow all the way from Greville.
1: Save up to 80%. Starts Friday. 3 days only. Designer Rugs, Graylin.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
5: Shower dome.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: रिमेम्बर आज का मौसम, जिसके बारे में कहा गया है कि रह रहकर बारिश होगी आज और शाम के समय थोड़ी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। करंट टेम्परेचर इन सुपर सिटी ऑकलैंड इज 14.6 डिग्रीज, हाई 17, बाद में चलकर ओवरनाइट 11 डिग्रीज रहेगा। सनसेट 5:27 PM पर होगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून

Hello, Kia ora. Good morning, Namaste, and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं The Breakfast Show with Vijay and Pooja on Hum 104.2 FM या फिर Rover App के जरिए हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं. Today is Monday, the 11th of May, और आज की ये सुबह Morning Madness की शुरुआत हम आप एक साथ कर रहे हैं. So I am really looking forward to this morning, and उम्मीद है कि आप भी same जज्बे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं. वैसे कहते हैं कि Monday morning थोड़ा least फेवरेट दिनों में आता है लोगों के, लेकिन अगर आप इसे ऑन अ पॉजिटिव नोट देखिए यार, यू नो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है. जो कहते हैं ना, मौके लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलते हैं और बहुत कम मौके मिलते हैं, और हर सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है. सो लुक इट इन दैट वे, और डेफिनेटली यू विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद मंडे अगर आप भी अपने सुबह की शुरुआत करेंगे विद अ माइंड सेट कि हाँ, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, एक नया मौका है मेरे लिए, तो इसका मैं इस बार तो भरपूर फायदा उठाऊंगी, एंड आई विल डू द थिंग्स दैट आई वाज सपोज्ड टू डू बट आई कुडंट डू इट, एंड दिस टाइम आई एम डेफिनेटली गोना गेट दैट डन. तो कीप दैट इन माइंड एंड स्टार्ट योर डे ऑन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नोट. थोड़ी देर बाद आज के राशि वाइब्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, एंड डोंट फॉरगेट कि आपके साथ शेयर करेंगे उस आर्टिकल के बारे में भी डिटेल्स जहां पर हमने आपको बताया था सोशल मीडिया एंड अडल्ट लोनलीनेस क्या है इसके पीछे की कहानी.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: So, चलिए आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स ये भी जान लेते हैं. तो सबसे पहले अगर आप मेष यानी एरीज आपका हॉरोस्कोप है, आपके लिए बताया गया है कि कोई भी जरूरी फैसला आज सोच समझ कर करें. बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा और आज तो रिलीजियस कामों में भी आपका दिल लगेगा. यू नो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में आपका मन लगेगा जो रिलीजियस चीज़ों से जुड़ी हो, एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस. वृष यानी टॉरस, आपके लिए कहा गया है किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो आपको वापस मिल सकते हैं. किस्मत आपका साथ दे रही है. नौकरी में चैन का चैन की सांस आप लेंगे, एज इन यू विल फील वेरी रिलीव्ड प्रोफेशनली. और कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे लाइफ में ग्रो करने के लिए जिससे कि आप बहुत खुश होंगे. मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए कहा गया है कि काम करने का तरीका सुधरेगा. समाज में जो भी काम आप कर रहे हैं अपने इच्छा अनुसार उसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा. यू विल गेट सम रियल गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस ठीक ठाक चलेगा इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन. और वैसे आपके लिए ये बताया जा रहा है कि बिजनेस पर ध्यान दे रहे अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भी ध्यान दे क्योंकि फिजिकली आप बहुत तरह की चीजें फेस कर रहे हैं धीरे धीरे जिन पर शायद अभी आपका ध्यान नहीं जा रहा है. बट अगर आप इसी तरह से इसे इग्नोर करते रहें तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़ी भी हो सकती है. सिंह यानी कि लियो, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में ना आए, मतलब इन्फ्लुएंस ना हो जाए इतनी जल्दी कि आपको उसकी भरपाई इन अ नेगेटिव वे करनी पड़े. कोई भी जरूरी फैसला ले रहे हैं सोच समझ कर, टेक योर टाइम, बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसा भी आपके लिए कहा गया है. कन्या यानी वर्गो, घर और बाहर, देयर विल बी अ वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी डे आज आपके लिए रहेगा. और यू नो एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जिससे कि आपको बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलेंगी. और उसके साथ साथ आपके लिए ये भी कहा गया है कि चिंता या तनाव आपको थोड़ा परेशान करेंगे आज, बट समवन रियली स्पेशल एंड क्लोज टू यू आपको इन चीजों से बाहर भी ला सकते हैं. तुला यानी कि लिब्रा, आपके लिए कहा गया है पैसों के मामले में फायदा हाथ लगेगा. प्रॉपर्टी आपका जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है बिकॉज यू इन्वेस्टिंग सो मच टाइम इन गेटिंग इट यू नो बिगर एंड बिगर एवरी डे. और बहुत से बड़े फायदे भी होंगे जो भविष्य में चलकर आपके काम आने वाले हैं. वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के गाइडेंस की वजह से आज मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे. रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिए, डोंट रश इनटू थिंग्स. धनु यानी सेजिटेरियस, कीमती चीजों को संभाल कर रखे, बुरी खबर मिल सकती है. मेंटली आपको एक स्ट्रांग व्यक्ति जो है ये बना देगा ये, बट अभी के लिए आपको थोड़ा मन को संभाल कर रखना है. भाग दौड़ भी लगी रहेगी, ऐसा भी आपके लिए कहा गया है. एंड मकर यानी कैप्रिकॉन, कोशिशें सफल होंगी. सोसाइटी में आज आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा टू डू गुड फॉर द पीपल इन योर कम्युनिटी, और मान सम्मान भी इसकी वजह से आपको मिलेगा. कुंभ यानी अक्यूरियस, दूर से कोई अच्छी खबर मिलेगी और घर पर मेहमान भी आ सकते हैं जिनके साथ अच्छा समय बीतेगा. कोई शुभ काम आप कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आपके हाथ लगेगा. इसके बाद मीन यानी पाइसिस, बिजनेस अच्छा चलेगा. यू विल गेट अ गॉट अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. और कोई भी मुश्किल कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो इससे आपको फाइनली छुटकारा मिलने वाला है. So these were your Rashi Vibes for today. उम्मीद करते हैं आज आपका सभी का दिन बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे. इसी उम्मीद के साथ साथ letting you all know कि फिलहाल 15 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म.

0: अलार्म।
1: आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपको सुनाने से पहले ये जो गाना अभी आपने सुना बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में मैं वापस आऊंगा, इसी साल ये फिल्म आने वाली है, उसी का ये ट्रैक है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। इनफैक्ट इस फिल्म के और भी गाने मुझे यार सच में बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड इम्तियाज अली इज डायरेक्टिंग दिस मूवी। अगर आपने इसका जो ट्रेलर है ये नहीं देखा है, इनफैक्ट अभी आई थिंक ट्रेलर रिलीज भी नहीं हुआ, टीजर रिलीज हुआ है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। एंड आई पर्सनली फील इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मैजिकल इम्तियाज अली मूवी जो वो हमेशा यू नो क्रिएट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्तियाज अली एंड एआर रहमान हैज ऑलवेज बीन गुड। तो जरूर इसका जो ऑफिशियल टीजर है जाकर चेकआउट कीजिएगा। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शार्वरी वाघ और वेदांग रायना जो है ये नजर आने वाले हैं। इनफैक्ट इस फिल्म का एक और एक गाना आज बाद में चलकर आपको हम जरूर सुनाएंगे जो कि वेदांग ने खुद गाया है। है तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर लेकिन गाते भी बड़ा खूबसूरत है और उन्होंने उस गाने को गाया है, तो वो भी आपको हम बाद में चलकर सुनाएंगे। पर फिलहाल चलिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म। यू नो द जिस्ट, अगर आपने आवाज पहचान ली या आप में से किसी एक ने भी सही सही आवाज पहचान ली तो कल आपके लिए एक नई आवाज हम जरूर लेकर आएंगे सेलिब्रिटी अलार्म में। लेकिन अगर आज किसी ने भी सही नहीं बताया तो हमें यही आवाज कल कंटिन्यू करनी होगी। एंड विल सी कब तक हम इसके साथ आगे चलते रहते हैं कि जब तक कोई इसे पहचान ना ले। आई पर्सनली फील बहुत पॉपुलर शख्स है, इनकी आवाज भी बहुत पॉपुलर है और इनका ये जो डायलॉग है ये भी बहुत पॉपुलर है। पहले आपको आवाज सुनाते हैं, उसके बाद कुछ और बातें जरूर।
2: Look, it is a challenge in higher density areas for people to get outside and to spread their legs when they are when they're surrounded by other people. And so in some cases it might be more sensible for them to drive a short distance to get to somewhere where they can be further away from other people. I shall go and stretch my legs. I'm sure you'll all have fun with me later.
1: तो कौन है ये? अगर आपको पता चल चुका है तो अपना जवाब आप हमारे पास भेजें 5599 पर। आपको बस लिखना है BF, उसके बाद आपको लिखना है अपना जवाब और अपना नाम कि ये किन की आवाज़ थी आज सेलिब्रिटी लाम में आपके लिए। समवन वी ऑल नो अभी भी काफ़ी एक्टिव हैंगे और न्यूजीलैंड में अगर आप रहते हैं तो यू विल डेफिनेटली नो कि ये कौन है। और स्पेशली न्यूजीलैंड में ड्यूरिंग कोविड अगर आप थे जब लॉकडाउन हुआ था एंड आपको याद होगा बहुत सारे अपडेट्स होते थे, नेशनल टेलीविजन पर अपडेट होता था एंड फैमिली ऑफ 5 million वाज बीइंग एड्रेस्ड एट दैट टाइम अ लॉट। तो उस दौरान ये इन्होंने गलती से बोला था और फिर बाय गॉड उसके बाद तो जैसे ये लाइन इनकी पहचान ही बन गई। तो कौन है ये? अगर आपको पता है अपना जवाब ज़रूर भेजें। BF, you answer your name on 5599. एक आखिरी बार आपको इनकी आवाज जो है ये हम सुना रहे हैं, so pay a bit of attention.
2: Look, it is a challenge in higher density areas for people to get outside and to spread their legs when they are when they're surrounded by other people. And so in some cases it might be more sensible for them to drive a short distance to get to somewhere where they can be further away from other people. I shall go and stretch my legs. I'm sure you'll all have fun with me later.
1: यू नो जितना मज़ा ये सुनने में आ रहा है जिस तरह से ये बोलते हैं उससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग डॉक्टर एशली ब्लूमफील्ड के रिएक्शंस थे जब इन्होंने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि वो उस दौरान उनके बाजू में ही खड़े थे एंड हिज रिएक्शन वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरा एज वेल। एनीवेज 26:07 नाउ, जल्दी जल्दी अपना जवाब हमारे पास भेजें। 5599 इज द टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर। कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज के न्यूज़ हेडलाइंस आपके लिए, गेट रेडी फॉर दैट। पर फिलहाल लेट्स एंजॉय चार्ट बस्टर ज़ियार रहमान के बारे में हमने बातें की, तो इस बार उन्हीं की आवाज में हाईवे फिल्म का ये बड़ा ही कमाल का गाना जो इस बार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं।
0: Are you ready? Chartbusters.
3: थोड़ा तो हॉल बना दे।

0: www.radio.nz.
1: News headlines.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: तो आज चलिए न्यूज हेडलाइंस में आपके लिए हम जो खबरें लेकर आए हैं इस पर भी चर्चा जो है ये आपके साथ हम कर लेते हैं. सबसे पहले खबर जो है ये आ रही है कि आज न्यूजीलैंड हेल्थ ऑफिशियल्स जो है इन्होंने कहा है एनीवन रिटर्निंग फ्रॉम अ क्रूज शिप अफेक्टेड बाय अ हंटर वायरस आउटब्रेक मे नीड टू गो इन टू क्वारंटीन एज अ सेफ्टी मेजर. तीन लोग जो है ऑन द क्रूज शिप MV Honduras जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है आफ्टर कैचिंग द वायरस और ये जो शिप है इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन द कैनरी आइलैंड्स स्पेन में. ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि एक न्यूजीलैंडर भी है ऑन बोर्ड और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इनका ये कहना है कि दे आर वर्किंग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प सेफली ब्रिंग पीपल होम. हेल्थ चेक्स जो है ये किए जाएंगे बिफोर एनीवन रिटर्न्स टू न्यूजीलैंड डिपेंडिंग उनका सिचुएशन क्या है. इन सम पीपल में ऑल्सो नीड टू गो इन क्वारंटीन. रिचर्ड जेन जिन्होंने ये कहा है कि करंटली देर इज़ नो साइन दैट एनी न्यूजीलैंडर हैज़ कॉट द वायरस. उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हंटर वायरस डज नॉट स्प्रेड ईजली बिटवीन पीपल और ये COVID-19 या फिर फ्लू जैसा बिल्कुल भी नहीं है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ओवरऑल रिस्क कम है इंक्लूडिंग फॉर न्यूजीलैंड. यानी एक आम भाषा में अगर आपको बताएं तो हेल्थ ऑफिशियल्स जो है वो काफ़ी केयरफुल हो रहे हैं इस मामले में हंटर वायरस आउटब्रेक को लेकर जो कि क्रूज शिप में हुआ है और उनका कहना है कि ये जो रिस्क है टू न्यूजीलैंडर्स अभी तक इट रिमेन्स लो. दूसरी ओर एक स्मॉल कम्युनिटी है जिन्हें फिरिनाकी जो है ये कहा जाता है और ये नॉर्थलैंड में रहते हैं. कुड बी द फर्स्ट they could become the first place in New Zealand जहाँ पर एक entire settlement को higher ground move किया जाएगा क्योंकि repeated floodings जो है यहाँ पर हो रहे हैं climate change की वजह से. ये जो area है it has been badly hit by floods बहुत बार और मार्च में जो flood waters है इसकी वजह से करीबन 65 घरों में damages हुए थे जिसमें से 9 ऐसे घर जो थे जिनमें अब रहने की हालत बिल्कुल भी नहीं है और एक flooded house जो है later इसमें आग भी लगी थी जिसकी वजह से काफी डैमेज जो है यहां पर हुआ था. मैनी रेसिडेंट्स ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग और कुछ फैमिलीज ने यह भी कहा है कि वो अभी कैंपरवैन्स में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं जबकि जो क्लीनिंग का काम अभी भी चल रहा है उनके घरों में. लोकल लीडर्स ने यह कहा है कि रेसिडेंट्स हैड ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग मैनेज्ड रिट्रीट और उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये है कि घर मूव किए जाएंगे अवे फ्रॉम डेंजरस फ्लड जोन्स टू सेफर लैंड या फिर नियर बाय हिल्स में भी. इनका मानना है कि फ्लडिंग विल कंटिन्यू टू गेट वर्स बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है दिन ब दिन ये बढ़ रहा है. तो ये थे आज के न्यूज हेडलाइंस.
1: न्यूज हेडलाइंस

0: आपके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
3: Fine with lots of cloud, 18 hour high today. Southern Motorway, a crash near Prince's Street has been sorted, but slow from Papakura, very heavy Manurewa to East Tāmaki, an hour Manukau to the city. It does clear past East Tāmaki. Southwestern, fairly heavy Manukau to through Wiri. Northwestern, 36 in from Massey, heavy patches from Upper Harbour. Northern, heavy gravel to the bridge, 38 minutes in from Constellation.
2: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, lending criteria and terms apply.
4: Whether you start the day with cereal, slide into it with a smoothie, or wake up with a coffee, do it right. Packed with calcium, vitamins, and protein, nothing beats the goodness of real milk. Grab some Anchor. Real milk, real good.
5: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
6: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: द ब्रेकफास्ट शो विद

0: बर्थडे, चलो लाइन में आ जाओ।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का समय हुआ। आज जहाँ के भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन द 11th ऑफ मई, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी हम टीम की ओर से। आज अगर सबसे पहले देखा जाए तो अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं। रितेश, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। आज आपके जन्मदिन के मौके पर स्पेशल लव एंड विशेज आपकी प्यारी सी पत्नी हैं संगीता, इनकी ओर से आपको दिया जा रहा है, और हमारी हम टीम की ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वैसे आज हैप्पी बर्थडे जो है ये आपको विश कर रहे हैं शहीफ, हैप्पी बर्थडे आपके सभी अपनों की ओर से, स्पेशली आपके फ्रेंड हैं क्या नाम है इनका, ओ कुशाल, कुशाल की ओर से मैसेज आया है। सो विशिंग माय बडी शहीफ अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, माय गॉड ब्लेस यू। और कुशाल ने आपके लिए मैसेज भेजा है शहीफ, तो हमारी ओर से भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज अपना बर्थडे जबकि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, आज 11th ऑफ मई को हमारे ब्रेकफास्ट शो होस्ट और हम के जो कंटेंट डायरेक्टर हैं विजय वर्मा, ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, स्पेशल डे, स्पेशल सेलिब्रेशन डे। सो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, पूरी फैमिली की ओर से, एंड ऑफ कोर्स हम टीम की ओर से भी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 22 मिनट बाकी है फिलहाल हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में, थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आने वाले हैं दैट होल स्टडी रिजल्ट जो सामने आया है अबाउट सोशल मीडिया एंड adult loneliness.

तो याद है ना कि हमने सवाल भी किया था सेलिब्रिटी अलार्म में, जिसके लिए आपको अपने जवाब हमारे पास भेजने थे। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। सबसे पहले तो मैसेज आया था आज राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, इनकी ओर से थैंक यू सो मच राज आपके मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड। इसके साथ आज एशली है, साथ में सोम है, अंकित है, प्रीतम, अपर्णा, सनील, रिया, वरुण एंड ऑफकोर्स फ्रांसीना, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सुनील है और सलेश प्रसाद जी हैं अपहट वेलिंगटन से, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल। एल्विना, थैंक यू सो मच आपके भी जवाब के लिए। और इसके अलावा चित्रा, आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है। एंड मधु जी, गुड मॉर्निंग टू यू। प्लस सीमा प्रसाद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सो आज हमने आपको जो आवाज सुनाई थी सेलिब्रिटी अलार्म में, द करेक्ट आंसर टू दैट वुड बी क्रिस हिपकिंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर एशली ब्लूमफील्ड जो है ये लिखकर भेजा, पर नहीं, इनफैक्ट जो आवाज़ हमने या फिर जो ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनाया था उस दौरान डॉक्टर एशली ब्लूमफील्ड उनके साथ मौजूद थे, बट द पर्सन जिनकी आवाज़ थी वो थे क्रिस हिपकिंस। और क्रिस हिपकिंस जो है ये तो बड़े जाने माने शख्स हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर इन 2023 फॉलोइंग जेसिंडा आर्डर्नस रेजिग्नेशन एज वेल। और अभी फिलहाल के लिए ये लेबर पार्टी के लीडर हैं। तो इनकी आवाज़ जो है आज सेलिब्रिटी लाम में रही। कुछ लोगों ने क्रिस्टोफर लक्सन भी लिख कर भेजा था, बट दैट इज द इनकरेक्ट आंसर, राइट। हाई प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जिनके बर्थडे सुखचरण, अरे इनके, हाँ अच्छा, इनके बेटे का बर्थडे है, सुखचरण जी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके जन्मदिन के मौके पर आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके मम और डैड की ओर से, और आपके भाई हैं और जितने भी परिवार वाले हैं सभी ने आपको याद किया है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू, हमारी ओर से हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जो है ये दे रहे हैं। बाय द वे, एक नई स्टडी जो है ये की गई है, एंड इस स्टडी में ये बात पता चली है दैट हैविंग लॉट्स ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड्स डजंट मीन यू एक्चुअली नो देम, और इसकी वजह से आपकी फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस जो हैं ये बढ़ सकते हैं। ना ये तो कोई बोलने वाली बात है नहीं कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर 1000 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, आप उनको पर्सनली नहीं जानते, वो बस आपके फ्रेंड्स हैं, आप कुछ पोस्ट करते हैं, वो कमेंट कर देते हैं, वो लाइक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा इतने सारे फ्रेंड्स जो है सोशल मीडिया पर रखने के बाद। एक रिसर्च हुआ है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा एडल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड दे आर इन बिटवीन द एजेस ऑफ 30 to 70। रिसर्चर्स ने उनके सोशल मीडिया इफेक्ट्स पर काफ़ी बातें जो है ये की है। ये पूरा रिसर्च जो है इस मामले में किया गया है, एंड इस स्टडी में ये पता चला है दैट पीपल who interacted more with strangers online aksar wo bahut akela pan feel karte hain. However, simply having close friends on social media did not automatically reduce their loneliness either. Lead researcher Brian Primack ne unhone explain kiya hai ki online interaction is not the same as real life connection, which is so obvious, aur unhone compare kiya hai it to eating apple flavored cereal instead of a real apple. It may feel satisfying for a moment, lekin uska jo asar hai वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है तो होता है जैसा तब होगा जब आप एक एक्चुअल एप्पल खाएंगे। तो रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया कैन मेक पीपल कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स व्हिच हैपेंस अ लॉट, एंड सीइंग परफेक्ट लुकिंग फ्रेंडशिप्स ऑनलाइन, स्पेशली जो स्ट्रेंजर्स के बिटवीन जो बॉन्ड लोग शेयर करते हैं, कभी कभी यू नो यू सी अ लॉट ऑफ पोस्ट्स इन रिगार्ड्स विद दैट, बहुत से लोग अक्सर ऐसे पोस्ट देखकर खुद में अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत अनहैप्पी फील करते हैं। इस स्टडी में ये बात पता चली है दैट इट डज़ नॉट प्रूव डायरेक्टली कि सोशल मीडिया जो ये लोनलीनेस कोस करता है, लेकिन सजेस्ट करता है कि देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ऑनलाइन पोस्ट्स इन रिगार्ड्स विद परफेक्ट फ्रेंडशिप्स, परफेक्ट पीपल, परफेक्ट रिलेशनशिप्स बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन, जिसको देख देख कर लोगों के मेंटल वेलबींग पर नेगेटिव असर ज़रूर पड़ता है, बिकॉज दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर दिस परफेक्शन अपनी रियल लाइफ में, जो अक्सर लोगों को मिलता नहीं है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि अपने सोशल मीडिया पर आप जो भी देख रहे हैं उसे अपनी असल जिंदगी से बिल्कुल भी कंपेयर ना कीजिए। जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ऐसा असल जिंदगी में हो, इस बात की उम्मीद भी बिल्कुल मत कीजिए।

याद रहे अगले घंटे आपके लिए हम फ्लाईवे फ्रेंजी का कोड जो है ये भी रिवील करने वाले हैं, और साथ ही साथ अगले घंटे बैक योर बैकयार्ड बीट्स न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के तहत हमारे आज के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका गाना भी आपको हम सुनाने वाले हैं। पर उससे पहले याद दिलाए आपको अबाउट रोवा पर चर्डल जो है ये भी आपको खेलना है, बिकॉज बहुत ही जल्द ये इज कमिंग टू एन एंड, और इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको ना तो ये खेलने का मौका मिलेगा और ना ही तो पैसे जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि चर्डल खेलते हुए हर रोज कोई ना कोई $100 जो है ये जीत रहा है। देन व्हाई आर यू स्टिल नॉट प्लेइंग इट, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, आपके पैसे जीतने के मौके से आप क्यों अभी भी पीछे हट रहे हैं? आप क्या कीजिए, रोवा का ऐप अगर आपके पास है ऑल गुड, आप विन टैप पर जाकर चर्डल जो है ये सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको बस जाना है और रोवा पर जैसे ही चर्डल का टैब आप ओपन करोगे यू विल सी कि आज के लिए कोई एक कीवी वर्ड कीवी फ्रेज या कीवी सेइंग जो है ये वहां पर पब्लिश की गई है, एंड आफ्टर लुकिंग एट इट आपको बस वो क्रैक करना है, उसका मतलब आपको बताना है कि इस कीवी सेइंग वर्ड या फ्रेज का क्या मतलब है। बिना किसी हिंट का इस्तेमाल किए अगर आपने जवाब दिया या फिर बिना समय गवाए अगर आपने इसका जवाब दिया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है इसका मतलब ये होता है कि आपके जीतने के एक्स्ट्रा चांसेस, द मोर यू प्ले द बेटर चांसेस ऑफ यू विनिंग। सो अगर अभी तक रोवा पर चर्डल नहीं खेला है जल्दी जल्दी जाकर चर्डल खेलो, $100 ईच कोई ना कोई हर रोज जीत रहा है और आप भी जरूर जीत सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 14.5 डिग्रीज टेम्परेचर फिलहाल सुपर सिटी ऑकलैंड में है. आज ओवरनाइट टेम्परेचर 18 डिग्रीज रहेगा एंड हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है. या माफ कीजिए, ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्रीज रहेगा. मौसम के बारे में कहा गया है, मॉर्निंग शावर्स एंड देन पैची रेन बाद में चलकर जरूर हो सकते हैं सनसेट 5:27 PM पर.
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: तो बारी है अब ट्रेंड पेट्रोल की, जो कि आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं. आज अगर देखा जाए तो क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है ऑनलाइन. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कई तरह की बातें जो है ये हो रही हैं. बट सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रेंड पेट्रोल में आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो, इससे जुड़े डिटेल्स. वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर हम शेयर कर सकें तो डेफिनेटली करेंगे, ताकि आप भी जाकर इसे देख सकें. बट दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो है ये आपके साथ हम जरूर शेयर करना चाहते हैं. दिस गाय वॉज कैप्चर्ड ऑन अ वीडियो जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है फिलहाल, एंड एवरी वन हु सॉ दिस वीडियो वॉज शॉक्ड. कमाल की बात ये है कि कैसे इन्होंने ये किया, वेल नो वन नोज अबाउट दैट राइट नाउ. तो एक व्यक्ति है जो इस वीडियो में दिखे हैं, एंड एवरीवन आफ्टर बीइंग यू नो आफ्टर स्पॉटिंग दिस वीडियो इज काइंड ऑफ शॉक, क्योंकि इनको देखा गया एक छोटे से टाइनी से स्कूटर पर अपना पूरा का पूरा घर बेसिकली ये कैरी कर रहे हैं. फ्रॉम अ वॉशिंग मशीन टू द रग टू द कार्पेट्स टू द कैबिनेट्स एंड देयर इज लाइक पिलोज एंड स्टफ, सूट केसेस भी है कुछ. लेकिन एक चेयर है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है. सबसे नीचे इन्होंने एक वॉशिंग मशीन जो ये रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ कार्पेट्स वगैरह है. दे इज़ लाइक अ स्मॉल ड्रो काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन कुछ और सूट केस वगैरह है, ऐसे बैग्स है. सबसे ऊपर इन्होंने एक कुर्सी रखी है, और कुर्सी के ऊपर पता क्या है, इनका पेट गोट उनको खड़ा किया हुआ है. उनके पैर वगैरह उन्होंने किसी तरह से उस कुर्सी से बांधे ताकि वो वहाँ से गिरे नहीं. और इनको, इन सारी चीज़ों को अपने स्कूटी पर डालकर एक बिजी रास्ते पर ये जा रहे हैं, जहाँ पर इनका ये वीडियो कैप्चर हुआ. ही वॉज सीन बैलेंसिंग हिज एंटायर हाउसहोल्ड थिंग्स बेसिकली ऑन हिज स्कूटी ऑन अ बिजी रोड, एंड पीपल वर वॉचिंग दिस सीन एंड दे कुड नॉट बिलीव द आईज कि कैसे इन्होंने ये किया. किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है इतनी सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्कूटी पर एडजस्ट कैसे की. एंड करंटली दिस पर्टिकुलर क्लिप, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ट्रेंडिंग अ लॉट ऑनलाइन, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट द राइडर्स कॉन्फिडेंस और उनके बैलेंसिंग टैलेंट के बारे में भी काफ़ी बातें जो है फिलहाल ये हो रही है. फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं 8:00 हमारे स्टूडियोज में, और एक खबर जो है ये भी आ रही है अबाउट The motorway, जहाँ पर न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है NZTA, इन्होंने कहा है कि 2 to 4 lanes are blocking the motorway right now. और ये basically ये जो motorway जो block हुआ है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, it's just Auckland Southern Motorway, यहाँ पर एक crash हुआ है, एक truck और car जो है they've collided, जिसकी वजह से काफ़ी extensive delays ये predict किए जा रहे हैं. And several lanes of the Auckland Southern Motorway जो है they were blocked after this crash. वैसे अभी क्लियर अप तो किया गया है, लेकिन द मोटरवे वाज डाउन टू 1 lane नॉर्थ बाउंड नियर द प्रिंसेस स्ट्रीट ऑफ रैम्प इन ऑटोहूहू. और देखा जाए तो एक घंटे से भी ज़्यादा लग रहा है लोगों को टू ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे टुवर्ड्स ऑकलैंड सिटी ऑन सदर्न मोटरवे. सो जैसे ये क्लियर अप होता है, इस पर और भी डिटेल्स आपके साथ हम जरूर शेयर करते रहेंगे. इसके लिए हमारे साथ ही आपको बने रहना है.

0: local artists.
1: Back your backyard beats.
2: सो बैक यू बैक यार बीट्स आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जबकि ये न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ है. मई इज द मंथ न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है एज म्यूजिक मंथ, एंड लोकल आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे, इनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इनको इनकरेज किया जाता है. वी हैव बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स हमारे लोकल आर्टिस्ट की ओर से जो लास्ट वीक आपने सुना है. जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर, मंडे को आपने हमारे जो अपने साथी हैं केतन, इनके गाने सुने जो इन्होंने खुद गाए हैं, और इसके अलावा ट्यूजडे को देयर वाज एजे साउंड्स, उनका नाम है अर्जुन लेकिन ये जाने जाते हैं एजे साउंड इस नाम से. इनकी पैदाइश वैसे मुंबई में हुई थी, न्यूजीलैंड में पले बड़े हैं ये, और सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत खूबसूरत गाते भी हैं. तो उनके गाने जो है ये हमने ट्यूसडे को आपको सुनाए थे. ऑन वेंसडे हमारे बहुत ही आर्डेंट लिसनर है एफाज ललवानी, इनके गाने जो है ये आपने सुने. पास्ट 3 ईयर्स से ये सिंगिंग जो है इन्होंने शुरू की है और इनको कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. कुछ बार ये स्टेज पर भी इन्होंने परफॉर्म जो है ये किया है, एंड रिसेंटली इन्होंने अपनी जो सिंगिंग जर्नी जो है हमारे साथ शेयर की, और इसके जरिए न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में लास्ट वेंसडे को आपने इनके गाने सुने थे. थर्सडे को एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है योगी. ही वॉज बॉर्न इन द वाइब्रेंट सिटी ऑफ फगवाड़ा, पंजाब इंडिया में. न्यूजीलैंड बेस्ड है ये, मल्टी टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर हैं, और इनके गाने जो है ये लोगों ने बहुत पसंद किए. इनफैक्ट इनके लिए वोट्स भी कई आए थे. और फ्राइडे जहाँ पर डी जे चिली, इनके रिमिक्स जो है ये हमने आपके लिए अप्लाई किए थे, इनफैक्ट हमारे न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ बैक योर बैकयार्ड बीट्स के तहत भी. और कुछ कमाल के रिमिक्सेज आपने फ्राइडे नाइट ड्राइव जो है इसमें भी सुने थे. आज एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनसे मैं बहुत पर्सनली वाकिफ हूँ, और शायद आप सब भी अगर आप द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा सुनते हैं, तो आज हम आपको विजय द्वारा कंपोज्ड कुछ गाने जो है ये सुनाएंगे बैक योर बैकयार्ड बीट्स में. आज का ये गाना बहुत स्पेशल है. जस्ट यस्टरडे द होल वर्ल्ड बेसिकली सेलिब्रेटेड मदर्स डे, और मदर्स डे के खास मौके पर द लकी वंस जिनकी मम्मीज अभी भी अराउंड है, दे गॉट टू सेलिब्रेट द डे विद देयर मम्मी. बट देयर आर सर्टन पीपल आउट देयर जिनकी अनफॉर्चुनेटली मम्मीज उनके साथ नहीं है. एंड इनफैक्ट इस गाने के बारे में पर्सनली आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि ये गाना विजय ने अपनी मम्मी के लिए लिखा, क्योंकि उनकी माँ को गुजरे 1 साल हुआ है, एंड ही बेसिकली फेल्ट ईच एंड एवरी वर्ड कि उनकी माँ जो है अभी भी शायद उनके साथ इस तरह से इस रूप में है, और उन्होंने बहुत प्यार से ये गाना अपनी मम्मी की याद में कंपोज किया. तो आसमां से आंचल गाने का टाइटल है, और आज उनके बर्थडे के खास मौके पर बैकयार्ड बीट्स में विजय के द्वारा कंपोज आसमां से आंचल ये गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं. फ्रेंसिना, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए भी. आपने कहा हैप्पी बर्थडे विजय, चीयर्स टू यू एंड अनदर अमेजिंग ईयर. थैंक यू सो मच फ्रेंसिना. आज है तो नहीं वो होने, लेकिन डेफिनेटली आपके मैसेजेस हम उन तक ज़रूर पहुँचा देंगे. फिलहाल चलिए आसमां से आंचल, बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल ये ट्रैक आप सबके लिए आज बैक योर बैकयार्ड बीट्स में.

0: तो चलिए आज बैकी और बैकयार्ड बीट्स में ये गाना आपके लिए हमने पेश किया, विजय द्वारा कंपोज्ड ये सॉन्ग आज उनके बर्थडे के मौके पर भी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया, और याद रहे बैकी और बैकयार्ड बीट्स जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए ना केवल आप न्यूजीलैंड म्यूज़िक मंथ हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना केवल लोकल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी किसी भी लोकल आर्टिस्ट का गाना जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जब बैकी और बैकयार्ड बीट्स में आप इसे सुनते हैं और आपको वो गाना अगर पसंद आए, वो आर्टिस्ट अगर पसंद आए, तो उनके लिए आप वोट ज़रूर कीजिएगा। वोट करने के लिए आप MM यानी म्यूज़िक मंथ का शॉर्ट फॉर्म लिखें, फिर उस आर्टिस्ट का नाम लिख कर 5599 पर हमारे पास भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ये कोलैबोरेशन जो है होते रहेंगे, तो सोशल मीडिया पर भी आप जाकर इन्हें वोट जो है ये कर सकते हैं आर्टिस्ट को। एंड जो भी टॉप 3 आर्टिस्ट रहेंगे सोशल मीडिया के वोट्स और ऑनलाइन वोट्स जो है या ऑनलाइन वोट्स जो मिलाकर उस उन 3 आर्टिस्ट को इनफैक्ट एक इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा, और साथ में उन तीनों आर्टिस्ट के गाने जो है ये रोवा ऐप पर भी फीचर होंगे। सो रिमेंबर, जैसे कि मैंने कहा, आप एक बहुत ज़रूरी रोल जो है ये प्ले कर रहे हैं बैकी और बैकयार्ड बीट्स में, क्योंकि आपके वोट्स किन्हीं 3 आर्टिस्ट को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि उनके गाने जो है ये रोवा ऐप पर फीचर होंगे, और साथ में उनको कुछ ना कुछ इनाम जो है ये जीतने का मौका भी मिलेगा।
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, 4 टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Powers through mess with Morning Fresh.
1: You've known us as Fujitsu. We're now General. We've changed our name, but not who we are. Stay warm this winter with this great offer. Right now, when you purchase an eligible General Air Stage heat pump, you'll receive up to $500 cash back. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
2: Get a General.
3: Purchase eligible model by 31 July 26. Claim by 31 August 26. Retain receipts. T's and C's and exclusions apply. See fujitsugeneral.co.nz/promotions.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
6: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
8: तो चलिए रश आवा जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. आप बारी है आज का फ्लाई अवे फ्रेंजी कोड. ये आपके नाम हम करें. फ्लाई अवे फ्रेंजी इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून. अगर मैं आपको एक शॉकिंग खबर दूं तो वो ये कि इसी फ्राइडे को ये खत्म होने वाला है. अभी तक अगर आपने पार्ट नहीं लिया है तो दिस इज द फाइनल वीक फॉर यू टू पार्टिसिपेट. ऑल यू नीड टू डू इज अगर आप जीतना चाहते हैं रिटर्न एयर टिकट टू फीजी एंड एस्केप फ्रॉम यू नो whatever you're doing right now to a place jahan par aap jaakar relax kar sake, white sandy beaches mein enjoy kar sake, crystal clear waters ka vibe jo hai ye enjoy kar sake, pure Fijian culture jo hai ye experience kar sake, aur Fiji aap enjoy kar sake, to this is your chance for a tropical getaway. Kyunki aapko hum de rahe ek mauka to win a return air ticket to Fiji, jiske liye aapko bas flyaway frenzy ke codes par dhyan dena hoga, kyunki har weekday hum aapke liye special code word jo hai ye reveal karte hain. सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच, 11 से 12 के बीच, 1 से 2 के बीच और शाम 5 से 6 के बीच एनी टाइम ये कोड वर्ड्स रिवील होते हैं, जिसके बाद आपको दिया जाता है एक घंटा यानी 60 मिनट्स का टाइम कि आप रोवा पर जाकर ये कोड वर्ड एंटर करें. जैसे आपने कोड वर्ड सुना वैसे एंटर कर दो या फिर विद इन दैट 60 मिनट्स आप कोड वर्ड एंटर कर दो एंड दैट्स इट, यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ. टीज एंड सीज डू अप्लाई, जिसके लिए आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं. और आज का कोड वर्ड ध्यान से सुनिएगा, आज है मंडे 11th ऑफ मई और आज का कोड वर्ड इज Viti Levu. Remember, aaj ka code word is Viti Levu. And how do you spell it? V-I-T-I-L-E-V-U. These are two words, par ise saath mein bola jata hai. Viti Levu. Viti would be V-I-T-I. Levu would be L-E-V-U. Viti Levu दरअसल एक आइलैंड है और फिजी में दो मेजर आइलैंड्स, वैसे तो बहुत छोटे छोटे काफ़ी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन जो दो मेजर आइलैंड्स जो फिजी में है वो है Viti Levu एंड वनवा लेवू. एंड Viti Levu जो है दिस इज़ द आइलैंड जहाँ पर जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न टाउन्स एंड सिटीज़ जो है ये इस आइलैंड पर आपको मिलेंगे, जिनमें there is no sorry suba nendi balo toka singatoka navua and there's so many other places as well jo aapko Viti Levu par milenge, theek hai. So Viti Levu, V-I-T-I is Viti Levu, L-E-V-U, that's the keyword for today. Flyway frenzy ke liye make sure abhi se lekar 60 minutes ka time hai, enter your code words taki aap bhi flyway frenzy mein apna ek winning chance zarur pa sake.
9: What's your take?
8: आज सुबह से जो हाल है मुझे ऐसा लग रहा है व्हाट्स योर टेक में आज वैसे ज्यादा कॉल्स तो आएंगे नहीं, बट आई होप कि आपके कॉल्स आए और आपसे बात करने का मौका जो है जरूर मिले। आज व्हाट्स योर टेक में बहुत सिंपल आपके लिए टॉपिक हम लेकर आए हैं। एक बार किसी ने हमसे कहा था कि फ्लाईवे फ्रेंजी में ऐसे कुछ यू नो टॉपिक्स आप लेकर आओ जो रेलेवेंट हो, लेकिन मुझे हमारे लिए रेलेवेंट हो ऐसा। और उस दिन हमने कुछ ऐसे मस्ती मजाक का कोई एक टॉपिक जो है ये किया था, बट ऑन द अदर हैंड हमारे लिए जो चीज़ रेलेवेंट है ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ प्रोबेबली मेरे लिए रेलेवेंट है, लेट्स पुट इट दैट वे, वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए रेलेवेंट हो। तो आपको क्या करना है, आपको आज के लिए अपना वो एक चीज़ बताना है कॉल करते हुए 0800 800 004 866 पर, जो करेंटली न्यूजीलैंड में हो रहा है एंड इट्स समथिंग दैट्स रेलेवेंट टू यू। जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको उसे फॉलो करने पर मजबूर कर रही है, कोई एक ऐसा न्यूज़ जो शायद आप फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग यूड लाइक टू फाइंड आउट मोर अबाउट, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसे आप फॉलो कर रहे हैं एंड यू फील लाइक कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नो इट इज़ रेलेवेंट टू मी, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो न्यूजीलैंड में हो रही हो, करंटली आपके साथ हो रही हो, इट कुड बी एनीथिंग इन एनी टॉपिक लाइक फ्यूल एंड ऑल। वी अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग लाइक द एंटायर कंट्री इज़ फेसिंग, नॉट जस्ट द कंट्री बट बाकी दुनिया में भी अलग अलग देशों में ये चीज़ फेस की जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड इट कुड बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, लाइक यू फील लाइक कि ये जो ग्रोसरीज है ना, आई एम जस्ट रियली रियली फेसिंग अ हार्ड टाइम क्योंकि इट्स सो एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक कि इट्स समथिंग दैट पीपल शुड रियली टॉक मोर अबाउट। तो आज आप हमें कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपके लिए करंटली रेलेवेंट है, हैपनिंग इन न्यूजीलैंड, इट कुड बी एनीथिंग एंड यू फील लाइक कि दिस इज समथिंग विच बॉदर्स मी अलॉट, विच अफेक्ट्स माई लाइफ, विच इज समथिंग दैट हैज़ गॉट अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ और हैज़ गॉट इवन एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो इसके बारे में आज हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू कीप इट वेरी फ्री वेरी ओपन ताकि आपके लिए जो भी रेलेवेंट है वो आप ज़रूर शेयर कर सकें। गुड मॉर्निंग एफ़ास, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग, अच्छा आप कैसे?
8: एकदम बढ़िया। आप बताइए आज आपके लिए क्या है वो चीज जो करंटली न्यूजीलैंड में हो रही है एंड इट्स रेलेवेंट टू यू।
2: दो चीजें, एक तो फ्यूल प्राइसिंग और सेकंड जो ये नया सिटीजनशिप का आया है उसके लिए।
8: अच्छा, सिटीजनशिप टेस्ट, दैट इज समथिंग दैट यू फील लाइक?
2: यस।
8: ओके,
2: या आई मीन मुझे लगता है कि अगर आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो तो यू आपको पता है कि क्या कल्चर है आपके, आप जो कंट्री में रहते हो।
8: हाँ।
2: तो बेसिकली मेरे लिए वो ये नहीं रख रहा इम्पोर्टेंट इतना।
8: अच्छा, ओके।
2: क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग काफी सालों से भी रह रहे होंगे और सिटीजन है तो इसकी क्या गारंटी उनको भी उतना नॉलेज है।
8: ओके, इंटरेस्टिंग।
2: या
8: ओके, थैंक यू,
2: हैव अ गुड वन।
8: थैंक यू फास्ट, थैंक यू। एंड आपके लिए ऐसा क्या है करंटली हैपनिंग इन न्यूजीलैंड दैट्स रेलेवेंट टू यू? गुड मॉर्निंग।
9: नमस्ते मैडम, कैसे आप?
8: बढ़िया जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
9: जी बिल्कुल अच्छे हैं। एक तो साहब को हमारी तरफ से शुभकामना दीजिएगा ऑन हिज बर्थडे।
8: जी थैंक यू, विल डेफिनेटली डू दैट।
9: दूसरी बात ये कि उन्होंने जो गाना कंपोज किया है बहुत ही अच्छा किया है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज। बहुत ही अच्छा किया।
8: ओके जी,
9: इट इज वेरी गुड। ठीक है, पॉसिबली इट कैन ओनली इम्प्रूव ओवर टाइम।
8: जी ओके, आई लेट हिम नो दैट एज वेल।
9: जी देखिए, सिर्फ एक ही समस्या है जो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के सामने है, वो श्रिंकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
8: हाँ।
9: और उसका जो फॉलोआउट है वो क्या कहाँ तक जाएगा? देखिए, एक तो श्रिंकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंट्री में और दूसरा कपल्ड विद द सिचुएशन इन द वर्ल्ड जो हो रहा है, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एंड इट विल कीप ऑन इम्पैक्टिंग अस, जबकि हम लोग इतनी छोटी इकोनॉमी है, हम लोग छोटे छोटे इम्पीटस से, प्रेशर से परेशान होते हैं। हमारे ऊपर वो बहुत सीरियसली इम्पैक्ट करती है। आज तो मैंने सवेरे न्यूज में देखा, इंडिया जैसे कंट्री में जिनके पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व है, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि उनको भी वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल सेविंग, कार पूलिंग, ये सब करना होगा।
8: अच्छा,
9: तो मतलब मुझको लगता है कि दिस इज थिंग विच आई एम फॉलोइंग अप विद ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट।
8: चलो जी, थैंक यू।
9: बहुत सी चीजों से आप लिंक कर सकते हैं।
8: हाँ जी।
9: कि क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे या नहीं. ये सब बातें बहुत मुझे इंटरेस्ट करती
8: है. ओके जी, चलो जी, थैंक यू जी आपके कॉल के लिए. हैव अ वंडरफुल डे.
9: थैंक यू.
8: 800-004-866 पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं. एंड आज हम बातें कर रहे हैं अबाउट सर्टन थिंग्स हैपनिंग इन न्यूजीलैंड दैट आर रेलेवेंट टू यू. आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ भाई यू नो थोड़ा है मेरे लिए, मुझे काफ़ी कंसर्न करता है. गुड मॉर्निंग. हेलो जी. हेलो, गुड मॉर्निंग.
10: गुड मॉर्निंग पूजा जी, आवाज़ आ रही है?
8: हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है जी, बताइए.
10: जो मेरा आज की डेट में कंसर्न है वो है जी एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो काफी फ्लरिश हो रहे हैं.
8: हाँ जी.
10: ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन द रोड स्ट्रीट, वो एक आई थिंक काफी सीरियस कंसर्न है. तो अगर इसको गवर्नमेंट अच्छी तरह एड्रेस नहीं करती, आई थिंक इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. तो माय बिगेस्ट फियर इज कि ये ज्यादा फ्लेयर कुछ बड़ा हादसा ना बन जाए.
8: ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू आपके कॉल के लिए. क्या नाम बताया आपने अपना?
10: मेरा नाम मनदीप है.
8: मनदीप जी, थैंक यू. आई थिंक आपने एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपने कही है. दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी एड्रेस्ड मोर. थैंक यू सो मच मनदीप, हैव अ वंडरफुल डे. आजकल ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ ज़्यादा ये होने लगा है. एंड द सरप्राइजिंग थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज इट्स नॉट जस्ट इन न्यूजीलैंड, दुनिया भर में पता नहीं क्या ही मतलब हो रहा है कि हर और बस कुछ अलग ही है, इंडियंस के खिलाफ ही हो रहा है. दैट्स व्हाट आई फील लाइक, रेसिज्म बहुत ज़्यादा जो इंडियंस फेस कर रहे हैं इज़ व्हाट आई फील राइट नाउ. ओके, तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन 5599. एक फाइनल कॉल हो जाए. गुड मॉर्निंग जी.
11: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
8: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
11: आई एम गुड.
8: अच्छा, निकिता बोल रही है ना?
11: Yes.
8: हाँ जी, बताइए आपके लिए क्या रेलेवेंट है. आई वुड लव टू नो व्हाट यू फाइंड वेरी लाइक समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू यू राइट नाउ हैपनिंग इन न्यूजीलैंड.
11: आई एग्री विद द लास्ट यूजर, सो लाइक द लास्ट कॉलर.
8: ओके,
11: बिकॉज इन स्कूल लाइक देयर आर सो मेनी पीपल दैट विल बी सो रूड टू अदर इंडियन पीपल. लाइक दे विल गो अप टू पीपल एंड दे विल बी लाइक, ओ यू ईट बटर चिकन, लाइक डोंट यू ईट करी टू. एंड दैट्स, आई फील लाइक दैट्स सो रेसिस्ट. एंड दे विल comment on your hair or your looks or for being like a different skin shade than them. And sometimes I see Indian people doing that to Indian people as well.
8: Yes.
11: And I feel like that's so rude because like you're literally the same race as them. And same with like other people, they also say rude things. And they'll make fun of the other person, but then the other person will like laugh and pretend it like doesn't hurt, but like obviously inside you don't know how they're feeling.
8: Right. That's also a very good point that you've picked here. कि हम खुद में ही मतलब चल रहा है ये अलग ही. Despite being from the same community, हम एक दूसरे के साथ भी ऐसी you know racist चीज़ें कर रहे हैं, which is not nice. And you have seen it, so that means कि आप witness हुई हैं इस चीज़ की, तो आपने देखा हुआ है. That's why you're saying you're not just you know ऐसे ही नहीं बोल रही, हवाबाजी नहीं कर रही आप. So thank you so much निकिता, आपके भी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Wishing you a wonderful day ahead. Enjoy your day. Thank you. राइट, तो 5599 हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है. होप टू रिसीव सम मैसेजेस फ्रॉम योर एंड आज के हमारे व्हाट्स योर टेक के लिए. थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन न्यूजीलैंड एंड यू फाइंड इट कि दिस इज समथिंग दैट आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एंड दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट टू मी एंड इट शुड बी एड्रेस्ड मोर इज व्हाट यू लाइक टू टॉक अबाउट. तो 5599 दैट्स द नंबर जहाँ पर अपने मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं. रीना जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. उन्होंने कहा वेरी नाइस कॉम्पोजिशन बाय विजय एंड हैप्पी बर्थडे विजय. जानना चाहती कि सिंगर कौन है, हैज डन जस्टिस टू द लिरिक्स. तो रीना जी, मुझे खुद नहीं पता कि सिंगर कौन है, वो तो विजय आपके साथ शेयर कर सकते हैं. प्रोबली व्हेन ही इज बैक टुमारो तो आप डेफिनेटली हम कहेंगे उनसे कि वो रिवील करे. पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी और आपका जो बर्थडे विश है ये भी उन तक हम जरूर पहुंचा देंगे.
6: Hollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Accurate traffic.
2: KitchenMania.co.nz.
3: A high of 18, fine with lots of cloud. Southwestern motorway southbound, a crash near Queenstown Road. Very heavy from the tunnel to Onehunga. Southern 40 in from Manukau. Crash at the Papakura on-ramp, blocking a lane. Slow patches from there. Heavy Mount Wellington to Rimuera. Northwestern 37 from Massey. Heavy from there. Northern 30 minutes in from Constellation. Heavy patches, Greville to the bridge.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
4: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
5: Bunnings Traders head up your get set for winter with our new winter workwear range. From trusted trade brands like Hard Yakka and Sitco, you'll find a range of jackets, hoodies and more, so you can keep warm on and off the site. Get set for winter with Bunnings Trade.
6: Spark Satellite, powered by Starlink's satellite-to-mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
7: Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
9: तो हमने आज का जो फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड ये अनाउंस कर दिया है। रिमेम्बर, कोड हमने अनाउंस कर दिया है और आपके पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है। अराउंड 8:20 के अराउंड हमने आज कोडवर्ड जो कि अनाउंस किया, तो 9:20 तक का टाइम आपके पास रहेगा आज का कोडवर्ड जो है ये एंटर करने के लिए। रोवा ऐप पर आपको जाना है या hum.rova.nz पर जाकर कोडवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। रिमेंबर, दिस इज द फाइनल वीक फॉर यू टू टेक पार्ट इन फ्लाईवे फ्रेंजी, जहां पर कोई ना कोई एक रिटर्न एयर टिकट टू फिजी जो है ये जरूर जीत सकता है। कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए हम लेकर आएंगे आज हमारा व्हाट्स गोइंग ऑन, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। क्या बकते हो घंटे की शुरुआत में, तैयार रहेगा इसके लिए। इट्स गोना बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। बट राइट नाउ थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। निकिता और श्रेया, आप दोनों का मैसेज मिला है। जस्ट वॉन्टेड टू से हैप्पी बर्थडे टू विजय अंकल, हैव एन ऑसम डे। थैंक यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे विजय भाई, ये किसी ने मैसेज किया है। डेफिनेटली थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, हम आपके मैसेजेस कन्वे कर देंगे।

0: Meanwhile, WHO Chief Tedros Ghebreyesus says it's not another COVID situation. To sport, a one-wicket defeat for the White Ferns in the first one-day cricket international against host England, pace bowler Rosemary Mears disappointed to be bowled out for 210 in the 49th over, losing their last five wickets for just seven runs.
1: For us, it's after the platform is set, can we finish off the innings and put on a really big total?
0: And New Zealand's Tim Price has recorded his best ever result at the prestigious badminton horse trials in the UK, finishing second.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi
3: hai. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: आज वेदर अपडेट, याद रहे आपको हमने पहले भी बताया है कि बारिश होगी समय समय पर, शाम के समय ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सनसेट तो 5:27 पीएम पर होगा। टेम्परेचर राइट नाउ 15.4 डिग्रीज, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे एंड ओवरनाइट 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा।
3: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो?
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: आज का क्या बकते हो, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अ मैन, इनके बारे में खबर आई है, इनका नाम है एंथनी एकर्स, ये 38 इयर्स ओल्ड है और ही वाज एक्चुअली वांटेड बाय the Department of Corrections for failure to comply. वैसे ये कहानी एग्जैक्टली कहा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, वो मैं खुद भूल गई हूँ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बट एक शख्स जो है इनके बारे में ये है, जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, एंथनी एकर्स। पुलिस के रिकॉर्ड्स में ही वॉज वॉन्टेड और ही वॉज बेसिकली वॉन्टेड बिकॉज ही फेल्ड टू कम्प्लाई विद सम नो थिंग्स दैट ही वॉज सपोज टू गेट डन, बट ही डिडंट डू दैट। एंड ऐसे में इनके बारे में डिटेल्स जो है ये शेयर किए गए पुलिस द्वारा, और इन्होंने इंटरनेट पर इनफैक्ट इनका एक फ़ोटो के साथ ही डिटेल्स जो है ये शेयर किए। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इनके इस डिटेल्स को शेयर करने के बाद बेसिकली ये जो कहानी है, दिस इज़ फ्रॉम साउथ ईस्टर्न वाशिंगटन स्टेट और ये USA में है जहाँ की ये खबर है। सो इनके डिटेल्स ऑनलाइन शेयर करने के बाद ये जो वायरल मोमेंट है वांटेड वेंसडे के तहत, पुलिस रिचलैंड WA पुलिस डिपार्टमेंट के फेसबुक पोस्ट के तहत वांटेड वेंसडे एक स्पेशल सेगमेंट वो डालते अपने सोशल मीडिया पर, इन्होंने जब ये फोटो डाली तो काफ़ी लोगों ने इस पर जाकर कमेंट्स वगैरह जो है ये किए। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस वांटेड गाय हु कुड हैव जस्ट केप्ट थिंग्स क्वाइट क्वाइट, मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो छिपे रह सकते थे, इन्होंने इनफैक्ट पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन को एक जोक और अपोलॉजी का एक पूरा का पूरा सिचुएशन जो इसमें बदल दिया। इनफैक्ट क्या हुआ कि जब ये हुआ, इन्होंने पुलिस ने यहाँ पर जो डिटेल्स जो है ये डाले, उसके बाद जाकर ये शख्स एंथनी जो है उन्होंने जाकर इनके इस पोस्ट पर कॉमेंट किया, और कमेंट करने के बाद रिचलैंड पुलिस ने उनके कमेंट पे जाकर कमेंट किया, थैंक यू टाइंग अप अ कपल लूज एंड सिंस आई विल प्रोबेबली बी इन देयर फॉर अ मंथ, शुड बी इन देयर फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट को जाकर कहा, कमेंट सेक्शन में उनको टैग करते हुए कमेंट कहा कि थैंक यू आपके इस पोस्ट के लिए, मैं 48 आवर्स में अपने आप को हैंड इन कर दूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, अभी कुछ चीज़ें निपटानी, वो निपटाकर 48 आवर्स में मैं अपने आप को हैंड इन कर दूंगा। एंड रिचलैंड पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जाकर कहा कि नहीं नहीं, ये सेम शख्स नहीं हो सकते जिन्होंने कमेंट किया। उसके बाद कुछ और लोगों ने कहा कि प्रॉब्ली ये वही है, एंड अपेरेंटली द गाय वेंट अहेड एंड ही कमेंटेड कि यस इट इज़ मी, मैं ही हूँ और मैं अपने आप को 48 आवर्स में आपको हैंड इन कर दूंगा, आई विल सरेंडर, मुझे बस कुछ काम निपटाने हैं, उनको निपटाकर आई विल कम डाउन। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आफ्टर दैट पुलिस ने एक पोस्ट जाकर मंडे को वापस से अपडेट किया, फॉलोइंग मंडे को, डियर एंथनी इज़ इट अस, लास्ट वेंसडे वी रीच्ड आउट टू यू एज वांटेड एंड यू रिप्लाइड, यू इवन सेड यू आर गोइंग टू टर्न योर सेल्फ इन, we waited but you didn't show up, after you stood us up we reached out again, this time offering you a ride, you replied and you said you needed 48 hours, the weekend came and went, we are beginning to think you are not coming, please call us anytime and we will come to you. Fir unhone apna number jo hai ye share kiya एंड फिर बाद में जाकर एंथनी ने फिर उनको रिप्लाई किया और फिर बाद में एंथनी ने क्या किया, जब वो पुलिस डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में पहुंच गए थे, जिस पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में ये वांटेड थे, उस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद इन्होंने एलिवेटर से अपनी सेल्फी ली और उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर सेल्फी पोस्ट की और कमेंट लिखा, हियर फॉर आवर डेट स्वीट हार्ट। कैन एनीवन इवन इमेजिन कि ऐसा एक सिचुएशन हो, एक शख्स वांटेड हो एक पर्टिकुलर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ऑफ अ कंट्री ऑफ अ स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, एंड वो शख्स जाकर वांटेड वाले पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बताए कि मैं 48 आवर्स में आ जाऊंगा, कुछ काम निपटाने हैं। पुलिस उसका इंतज़ार करे 48 आवर्स की बातों पर विश्वास कर कि वो हैंड इन कर देंगे, फिर वीकेंड के बाद वापस पोस्ट करें कि यार तुमने वादा किया था, तुमने वादा पूरा नहीं किया, अभी हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आना हो बता दो, हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद में वो वांटेड शख्स अपनी सेल्फी डालकर बोले कि आई एम हियर। आई मीन आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, इट एक्चुअली हैपेंड बाय द वे।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: व्हाट्सएप ऑकलैंड में चलिए जानते हैं क्या कुछ होने वाले हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में। सबसे पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि दिस वीकेंड इनफैक्ट ऑन सैटरडे 16th ऑफ मई मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वॉकारी प्लेस मैंगली यहां पर शाम 4:30 यानी 4:30 PM से लेकर रात 8:30 यानी 8:30 PM तक एक बहुत ही स्पेशल रिमेम्बरेंस डे जो है ये मार्क किया जाएगा। 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे जो है एन इवनिंग ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉग्निशन ये रहेगा ऑल थैंक्स टू फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड जो कि आपके लिए से लेकर आ रहे हैं। 4:30 से ये शुरू होने वाला है लेकिन 4 PM द डोर्स विल ओपन जहां पर देयर इज अ चांस फॉर यू टू डू योर नेटवर्किंग टी एंड स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड एंड शार्प 4:30 PM द प्रोग्राम विल स्टार्ट। एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है। यहां पर कैंडल कमेमोरेशन होगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले किए जाएंगे, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड दिया जाएगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत सारे रहेंगे और साथ में जो लाइव सिंगिंग है ये होगी, रोल प्लेज रहेंगे काफी जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्विज रहेंगे, ऑन स्पॉट प्राइजेस जीतने के मौके और स्पीचेस वगैरह भी यहां पर रहेंगे वेल रिनाउंड लोगों द्वारा ऑफ द फिजी इंडियन कम्युनिटी। एंड जो फिजी गिरमिट रिमेम्बरेंस डे है, सॉरी 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे है, अगर आपको गिरमिट दिवस के बारे में नहीं पता, गिरमिट क्या होता है नहीं पता, फिजी में जो फिजी इंडियंस है इनका इतिहास क्या है ये नहीं पता, सो दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट जिसका हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज़ समथिंग आई लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, अगर आपके बच्चों की पैदाइश यहाँ न्यूजीलैंड में हुई है, वो यहाँ पर पले बड़े हैं लेकिन उनकी जड़ें यानी कि आप और आपके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं ये सब फिजी से हैं, उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई है, अगर जो यू वांट योर किड्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ देयर ओन पीपल देयर एंसेस्टर्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट है जहाँ पर आप अपने बच्चों को भी ज़रूर लेकर जा सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली लर्न अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट गिरमिट और गिरमिट दिवस एज वेल। ये इसी सैटरडे को रहेगा, रिमेंबर 16th of May को, तो आप ज़रूर इसका हिस्सा बन सकते हैं। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट भोजन मेला यानी फूड कार्निवल ये लेकर आ रहे हैं। ये संडे 17th of May को दिन में 11 से शाम 4 बजे तक रहेगा। यहाँ पर एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, आपके लिए फ्री में जो ड्रिंक्स है और खाना पीना ये भी रहेगा। 378 अररिमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड, इसके लिए आप जा सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर जो भोजन मेला ये किया जा रहा है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल प्रोजेक्ट है इसके लिए। यहाँ पर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स रहेंगे जिसमें आप जाकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, यू कैन हैव अ गुड फैमिली टाइम एज वेल। अगर आपको मेहंदी पसंद है तो यहाँ पर बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे। बच्चों के लिए फेस पेंटिंग और बाउंसी कासल का भी बंदोबस्त किया गया है, तो ये आपके बच्चे ज़रूर इंजॉय करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें 23rd of May विच इज़ नेक्स्ट वीक सैटरडे को वाइब मिक्स इवेंट्स लेकर आ रहे हैं द ग्रैंड मस्ती नाइट। 23rd May को नेटबॉल हॉल मनोरेवा में ये रहेगा और जो ग्रैंड मस्ती नाइट है ये आपके लिए है। अगर आप फिजी से बिलोंग करते हैं दिस इज समथिंग यू कैन बी पार्ट ऑफ एंड यू कैन सेलिब्रेट, क्योंकि फिजी से बहुत जाने माने जो रेडियो पर्सनैलिटीज़ हैं SN यानी सत्यानंद और साथ में जय भैया जी ये आ रहे हैं। एंड पहले फिजी में काफ़ी जाने माने रेडियो अनाउंसर थे लेकिन अब न्यूजीलैंड में निवास करते हैं और यहाँ पर भी आपने इनको बहुत बार देखा है सुना होगा, राउडी नमन, ये तीन आपको एंटरटेन करने के लिए एकदम तैयार है वाइब मिक्स इवेंट्स के ग्रैंड मस्ती नाइट के तहत। डोंट फॉरगेट यहाँ पर डांसिंग लेजेंड चरफर जो है आफ्टर 17 इयर्स न्यूजीलैंड आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और बहुत सारे स्किट्स रहेंगे, बहुत सारा कॉमेडी डांस एंड बेसिक फुल ऑन मस्ती एंड मैडनेस ये स्टेज पर आप एक्सपीरियंस करेंगे। ड्यूअल वॉइस सिंगर जो कि बोथ मेल एंड फीमेल की आवाज़ों में गा सकते हैं मनी डिसूजा ये यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, प्लस मोंटो मोनिका अ वेरी वेल नोन डांसर इन द कम्युनिटी ये डांस परफॉर्मेंस अपना लेकर आएंगे और युवा डांस ग्रुप इनका भी परफॉर्मेंस रहेगा। बहुत सारे जाने माने डीजेज ऑफ न्यूजीलैंड आपके लिए यहां पर लाइव डीजे परफॉर्मेंसेस भी लेकर आएंगे और हमारे अपने केतन जो कि आपके लिए लंच बॉक्स का सफर लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे मिडडे से लेकर शाम 3 बजे तक, ये भी यहां पर अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपके लिए कुछ गाने जो है ये गुनगुनाने वाले हैं। बाय द वे आप इस इवेंट का हिस्सा बनते हुए बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, बहुत सारे गिव अवेज होंगे जिनमें मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के वाउचर्स रहेंगे, रॉयल गोल्ड के हैम्पर पैक्स रहेंगे, ग्रीन हॉर्न के गिफ्ट हैम्पर्स रहेंगे और विकेट चिकन बोटनी डाउन्स के ओर से कुछ फूड वाउचर्स जो है ये भी आप यहां पर जीत सकते हैं ऑन द नाइट। पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री और खूब सिक्योरिटी वगैरह भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और ऑन साइट यहाँ पर फूड एंड लिकर वगैरह भी आप परचेज कर सकेंगे. बट डोंट फॉरगेट टिकट्स जो है ये आपके लिए अवेलेबल है हंटर्स फूड टाउन पापटोई टोए जेस फ्रेश मार्ट पापटोई टोए गेट फ्रेश सुपर मार्केट मैंगरी कैसे एंड ब्यूटी सलून मनुरेवा जो साउथ मोल ब्रांच है यहाँ पर और विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलून केविन डिश ड्राइव यहाँ पर आपके लिए टिकट्स है. सो लिमिटेड टिकट्स है. इनफैक्ट यू हैव टू हरी इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रैंड मस्ती नाइट हैपनिंग नेक्स्ट वीक सैटरडे.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
4: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: फॉर्च्यून की ओर से द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आप एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे में साथ हमारा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जहां कहीं भी आप हैं. आप ऑन द ब्रेकफास्ट शो अगर हमारे साथ फिलहाल शामिल हैं, आपके समय के लिए, आपके साथ के लिए थैंक यू सो वेरी मच. रिमेंबर कि आपके लिए वैसे हमारे बाकी साथी भी बड़े कमाल के प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं दैट यू कैन डेफिनेटली एंजॉय. अभी ब्रेकफास्ट के बाद 10 से 12 के बीच काशिका जी आ जाएंगी माई टाइम लेकर और 12 से शाम 3 बजे तक आपका साथ देंगे केतन लंच बॉक्स के साथ. 3 से 4 सैंडी का साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में एंड देन स्टार्ट्स द फन फ्रॉम 4 PM to 7. आपके लिए सैंडी एंड रोज भी द ड्राइव शो लेकर आने वाले हैं. 7 to 8 आप एंजॉय कर सकते हैं आज एक बहुत ही रिलैक्स्ड हैप्पी आवर जस्ट बैक टू बैक म्यूजिक और फिर उसके बाद रात 8 बजे से आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे हमारे साथ ही इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक टुनाइट इज कृष्णील जो आपका साथ देने वाले हैं और नो लॉजिक मंडे ये आपके लिए लेकर आएंगे 1 घंटे 8 से 9. आप नो लॉजिक मंडे में कुछ कमाल के कंटेंट और गाने जो है इसका मजा लीजिए और फिर उसके बाद आपके लिए कमाल की म्यूजिक ये आपके लिए लेकर आएंगे. बाय द वे एंजॉय करते रहिएगा हमारे साथ हम पर हमारे सभी साथियों का साथ जो आपके लिए अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम्स में रहता है. इनफैक्ट एक और एक इवेंट के बारे में वेरी क्विकली मैं आपको बता दें काउंटीज मैनिकाओ पुलिस जो है ये इवेंट लेकर आ रहे हैं एंड इट इज़ बेसिकली द अपकमिंग सेफ अप लाइट्स इवेंट. पापाकुरा इलाके में अगर आप रहते हैं तो दिस स्पेशली फॉर यू बिकॉज दे आर डूइंग इट एट न्यू वर्ल्ड पापाकुरा और ये रहेगा कल यानी ट्यूजडे 12 मई को दिन में 10 से लेकर 11:30 AM तक 10 AM to 11:30 AM जहाँ पर यू कैन गो एंड चेक कि क्या आपके नंबर प्लेट्स जो है ये सेफ है या नहीं बिकॉज यू कैन स्टॉप द थेफ्ट ऑफ योर नंबर प्लेट्स. अ लॉट ऑफ नंबर प्लेट्स आर बींग stolen and they are being used in petrol drive-offs. यहाँ तक कि बहुत सारे अन्य criminal activities में भी इसका इस्तेमाल होता है. petrol drive-off मतलब कि लोग जा रहे हैं petrol भरवा रहे हैं और बिना पैसे दिए फरार हो रहे हैं. गाड़ी अपनी खुद की गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं लेकिन नंबर प्लेट आपकी गाड़ी का हो सकता है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं एंड बहुत सारे अन्य जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है इसमें भी लोग अब नंबर प्लेट्स जो है ये चोरी कर कर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू कैन गेट योर नंबर प्लेट स्क्रूज रिप्लेस्ड विथ टेम्पर प्रूफ वंस. ये बिल्कुल फ्री है तो ये रहेगा कल 10 AM to 11:30 AM न्यू वर्ल्ड पापाकुरा. याद रहे पापाकुरा जो है अगर इस इलाके में आप रहते हैं दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट डन और गेट चेक्ड. एंड बाय द वे यहाँ पर जो प्लंकेट न्यूजीलैंड की टीम ये भी मौजूद रहेंगे अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं कार सीट्स का इस्तेमाल करते हैं आप उनके लिए तो ये कार सीट चेक्स जो है आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में ये भी कर सकते हैं यू कैन गेट दैट डन एज वेल. फिलहाल 26 मिनट्स आफ्टर 9 फॉर नाउ वाइब मिक्स इवेंट्स का जो ग्रैंड मस्ती नाइट है इसके बारे में तो आपने सुना हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया. वुड यू लाइक टू अटेंड द इवेंट इट्स हैपनिंग नेक्स्ट वीक सैटरडे नॉट ट्यूजडे नेक्स्ट वीक सैटरडे को हो रहा है ये एंड इफ़ यू वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रैंड मस्ती नाइट जहाँ पर इतने सारे कमाल के लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और आपके एंटरटेनमेंट का भरपूर ख्याल रखा जाएगा तो वहीं पर बहुत सारे इनाम भी जीतने के मौके हैं आपके पास. अगर आप द ग्रैंड मस्ती नाइट अटेंड करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी आपके पास अब है हम आपको एक डबल पास जीतने का मौका देंगे. इनफैक्ट आप हमारे साथ अभी से लेकर टिल द इवेंट एवरी वीकडे एक डबल पास तो जीत ही सकते हैं. इसे जीतने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है और वो है ये कि आपको बस BF लिखना है यानी ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म अपना नाम लिखना है और 5599 पर भेज देना है. राइट BF योर नेम एंड सेंड इट ऑन 5599 इफ यू वांट टू विन अ डबल पास टू द ग्रैंड मस्ती नाइट हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे और आपका नाम ड्रो में हम जरूर शामिल करेंगे और आज ड्राइव शो में आप जरूर पता कर सकते हैं कि क्या आप विजेता हुए हैं या नहीं.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
2: गुंडी खड़गाओ या सीधा अंदर आओ
3: मैं लाऊं अपना ए गेम
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

तो श्रेया घोषाल और साथ में वैशाली माहड़े, इनकी आवाजों में हम आपके लिए गाना लेकर आ रहे थे फ्रॉम द फिल्म बाजीराव मस्तानी. और उम्मीद है यू एंजॉयड द सॉन्ग. इट्स 24 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 फॉर नाउ. वैसे इस साल फीफा वर्ल्ड कप अगर देखा जाए फ्रॉम जून 11th टू जुलाई 19th, इस दौरान ये रहेगा और इसे जॉइंटली होस्ट किया जा रहा है बाई कैनेडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. कमाल की बात ये है कि इसे टोटल 16 डिफरेंट सिटीज में जो है ये रखा जाएगा. द ओपनिंग सेरेमनी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये रहेगा इन टोरंटो. सो द ओपनिंग सेरेमनी फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये रहेगा टोरंटो में. और कमाल की बात ये है कि दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. फीफा वर्ल्ड कप इज वेरी बिग. चार सालों में एक बार खेला जाता है और बहुत से ऐसे अमेजिंग प्लेयर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कंट्रीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़. और कुछ ऐसे भी यू नो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स फीफा के दौरान आई हैव विटनेस, जहां पर सम ऑफ द प्लेयर्स आर यू नो प्लेइंग द फाइनल मैच ऑफ देयर लाइफ बिकॉज आफ्टर दैट मैच दे आर रिटायरिंग. एंड दैट urge or that wish to win wo pura nahi hota hai, and then they are so heartbroken. Like so many historical and beautiful things have happened and emotional things have happened during FIFA World Cup alag alag saal mein jo hue hai. So remember FIFA World Cup 2026 ye to rahega June 11th se lekar 19th of July tak. Aur opening ceremony jaise ki maine kaha, since it's happening in Toronto in Canada, to kamal ki baat ye hai Nora Fatihi yahan par perform karne wali hain. She's gonna dance and sing, and opening ceremony में ये इनका performance जो है ये रहेगा. There's some other artists जो कि यहाँ पर रहेंगे, music icons like Anita, Future, Katy Perry, Lisa, Rema and Tyler जो है ये भी perform करेंगे, और उनके साथ Nora Fatehi भी यहाँ पर perform करने वाली है opening ceremony के दौरान. तो इनके लिए तो बहुत बड़ा achievement भी है ये. इन अ वे देखा जाए global stage पर इनको बहुत बार perform करने का मौका मिला है, but being part of such an internationally celebrated टूर्नामेंट जो है इसका हिस्सा बनने का ये पहला मौका है. एंड शी हैज शेयर्ड द इन्फॉर्मेशन एज वेल, वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड उनके फैंस भी डेफिनेटली बहुत बहुत खुश होंगे. सो और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है ये आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे आने वाले दिनों में वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट्स. बट राइट नाउ जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच. सलमा, अभिषेक, कौशिक, प्रतीका चंद, सतीश एंड कमल लता जी, आपके भी मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Joe's Supermart uses fiber for their payment systems, while staff secretly use fiber to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says New Zealand runs on fiber.
2: So you're trying to eat less meat? But you know Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: We gotta go to the boat show.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: What's going on?
8: What's going on? चलिए जान लेते हैं। There are so many things जो पिछले एक घंटे के अंदर अंदर हुई हैं, I mean हुई तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में अपडेट्स जो है ये आई है जो आपके साथ हम जरूर शेयर करना चाहते हैं। विदिन एन आवर इतनी सारी चीज़ें जो है इनके बारे में अपडेट्स जो सामने आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये आपके साथ हम जरूर बांट लें। न्यूजीलैंड के जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट MBIE, इन्होंने पूछा है whether public servants should work from home more often to help reduce fuel use during fuel supply concerns. However, जो Public Service Commission है, इन्होंने कहा है कि increasing work from home arrangements would probably not make a difference to fuel demand or fuel prices. और जो Commission है, इन्होंने advice किया है कि government departments do continue following their current flexible working rules. It is also said important public services still need staff on site. और जो Public Service Association है, उन्होंने इस बात से disagree किया है, saying working from home could help save fuel and also reduce travel costs for workers during cost of living crisis. MBIE का कहना है कि it only asked for advice because National Fuel Plan जो है ये list करता है working from home as one possible way to reduce fuel demand during जो shortage जो भी face किया जा रहा है. At the moment government कोई भी plan नहीं change कर रहे, they're not changing work from home policies, लेकिन officials कह रहे हैं they may review the situation अगर fuel supply problems जो है ये और ख़राब हो जाते हैं आने वाले दिनों में। दूसरी ओर इस बढ़ते वॉर को लेकर जो यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है, इसकी वजह से ऑफकोर्स ऑयल प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड ये बढ़ रहे हैं एंड इट इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड, इट इज़ अफेक्टिंग द पीपल इन न्यूजीलैंड एज वेल। जेरेड केयर जो कि जिनका कहना है कि हायर ऑयल प्राइसेस जो है इसका मतलब होता है गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, पेट्रोल और एक्सपेंसिव हो रहा है। दिस हिट्स द पुअर फैमिलीज द हार्डेस्ट और इसकी वजह से दे स्पेंड अ बिगर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन फ्यूल, फूड एंड बेसिक लिविंग कॉस्ट्स। इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जिसमें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड कॉस्ट जो है जो ऑलरेडी हाई है उसकी वजह से भी और कॉस्ट बढ़ रहे हैं, रेट्स, इंश्योरेंस, फूड, ये सब कुछ इसका कॉस्ट जो है ये बढ़ रहा है और पीपल आर स्पेंडिंग लेस एंड बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग। हाउसिंग मार्केट वगैरह जो है इट मे रिकवरी मे रिकवर सून, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ये होगा। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि क्या रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट्स के साथ यानी कि OCR के साथ कुछ चेंजेस अभी करने चाहिए या नहीं। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि रेट्स शुड स्टे द सेम फॉर नाउ। कुछ का ये मानना है अ राइज कुड कम अराउंड जुलाई और कुछ का ये कहना है अ फ्यू इनफैक्ट ये मानते हैं कि रेट इंक्रीज कुड मेक लिविंग कॉस्ट वर्स। आई थिंक ये फ्यू का नहीं, बहुत से लोगों की राय है कि अगर जो OCR बढ़ते रहे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस न्यूजीलैंड में रह रहे लोगों के लिए और ख़राब हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ग्लोबल टेंशन फिलहाल मार्केट्स को अनस्टेबल बना रहा है, बट अदर्स आर सरप्राइज दैट स्टॉक मार्केट्स आर स्टिल डूइंग वेल। तो लेट्स सी क्या इससे कुछ प्रॉब्लम न्यूजीलैंड में और फेस किया जाएगा या नहीं। आने वाले दिनों में डिटेल्स आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे।

0: You know, दो बातों में आई एम नॉट रियली गुड. आई लव लिसनिंग टू दो बातें बिकॉज इतनी इंस्पिरेशनल होती है और सच में आपको कुछ चीज़ों के बारे में सोचने पर यू नो काफ़ी मजबूर कर देती है टू मेक सम गुड इम्प्लीमेंट्स एंड चेंजेस इन योर लाइफ टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. और आई लव लिसनिंग टू, जैसे कि मैंने कहा, बट वेन इट कम्स टू सेइंग इट या फिर आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढ कर लाना मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है. तो आज क्या है ना, मैं थोड़ी फिल्मी भी हूँ तो आई विल गो विथ समथिंग जो एक फिल्म की लाइन है, डायलॉग है बेसिकली. और आई केम अक्रॉस दिस रिसेंटली, मैंने ये फिल्म वापस से देखी 1972 में ये फिल्म आई थी, लेकिन 1966 में एक कहानी है, नॉन हिंदी कहानी है ये, इसके ऊपर बेस्ड थी. इट वॉज बेसिकली अ बंगाली फिल्म और उसका ये हिंदी रीमेक था. तो 1972 हैज़ बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लेकिन सबक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जो है उस ज़माने में दी जाती थी. और ये डायलॉग जो है, ये फिल्म बावर्ची से है. अगर आपने 1972 की फिल्म बावर्ची देखी है, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी और डायलॉग लिखा था गुलजार साहब ने. द डायलॉग विच स्टूड आउट फ्रॉम दिस मूवी वॉज, इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट सो हार्ड टू बी सिंपल. It is so simple to be happy, but so hard to be simple. मतलब खुश रहना इतना आसान है, लेकिन मतलब सिंपल है, ईजी है, लेकिन लाइफ में ईजी होना, सिंपल होना बहुत मुश्किल है. तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की इस बात से कुछ आपको सोचने को मिले, समझने को मिले, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में इम्प्लीमेंट करने को मिले. और इन्हीं बातों के साथ आपसे अब हम चाहेंगे इजाज़त जाने की. अपना और अपना का ख्याल रखिएगा. बाकी का सफर काशिका जी के साथ माई टाइम में तय कीजिएगा. हमारी आपकी मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर. टेक केयर, हैव फन.
1: चक दे सारे गम, चक दे तेरे संग है हम.

मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: ice and is crediting his 17-year-old horse Falco for completing a clean final show jumping round.
1: He was fantastic today. A great way to finish. He jumped round like a springbok. So what more could you ask for?
0: And the Tactics are second on the ANZ Premiership netball ladder after a hard-fought 52-50 win over the Stars in Christchurch.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Droskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: The highs of 18 overnight temperature of 18 आज का forecast बताया जा रहा है. कुछ showers सुबह के समय जरूर पड़ी हैं. एक patchy shower का area जो है वो शाम को दिख रहा है समय. और southwest की हवाएं धीरे-धीरे कम होती चली जा रही हैं. It feels like 16 degrees, 527 पर sunset बताया गया है.
3: Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
5: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रही है
2: My Time with Kashika.
4: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? एंड मंडे का दिन है और इस मूडी से मंडे के दिन आपका साथ निभाने के लिए, आपके मूड को बदलने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ बार बार आपके लिए एक ही बात लेकर, एक ही पैगाम लेकर कि समय की कीमत समझ लो. टाइम इज मनी. क्योंकि ये समय आपको हर वीकेंड पे अपने लिए जब मिलता है उसे आप अच्छी तरह गुजारना जानते हैं कि नहीं जानते हैं. आई एम श्योर फ्राइडे के दिन जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकाल लेना. तो क्या तुमने अपने लिए समय निकाला? देखो लेफ्ट राइट वहाँ वहाँ मत ढूंढो अपने आप को कि बताने के लिए कि नहीं निकाला. अच्छा निकाला तो ऑफकोर्स यूल से हाँ काशिका मैंने अपने लिए टाइम निकाला. भाई इसी नोट पर कि आपको थोड़ा सा गिल्ट, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आ चुकी हूँ यही बताने के लिए कि योर टाइम, योर मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू रिजुविनेट यू. रिफ्रेश होकर आप जब आते हैं तो समझ लीजिए मंडे के दिन आप अपनी मुस्कान फैलाते और वो मूडी मंडे को आप एक अच्छा सा ज़बरदस्त मंडे बना देते हैं, मार्वलस मंडे बना देते हैं. चलो इसी रोड पे कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माई टाइम मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान मैं काशिका लेकर आती हूँ और आपके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ. हमारा एक्सपर्ट अड्डा आज लीगल एसोसिएट्स की टीम से. देखते हैं कौन आता है. कोई सवाल है तो 5599 पे आप मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हैं. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू गिव अ क्यूट डेडिकेशन टू नन अदर, जिनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ. इनकी पेशेंस, इनका क्रिएटिविटी, इनका प्यार, इनका एक्चुअली द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही हैंडल्स अस ऑल इज फैंटास्टिक. विजय वर्मा जी, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आर कॉन्टेंट डायरेक्टर. सो इनका जन्मदिन है. क्या आपका जन्मदिन इनके साथ है आज? तो आपको भी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.
3: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा। आज वैसे एक्सपर्ट अड्डा में आपका सवाल आया है एंड आपका लास्ट डिजिट है 1336 एंड मेरे साथ हो चुके हैं राज जी, बिकॉज राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स हमेशा हर मंडे के दिन हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर हमारे लिए वक्त निकालते हैं। एंड सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सर?
1: नमस्कार कशिका जी, नमस्कार टू ऑल HMFM लिसनर्स एंड आई एम डूइंग गुड।
0: सर मेरे पास जो टेक्स्ट आया है उन्होंने कहा है अगस्त में शायद कुछ रेजिडेंस के लिए रूल चेंज हो रहा है, आपको कुछ पता
1: बिल्कुल,
0: है? आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा। हाँ। तो कुछ इसके बारे में बताइए।
1: करेक्ट आपके साथ ही हमने कई प्रोग्राम इसमें किए थे इवन लास्ट ईयर भी, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर में जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन उसने अनाउंस किया था कि भी अब ये जो चेंजेस हैं स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उनको मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेंजेस है ना, इसकी भी डेट इन्होंने बता रखी है, ये चेंज आएंगे 24 अगस्त 2026 को।
0: ओके,
1: तो 24 अगस्त को ये चेंजेस आ रहे हैं। इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, एक तो यही है कि जो भी 6 पॉइंट का स्किल्ड माइग्रेशन जो चल रहा है इसके अंदर जो मास्टर डिग्री है, सबसे बड़ी बात वो लोग हैं जिन लोगों ने न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री की हुई है, वो लोग इसका वेट कर रहे हैं कि हमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, सिर्फ स्किल्ड जॉब एंड मिडन वेज एंड दे कैन सबमिट देयर रेजिडेंस एप्लीकेशन। और भी वो लोग हैं जो लोग जैसे बैचुलर डिग्री वाले हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में बैचुलर डिग्री की हुई है या ओवरसीज की बैचुलर डिग्री है या ओवरसीज की मास्टर डिग्री है, तो उनका भी जो वर्क एक्सपीरियंस है ये इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया है
0: जी।
1: इसके अंदर क्या किया है, अगर आपकी न्यूजीलैंड की, जैसे मैंने बताया कि अभी न्यूजीलैंड मास्टर डिग्री है तो स्ट्रेट अवे यू कैन अप्लाई, अगर आपकी ओवरसीज की मास्टर डिग्री है तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस के साथ यू कैन अप्लाई, रेजिडेंस वीजा यू कैन सबमिट, और अगर आपकी न्यूजीलैंड की बैचलर डिग्री है तो भी आपको सिर्फ 1 साल का ही वेट करना है, यू कैन अप्लाई। पहले इसमें 3 साल का वेट था। जो दूसरा ओवरसीज की जो बैचलर डिग्री है से फ्रॉम इंडिया और फिजी, तो फिर आपको सिर्फ अब 1.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड यू कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा। तो ये डिफरेंट क्वालिफिकेशन के डिफरेंट टाइम पीरियड है, बट ऑफकोर्स मेन पॉइंट है इनका कि आपके पास स्किल्ड ऑक्यूपेशन होना चाहिए एंड मिडन वेज के साथ होना चाहिए। इसके साथ में और ऑप्शन आ रही है, वो आ रही है जो अपना जो ट्रेड एंड टेक्नीशियन का पाथवे कंफर्म किया है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस कि अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास जैसे 2.5 साल का ओवरसीज का है, न्यूजीलैंड में अगर आपने 1.5 साल काम किया है विद लेवल फोर की क्वालिफिकेशन के साथ यू कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा। तो इसके अंदर बैचलर या मास्टर डिग्री का कोई पॉइंट्स नहीं है, ये डिफरेंट पाथवे है।
0: ओके,
1: इसके साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखो हर किसी के पास, कशिका जी आपको पता, मास्टर डिग्री नहीं होती या बैचलर डिग्री नहीं होती। बहुत से हमारे लोग हैं, कम्युनिटी है कि जिन्होंने +2 +10 जो भी कुछ किया उसके बाद उन्होंने अपना जो करियर पाथ है वो स्टार्ट कर दिया डिफरेंट वे में, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री है, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, टूरिज्म है उसमें। तो उसके अंदर इन्होंने 2 लिस्ट की है, एक रेड लिस्ट है एक एम्बर लिस्ट है। तो जो एम्बर लिस्ट पहले बता दूं, क्योंकि ये 5 साल के अंदर वर्क एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड का होगा और उसके अंदर जो लास्ट के 2 ईयर्स है न्यूजीलैंड में 1.2 टाइम्स ऑफ मिडन वेज इनको मिलना चाहिए। जैसे करंटली $35 है तो $42 पर आवर के हिसाब से दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा। और एम्बर लिस्ट की ऑक्यूपेशन है जैसे होटल मोटल मैनेजर है, होटल सर्विसेज मैनेजर है, कैफे रेस्टोरेंट मैनेजर है, बेकर है, शेफ है, पेस्ट्री कुक है, कस्टमर सर्विस मैनेजर है, या आईटी के भी हैं उसमें ऑक्यूपेशन, आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन या आईटी कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर या वेब एडमिनिस्ट्रेटर। और जो दूसरी रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट का मतलब ये है कि भी, क्योंकि जो एम्बर लिस्ट है अगेन इसके अंदर आपको कोई बैचलर डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस सो यू कैन क्वालिफाई। रेड लिस्ट का मतलब ये है कि भी आपको सिर्फ स्किल्ड माइग्रेशन लाइक 6 पॉइंट के अंदर ही आपको वो रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हो। इट मींस आपको बैचलर डिग्री इसके अंदर जरूर चाहिए काम करने के लिए। तो रेड लिस्ट में है ऐसे रिटेल मैनेजर है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, मसाज थेरेपिस्ट है, हेयर ड्रेसर है, हॉस्पिटलिटी या सर्विस मैनेजर है इसके अंदर। तो इन लोगों को सिर्फ स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और इनके पास जो स्टार्ट हो रहा है वो पाथवे रेजिडेंस, उसके अंदर ओवरसीज की क्वालिफिकेशन, उसके अंदर भी 5 साल का एक्सपीरियंस है बिना बैचलर डिग्री के, 3 ईयर्स इट कैन बी ओवरसीज, लाइक जैसे एम्बरलिस्ट में है, तो जितने ऑक्यूपेशन मैंने आपको एम्बरलिस्ट के बताया, अकोमोडेशन रिलेटेड है, फूड सर्विसेज से रिलेटेड है, या आईसीटी के रोल है, तो इसके एम्बरलिस्ट के अंदर आप 3 साल ओवरसीज एंड देन 2 साल आप न्यूजीलैंड के अंदर 1.10 times. और एम्बरलिस्ट इज अंडर 20, जो दूसरा रेजिडेंस पाथवे है, जो ना जो ऑक्यूपेशन रेड लिस्ट में है, जो ऑक्यूपेशन एम्बरलिस्ट में है, जो बचे हुए ऑक्यूपेशन है उसके अंदर, देन यू कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा बेस्ड ऑन 1.10 times ऑफ योर रेजिडेंस वीजा. इसके साथ में और बहुत सारी,
0: आई एम श्योर वो तो चलता रहेगा. हाँ, बिल्कुल, टाइम कम होता है हमारे पास.
1: जैसे ग्रीन लिस्ट है, वर्क टू रेजिडेंस है, बट दैट्स फाइन. एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड इवन व्हाइल आई वाज यू नो एक्सप्लेनिंग दिस ऑल डिफरेंट रेजिडेंस ऑप्शंस, पीपल मे हैव गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के अंदर एक दूसरे के ओवरलैप हो गया है. ये 1.10 times किसका रेट होगा, क्या ऑक्यूपेशन होगा, 1.20 times जैसे एम्बर लिस्ट है, फिर रेड लिस्ट में स्किल्ड माइग्रेशन की ऑप्शन है, तो पीपल गेट देयर केस बाय केस. तो उसके लिए अगेन एज यू नो कि उनको हमारे साथ अपना केस असेस कराना पड़ेगा, देन इट विल बी बेटर, सो वी कैन गाइड देम हाउ टू गेट रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड. और जैसे आपको बता, ऑगस्ट इज नॉट दैट फार, सो दे नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रेजिडेंस वीजा नाउ.
0: Awesome. And the number to give a call is 09279-9439. Aap Legal Associates, Papa Toyota ya Hamilton bhi pahunch sakte hain. Inki website legalassociates.co.nz par bhi ja sakte hain. Thank you so much, Raj ji. Agle hafte aap se phir mulaqat hoti hai. Namaskar.
1: Thanks a lot, Kashika ji. Have a good day.
0: Bye-bye. My time with Kashika.
2: Aajkal chal raha hai bahut news mein. Aap hi to nahi.
0: थोड़ी देर बाद हम ऑफिस शाउटआउट के लिए एंट्री ले रहे हैं अभी, तो बता दीजिएगा अगर आप में से कोई भी किसी ऑफिस से अगर हमें सुन रहे हैं तो 5599 पे टेक्स्ट करें, 0800 00 हम पर कॉल करें.
3: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
4: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM. हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड. यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी, ओनली ऑन हम ऑन रोवा. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
11: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
12: Join the great big balance check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card, only at New World. T's and C's apply.

0: जब मैं बात कर रही हूँ कि ऑफिस में आप क्या कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत कुछ हम सुनने के अलावा आप, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये गाने आपके लिए प्ले करते हैं ना, तो ये गाने जो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगने लग जाते हैं, कानों को अच्छे लगते हैं, जैसा डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं गाने सुनते सुनते. बट दिस इज़ द टाइम वन आई एम कॉलिंग आउट एनी वन ऑफ यू लिसनिंग राइट नाउ, चाहे आप उबर ड्राइवर हो या फिर आप गाड़ी चला के किसी अपॉइंटमेंट पर जा रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है ना गाने के साथ साथ. अगर आपका नाम ले दें, देखिए आज विजय वर्मा जी का बर्थडे भी है जो हमारे कंटेंट डायरेक्टर हैं, तो इन्हें तो विश करने के लिए फेसबुक के पेज पर आपको जाना ही जाना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ 5599 पर आपको मुझे टेक्स्ट करना है. सो आई हैव अ टेक्स्ट हियर फ्रॉम शैलेश. यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ ऑन रोवा फ्रॉम द अपर हार्ट वेलिंगटन. थैंक यू सो मच शैलेश, ये बहुत अच्छा किया आपने मुझे टेक्स्ट कर दिया. इट्स सो मोटिवेटिंग, क्योंकि जब आप रोवा के ज़रिए हमें सुनते हैं ना, इसका मतलब यू आर कैरिंग हम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, एक्चुअली यू आर कैरिंग अस थ्रू रोवा. और आपका ये जो प्यार है ना, वो दिन दुगना रात चौगना बढ़ता चला जाता है. बिकॉज यू सी व्हाट्स हैपनिंग इज़ वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स वेयर यू गेट अ चांस टू विन डा डा डा डा डा डा एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन से दैट यू आर गोइंग टू विन. अब एक चीज़ जो है, जो फ्लाई अवे फ्रेंजी है, उसका ये फाइनल वीक है. तो अगले घंटे पर मैं आपको मौका देने वाली हूँ जहाँ पे रोवा पे आपको जाना है, और ये कोड जो मैं शेयर करूँगी अगले घंटे पर, आप उसके ज़रिए इस ड्रॉ में भाग लीजिएगा, और कोड आपको 11 बजे के बाद मिलने वाला है. स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन हम 104.2 FM.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: suka.
1: Wah.
2: How?
1: I'm good.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: Thoda to haal bana de.
4: माहौल तो वैसे आप ही के साथ बनने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप ब्रेकफास्ट कैचअप या फिर हमारे ड्राइव के, अगर आप अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो ड्राइव के लिए आप को लिखना है 5599 पे ड्राइव, और ब्रेकफास्ट के लिए BF लिखना है फॉर द कैचअप्स. डेफिनेटली आप ये शोज जो हैं जब मिस आउट करते हैं, इनके कॉन्वर्सेशन, इनके हंसी मजाक, तो दिस इज़ द टाइम.

0: Sister.
1: एक बात तो है, यू नो, ये जो मैं ड्रीम डायरी खोलती हूँ उसमें मैं सोचती हूँ कि आज मैं किसके बारे में बात करूँगी और कौन सी ड्रीम के बारे में बात करूँगी। तो आपका कॉल आया ना, आपने इतनी मेरी लाइफ इजी बना दी इस वजह से, और आपने कहा कि हाउ अबाउट कि मैं आपसे पूछूँ कि मैंने किसी की शादी देखी है ड्रीम में, तो भाई उसके बारे में बातचीत करती हूँ जस्ट थोड़ी ही देर बाद। लेकिन आपको पता है आजकल एआई का ज़माना है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। किस तरह से डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग न्यूजीलैंडर्स ये एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन विद द मेजर इनिशिएटिव जो कि न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज लेकर आ रही है इन दिस डिजिटल एज। कितना कितना कुछ हो रहा है। सो एक पार्टनरशिप की जा रही है बिटवीन द डेफ एंड हेयर ऑफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग फाउंडेशन, एक कीवी स्टार्टअप कारा टेक्नोलॉजीज जो है ये एम कर रहे हैं टू डिलीवर अ रियल टाइम NZSL ट्रांसलेशंस अब ये एक लाइफ लाइक डिजिटल अवतार्स के जरिए। ये जो अवतार्स हैं ये डिज़ाइन किए जा रहे हैं टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट इन सिचुएशंस में जहाँ कम्युनिटी फेस करती है किस तरह से ये इंटरप्रेटर्स को आप लैक करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या ड्यूरिंग एमरजेंसी। इस तरह की जो एक टेक्नोलॉजी है ये एड्रेस कर रही है जहाँ शॉर्टेज ऑफ इंटरप्रेटर्स डेफिनेटली है। हमारे पास इतने इंटरप्रेटर्स नहीं है इसलिए कई लोग जो है इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर सकते हैं। सो दे विल बी एन अवतार जो कि प्रॉबेबली अपनी साइन लैंग्वेज के साथ आपको वहाँ पे बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो। मोर देन 24,500 लोग जो है नेशन वाइड इंक्लूडिंग 4,000 डेफ न्यूजीलैंडर्स जो इस फर्स्ट लैंग्वेज पर रिलाई करते हैं। Isn't that going to be a blessing in disguise? You get money, get cash.
2: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: I'm Rachel and I'm a physio. Recently, I had a patient with a shoulder he'd injured at basketball. He was feeling pretty anxious because he needed to recover by a certain date. So I gave him some reassurance and exercises to do, and we figured out a plan. He was really committed to getting them done and completely recovered in time to hold his newborn twins.
4: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
5: Whiteware Super Sale is on now at Noel Leeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday 12th May. Only at Noel Leeming.
6: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Okay. Live better, eat better, but what about the dream diary? तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपका मैं नाम नहीं लूँगी, but you know there are different meanings when you are dreaming, and खास तौर पर if you're dreaming of your own wedding day, कोई intention नहीं है तो आपकी कोई शादी, you don't want to get married, but you suddenly start dreaming about you getting married. What's happened? Actually क्या होता है ऐसे में? कुछ चीज़ें आपके रोमांटिक लाइफ के साथ इंडिकेट करने लगती हैं, कई चीज़ें सिंबलाइज करने लग जाती हैं अबाउट द ग्रोथ इन योर लाइफ इंक्लूडिंग योर करियर, आपका बिजनेस, आपका पर्सनल डेवलपमेंट। ऐसा भी बताया जाता है कि वन कभी जब आपकी शादी हो रही होती है तो एक एंग्जायटी ड्रीम भी आने लगती है। आप एक लिटरली लाइक यू आर शोइंग दैट ओके माई गॉड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग गेटिंग दिस थिंग्स काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। तो इस तरह की ड्रीम आने लगती है, इमेजिनरी ड्रीम आपको सिचुएशन नज़र आने लगती है जहाँ आप अपने वो फेरे ले रहे हैं या वाउज जो है आपके वेडिंग के वो पूरे कर रहे हैं। दीज एलिमेंट्स आर बेसिकली देयर बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस फ्रॉम इनसाइड एंड इन योर यू नो सबकॉन्शियस माइंड आप वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आगे चल के ये पूरा का पूरा प्लान बनेगा, शादी होगी, क्या होगी। भाई इसी तरह के सर्टन प्रेशर लेवल्स जो होते हैं इंसान के अंदर बढ़ जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती है, ओवरऑल ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है।
0: Dream Diary.

वैसे मैं थ्रोबैक की तरफ तो जा रही हूँ, बट एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। आई थिंक मेरे पास अभी अभी एक ईमेल आया है, और इस ईमेल में इन्होंने मुझसे पूछा है, आपका नाम पवन कुमार, आपने कहा कि आज सुबह 8 बजे के आसपास पूजा ने एक गाना प्ले किया था मदर्स डे का, जो बहुत टचिंग था। इज़ इट पॉसिबल टू गेट द नेम एंड रेफरेंस ऑफ द सॉन्ग सो दैट आई कैन लिसन टू इट? तो भाई ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक जो है, अगर आपने सुना है और आपने पसंद किया है, तो हमारे आज जो बर्थडे बॉय हैं विजय वर्मा जी का लिखा और कंपोज किया है आसमान से आंचल, और ये गाना आपको हमारे फेसबुक के पेज पर लिंक मिल जाएगा इसका, यूट्यूब का, तो डेफिनेटली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी के लिए जो मैं गाना लेकर आ रही हूँ इस पर्टिकुलर मूवी के लिए, एक जो कैरेक्टर था वो उन्होंने कहा था कि आमिर खान चाहिए थे उन्हें, लेकिन कोई बात नहीं, आ गए साथ में उनके नन अदर देन सलमान के भाई।

0: बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
1: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
0: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
1: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja, brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Weekdays 6 to 10 a.m. रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदो वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर। टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरा रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
3: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: इट पेज टू स्विच टू टावर। स्विच टुडे एंड गेट $200 ऑफ न्यू हाउस इंश्योरेंस and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
2: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The Green Party is calling on the government to act on power price hikes. Rebecca Hunt with more.
7: An MBIE report reveals an extra 65,000 households couldn't afford to keep their homes adequately warm in the past year. 23,000 more were living with damp and mould as major problems. The party says every tool must be used to bring the prices of major gentailers down. It has sent a letter to the Energy and Finance Ministers who act as shareholders.
6: Questions are being raised about the abuse in care claims scheme. Ombudsman John Allen acknowledges the Ministry of Education faces a huge task when assessing whether to accept them, but he says there have also been unjustifiable delays. The current scheme also excludes some cases from before 1989, raising legal, ethical and financial issues. And a three-hour standoff in central Christchurch has ended with a 39-year-old man being charged. Police responded to reports of a person breaking into a Durham Street address in the city around 6 p.m. last night. The accused then climbed onto the roof and stayed there until eventually being arrested just after 9. He'll appear in court today. In motorsport with Megan Turbo's 80,000k tyre warranty.
8: Checkered flag. Shane Van Gisbergen is the master of NASCAR road racing.
6: From three now, Kiwi driver Shane Van Gisbergen has won the NASCAR road race at the Glen from pole position in New York. And a rugby, Crusaders wing Curtis McDonald and Highlanders centre Jonah Nareki both have dates with the Super Rugby Foul Play Review Committee after being red carded for dangerous tackles on the weekend.
2: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
9: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
10: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय रमेश चंद्रा की पत्नी प्रेम कृष्णा और सरिता गांवदर की मां नांदी फीजी के भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ऐश्वर्या मां चंद्रा की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आने वाले बुधवार 13 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप प्रेम से संपर्क करें ऑन 021-2382-412 पर। सूचना दोबारा सुने, स्वर्गीय रामचंद्रा की पत्नी

0: प्रेम कृष्णा और सरिता गांवदर की माँ, नांदी फीजी की भूतपूर्व निवासी, वन ट्री हिल की ईश्वरिया अम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 13 मई के दिन बुधवार को दोपहर 1 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप प्रेम से संपर्क करें 021-2382-412 पर।
1: शोक सूचनाएं वीक डेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 18, overnight temperature of 11. आज का forecast बताया जा रहा है. ये showers जो हैं कम होती चली जा रही हैं, लेकिन कुछ शाम के समय बारिश जरूर पड़ सकती है. South west की हवाएं भी थोड़ी कम हो चुकी हैं. It feels like 16 degrees right now, 527% sunset बताया गया है.

0: जो कि आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? 11:04 हो चुके हैं और बस इस घंटे पर एक तो सिक्स वर्ड स्टोरी बतानी है, रीयूज मी रिसाइकल मी के बारे में बताना है, नॉट टू फॉरगेट बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट गोइंग अवे टू फीजी तो ये एक मौका है। रोवा ऐप के जरिए जाकर आप बिल्कुल ये कोड जो मैं थोड़ी देर में देने वाली हूँ उसके ज़रिए आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं रोवा ऐप के बारे में आपके साथ बातें कर ही रही हूँ, रिमेंबर If you are a Kiwi word wizard, तो हमारे साथ कैश जीत सकते हैं विद चर्डल। अब आपको क्या करना है, आपको हमारा कोई Kiwi word या saying या phrase, उसको बस आपको decode करना है और जैसे ही जितनी fast आप इसे करेंगे समझ लीजिए उतने ही chances आपके जीतने के बढ़ जाएंगे। हमारी kitty में लगभग $7,000 हैं। इन $7,000 को हमें आपको बांटना है। बस आपको क्या करना है, एंटर करते चले जाना है अपना नाम एंड लेट्स सी इफ यू क्रैक इट। अगर आप कीवी वर्ड्स में स्मार्ट हैं तो दिस इज द टाइम एक्चुअली टू विन $100 कैश, और वो भी रोज, एवरी डे $100 कैश इज पॉसिबल, क्योंकि हमें ये पैसे अपने पास तो रखने नहीं, आपके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। माई टाइम विद मी कशिका 12 बजे तक आपका साथ निभाती हूँ कशिश फूड्स के सौजन्य से, और ये 10 से 12 बजे के दरमियान जो चीज़ें आपके साथ में करती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ये रोज कुछ चीज़ों को लेकर वापस आते हैं। उनमें से है हमारा एनजेड म्यूजिक मंथ, और आज हमारा एनजेड म्यूजिक मंथ का कलाकार कौन है, इस मंच पर हम के प्लेटफॉर्म के जरिए हम किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर बाद इसके बारे में भी बातें करूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बजाऊं क्या? हाँ हाँ, लीजिए सुनिए।
1: बजाओ क्या?

0: Music Month.
1: Back your backyard beats.
2: Back Your Backyard Beats. और इस मौके पर हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं जिसके ज़रिए आपको एक मौका मिलता है सुनहरा अपने गाने को या आपने खुद कंपोज करे हैं या अपने गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं तो भाई आप हम तक इनको पहुंचाएं ताकि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकें और जिसके ज़रिए मैं कह सकती हूँ दैट एक दुनिया को भी मौका मिलता है. तो buzz@hamfm.com पे अपना बेस्ट ट्रैक अपने बायो के साथ आप भेज सकते हैं. नाउ इज द टाइम जहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक ऐसे कलाकार के साथ. अब देखिए कोइंसिडेंस है, आज इनका बर्थडे भी है, विजय वर्मा जी. अब इनका जन्मदिन आप सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं फेसबुक के पेज पर. नाउ इज़ द टाइम अगर आपको लगता है दैट आप बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं. मैं एक बताती हूँ विजय वर्मा जी के बारे में. जब मैं इनसे पहले पहले मुलाकात हुई थी ना तो इनका भक्ति भाव इनका इतना ज़्यादा वो देखा तो मुझे लगता था कि सारे सिर्फ इनका जो प्यार है वो भक्ति भाव की तरफ, कोर्स वो तो है ही है. लेकिन जब फिर मैंने इनका एक और मूड, एक और इनका वो देखा कि वो लिख रहे हैं और साथ साथ उसे कंपोज कर रहे हैं. और एक दिन तो जब मैं बैठी हुई थी विजय भाई के साथ, मुझे लगता है हम दो घंटे उनके गाने सुनते हुए इतने लीन हो गए थे कि मैं अपनी मीटिंग शीटिंग सब कुछ भूल गई थी. एक बार और भी ऐसा हुआ कि मैं, सैंडी और विजय भाई बैठे हुए बातें करते रहे लेकिन मैं भूल गई मेरी मीटिंग चल रही है ऊपर और मेरे को वो कहते कहाँ हो तुम और सब छोड़ छाड़ के भागी. तो विजय वर्मा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत गिरमिट पर, फीजी गिरमिट पर कुछ लिखा है, कुछ कंपोज किया है. इतने अच्छे रेडियो प्रेजेंटर, इतनी खूबसूरत आवाज़, दिल के सुनहरी, दिल से एकदम गोल्डन हार्टेड हैं, वैसे ही इनसाइड आउट भी ये हैं. अगर आपको इनका ये गाना पसंद आ रहा है, MM लिखिए 5599 पे. आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह से इन पर प्यार उमड़ते हैं ये भी बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंगेजमेंट जो है, चाहे आप विजय जी हों या कोई और भी हों, आप इनके लिए वोट कीजिए. और जो हम फेवरेट आर्टिस्ट जो क्लाइंब अप करते हैं इन द टॉप 3, इनको रोवा ऐप के ज़रिए आपको खूबसूरत मौका मिलेगा इनके 3 गानों को फीचर करने का. सुनते हैं विजय वर्मा जी का लिखा हुआ, विजय वर्मा जी का कंपोज किया हुआ ये अमेजिंग ट्रैक.

0: सो 5599 पे पोर योर लव आउट म्यूजिक मंथ का MM लिख के भेजे और आपको ये कलाकार ये इनका बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप विजय वर्मा लिख के भेजें 5599 पे अपना नाम लिखे तो डेफिनेटली ये जो वोट्स हैं दे विल गेट कैरेट फॉरवर्ड अगर टॉप थ्री में इनको देखना चाहते हैं. थोड़ी देर बाद 6 वर्ड स्टोरी के लिए हो जाइएगा तैयार.
1: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Fuel के दाम रोज बढ़ रहे हैं और smart drivers अब स्विच कर रहे हैं. Future है efficient driving का और Vecity Omoda Jeku के साथ ये shift और भी easy हो जाता है. Introducing the powerful J7 super hybrid system. Performance भी, efficiency भी और all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. आज ही Vecity Auto Group पहुँचे और Jimmy Taylor और उनके expert team से मिले. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
1: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: गिरमिट की बात करते हैं. आई नो बहुत से दिल जो हैं वहाँ पर धड़कने लग जाते हैं जब हम वो कहानियों के बारे में बातें करते हैं और ऐसे में अगर आप पहुँचना चाहते हैं फीजी तो दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू हियर आउट द कोड. अब इस कोड को सुनने के लिए देखिए आप इस कोड के ज़रिए ये अब्रोवा ऐप पे आप जाएंगे तो आपको ये कोड डेफिनेटली मिल जाएगा. टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिएगा हमारी और ये एक रिटर्न टिकट टू फीजी आप जीत सकते हैं. ये कोड आपके लिए 1 घंटे तक वैलिड रहेगा. नाउ इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट आई होप सो लेकिन फीजियन लैंग्वेज में इसे वावा कहते हैं. इट्स अ नाउन जिसका मतलब होता है शूज सैंडल्स या सम काइंड ऑफ फुटवेयर. तो आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट. तो वावा आई वावा how do you say it? अगर आप कॉल करके बताना चाहते हो 800 हम पर डेफिनेटली लेकिन VAVA इज द कोड वर्ड. नाउ गेट इन टू द रोवा ऐप और इस कोड को आपके लिए 1 घंटे तक मैंने वैलिड कर दिया है. टाइम फॉर 6 वर्ड स्टोरी नाउ.
1: 6 वर्ड स्टोरी.
0: ओके सो 6 वर्ड स्टोरी में देखिए सुनील जी आप वाकई ही कमाल करते हैं. इतना अच्छा आपने लिख के भेजा है यू नो सो In 6 words, you can actually put so many things together. And if I may say that the story could be dream boldly, endure hardships, inspire generations. Dream boldly, endure hardships, inspire generations. Thank you, Sunil ji. I think I'm getting a call too. Hum, good morning.
7: Good morning, my dear. How are you?
0: I'm good. Kin se baat ho rahi hai, sir?
7: क्रिस प्रसाद
0: बोलिए. क्रिस जी कैसे हैं?
7: वावा.
0: हाउ डू से इट?
7: वावा
0: वावा. ओके
7: वी ए वावा
0: वावा. ओके ओके हैव आई सेड दैट राइट नाउ?
7: वाह
0: वाह. ओके सो भाई जितने लोग सुन रहे हैं, थैंक यू क्रिश जी फॉर कॉलिंग अप एंड गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल हिंट हाउ टू प्रोनाउंस दिस.
7: इट्स दैट नंबर यू प्लेड
0: या
7: अबाउट फिजी. व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट?
0: The title of the song which I just played was actually composed and written by Vijay Verma ji, who is our content director as well, and the talent is by him. So it's called it's a very beautiful composition
7: very jiska nice naam hai song.
0: Fiji Girmit. Fiji Girmit. Ji,
7: aap, so I can Google that.
0: Yes, you can on the, it's there on the YouTube as well. So you could definitely okay. see it. And I'm sure very soon we are going to share it on our Facebook page as well.
7: Very nice. Beautiful song.
0: Thank you, sir. Thank you.
7: Okay.
0: Bye.
7: Keep up the good work.
0: Thank you, sir. Thank you. It means a lot to us.
7: Bye.
0: Bye-bye.
7: Bye.
0: तो जाकिया आपका टेक्स्ट तो आ गया है एंड द सिक्स वर्ड स्टोरी भी हो गई. चलिए पहुंचते एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ. गुरु रंधावा जी की आवाज़ में है ये एंड साथ साथ हीर. चलिए जाकिया आपने इतना प्यारा सा टेक्स्ट भेजा है तो ये आपको डेडिकेट करती हूँ.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

भाई मिड मॉर्निंग बाजार में तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं एंड कोड वर्ड मैंने आपको दे ही दिया है, वाह वाह एज राइटली सेड बाय क्रिस प्रसाद जी। एंड ये कोड जो है आपके लिए अब वैलिड हो चुका है, एक घंटे का समय है, उसमें से 10 मिनट निकल चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना नाम ड्रॉ में ऐड नहीं किया है तो जल्दी जाइए, हम फ्लाई वे फ्रेंजी में ये अपना नाम ऐड कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं कम्युनिटी इवेंट्स की तरफ। अब कम्युनिटी इवेंट्स में जब हम फिजी की बात ही कर रहे हैं तो 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे इज गेटिंग सेलिब्रेटेड ऑन द 16th ऑफ मे। राइट टाइम पे गाना भी निकला एक्चुअली विजय वर्मा जी का, तो मलायोला कम्युनिटी सेंटर में 4:30 PM टू 8:30 PM ये चलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ फ्री इवेंट जहाँ पे नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, टी एंड स्नैक्स मिलने वाले हैं 4:30 बजे से। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो वॉलंटियर करने के लिए या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पहुंच सकते हैं फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड के फेसबुक के पेज पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एक और चीज़ जो होने वाली है हमारे ओवर द वीकेंड, वो बहुत खूबसूरत है, श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट भोजन मेला लेकर आ रहे हैं। एंड दिस इज़ अ फूड कार्निवल जो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक चलने वाला है, फ्री इवेंट जहां फ्री खाना, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्री एंट्री। खाली खाने पीने के लिए आप जाइए, मगर अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो वहां पे ज्वेलरी, क्लोथिंग और बहुत सारे स्टॉल्स, फेस पेंटिंग है ना, बाउंसी कासल फॉर चिल्ड्रन, ये सब कुछ होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो शिवानी अरोड़ा से संपर्क करें 0218700012 के जरिए।

0: Chicago.
1: Wow.
2: How?
1: And good.
3: वैसे अद्भुत बात तो ये होती है, यू नो, कभी कभी हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ साथ क्या चल रहा है. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 2,500 होम्स एंड बिजनेसेस इन साउथ ऑकलैंड ये अफेक्ट हुए हैं बाय एन इंटरनेट आउटेज. अब कोरस ने ये आइडेंटिफाई किया है कि कॉपर एंड फाइबर केबल्स जो हैं ये इम्पैक्ट हुई हैं, जिसके ज़रिए 600 कॉपर वॉइस एंड ब्रॉडबैंड कस्टमर्स, 1900 फाइबर ब्रॉडबैंड कस्टमर्स अफेक्ट हुए हैं. और ये आउटेज का जो मैप है ये ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिसमें कराका, वायुकू एंड आवीटी पेनिनसुला जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं. ये आउटेज जो है आज सुबह सुबह पता चली, और उसके बाद अब ये डिस्रप्शन के लिए कोरस ने बताया है कि इंफॉर्मेशन पास करें. एंड आई होप इट स्टार्टेड वर्किंग फास्ट नाउ, आई होप सो. If you are still facing a problem, you know where to contact. But मुझे ज़रूर बताइए. I'm happy to announce अगर आपके area में it has been revived.
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने.
6: वो भी I love you वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो किसी को बना रहा था बेटा.
6: अच्छा तो
5: आए आए बताओगे
0: यार. The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepy Head Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
8: Showerdome.co.nz.
9: Whiteware Super Sale is on now at Noel Leeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday 12th May. Only at Noel Leeming.
10: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
11: Dash! Savior of the lunchbox.
10: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
11: Dash!
3: घर में ऐसा होता है कि हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद वो जो सब्जी बच जाती है उसका हम क्या करते हैं. कई बारी हम लोग सोचते हैं कि भाई इसको अब क्या करें. तो पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मेरा जो जुगाड़ होता है, इनको मैश कर लेती हूँ, इन सब्जियों को, ड्राई सब्जियों को, और फिर स्टफ़ करके उनको पराठों में बना कर, यू नो, डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ. चलो कल आपसे मैं पूछूंगी, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप ज़रूर बताइए. मेरे हिसाब से मैंने इसको मैश किया और उनके पराठे बना दिए, जो भी सब्ज़ी होती है उसके पराठे बना देती हूँ. ओके, सो ये तो आपके लिए रिसाइकल की मैंने बात करी, लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आवर्स वी स्लीप.
12: माय टाइम विद कशिका, ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर.
3: It does happen that हमारा बेड टाइम कैसा जाता है. How do we start prepping ourselves हर रोज़, क्या हम लोग करते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग करते हैं बेड पे लेटे लेटे, एंड दैट इज स्क्रोलिंग अपनी टैबलेट या अपना फ़ोन. डेफिनेटली हम देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारे मेलाटोनिन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं. और एक मेंटल स्टिमुलेशन जो होता है ना, वो न्यूज़ स्निपेट्स या सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, वो आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन को अलर्ट मोड में रख देते हैं. आप दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, तो कई बार इसका इफ़ेक्ट जो होता है 6-7 घंटे तक रहता है. और अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम, अगर रुक रही है आपकी नींद तो आप उसको रोक सकते हैं. एक चीज़ और होती है, एक बड़ा इनकंसिस्टेंट टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग. एक आपकी क्लॉक बोलती है 10 बजे बेड पे, तो मतलब 10 बजे बेड पे, तो एक सोशल जेटलैग होना शुरू हो जाता है, विच कैन एक्चुअली कॉज अ 1 or 2 hours डिले इन योर स्लीप. आपने वो बिल्कुल, अगर आपको वो चीज़ें बॉडी क्लॉक को आपको पता है अब मुझे स्विच ऑफ करना है हर एक चीज़ से, तो वो करना ही करना है. ईटिंग ऑफ कोर्स इज अ मेजर क्राइटेरिया. अगर आप स्पाइसी डिनर खाते हैं, हैवी डिनर खाते हैं, तो आपका डिजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट वर्क्स ओवर टाइम. इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर आगे बढ़ने लगता है और वो एक एसिड रिफ्लक्स में फॉर्म हो जाता है. दीज कैन बी द एनिमीज ऑफ डीप स्लीप. आप अगर बहुत लेट एक जिमिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, दीज गो अगेंस्ट योर बेड टाइम बिकॉज आप एक्चुअली अपने एक नींद को वो हटा के अपनी बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को आप बढ़ा रहे हैं विग्रस एक्सरसाइजेस करके. आप बहुत देर तक दोपहर के समय सो रहे हैं, 2 से 3 घंटे, दिस कैन ऑल्सो डिसरप्ट. आइडियली इट इज सेट कि 30 मिनट्स इज द राइट टाइम जो दोपहर के समय आप अपना निकालते हैं. ऑफ कोर्स अपनी बेडरूम को आप जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, इफ़ इट्स टू वार्म द प्रोसेस फॉर योर स्लीप विल प्रॉब्ली नॉट टेक यू टू अ डीप स्लीप. तो मेक श्योर आपका बेडरूम टेम्परेचर जो है, आपका बेडरूम वो कंसिस्टेंट रहे. ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं अल्कोहल हेल्प करता है, जो मुझे लगता है नहीं करता, बट इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे कम करें and increase your night time long sleeping hours, क्योंकि अगले दिन आप groggy होकर सुबह सुबह नहीं उठना चाहते. Do not scroll while you get up in between या कुछ, आपकी नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आपका माइंड वही दौड़ता चला जाएगा. फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखें, साइलेंट पर रखें, फ़ोन बजने मत दीजिएगा. डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है आसमान को देख रहे होते हैं कि भाई नींद आ जाए, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी शुरू हो जाती है. यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर इंसोमिया बाय डूइंग दैट. डोंट बिल्ड इट अप. आइडियली यू शुड जस्ट ट्राई एंड सी एंड रिलैक्स योरसेल्फ. ऑलराइट.

सो इन श्योर दैट इस आने वाले हफ्ते में आपका टाइम आप अपने लिए कहीं ना कहीं ज़रूर निकालें. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मैं कहूँ मेरा टाइम यहाँ ख़त्म होता है और मैं कल सुबह 10 बजे आपके साथ वापस लौट कर आ रही हूँ. ओके तो कीजिए स्वीकार कशिकाकर नमस्कार. आज का दिन कहलाता है सोमवार. आने वाला हफ्ता आपके लिए होगा और भी ज़ोरदार दमदार शानदार. भैया आपके लिए चार चांद लगाने के लिए लंच बॉक्स में आ रहे हैं केतन, इनका साथ ज़रूर दीजिएगा. मैं आप ही के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ. बातें जब मैं नींद के बारे में कर रही थी तो याद रखिए कि नींद चुराने वाले बड़े लोग होते हैं, ख़ासतौर पर जब आप प्यार में होते हैं. अगला गाना जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, एग्जैक्टली इट इज़ फॉर दैट. ऑलराइट, लुक आफ्टर योरसेल्फ. दिस इज़ कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज़. आपसे मेरी मुलाकात कल सुबह होगी. लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीक अहेड.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है.

0: ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बोल आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? कैसा रहा वीकेंड? ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे जिसके जवाब आपको मुझे भेजने हैं या फिर कॉल भी करेंगे आप 0800 004866 पे थोड़ी देर में। बढ़िया सभी के लिए। एक्चुअली